बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
2: जन जन तक पहुंचा संदेश।
3: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: खाटू वाले की सबसे बड़ी खासियत, सबको खुश रखने वाले का,
1: खुश रखने वाले का।
0: सारी दुनिया दावा करती है कि बाबा हमारा है, फ्लाइट से आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, पेट पलंगिया आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, लेकिन बाबा की खासियत देखो, कोई खाटू आकर बोले ना बोले कि बाबा हमारा है, लेकिन बाबा शाम पूरी दुनिया का आज हो रखा है, बाबा बोलता है तू मेरा।

विश्व की सबसे सुंदर आवाज मैं कहूंगा। हम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मेरे बाद वो आएंगे। कोई वक्त होता था आज से 22 साल पहले जब मैं भी वहां खड़ा होकर देखता था कि इस सूरज को कब नजर से देखूंगा। यह उसी की कृपा है कि उस सूरज के साथ खड़ा हूं।

अभी रोहतक गया मैं कीर्तन के लिए, तो वहां एक भाई मिले, बोले मेरे को एक बुजुर्ग माताजी मिली। मैंने उसको पूछा, माताजी कहां जा रहे हो? बोली मैं वहां जा रही हूं जिसके भजन कन्हैया मित्तल गाता है। तो मैंने शब्द बदल दिए,

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: Gülşen
1: Müzik.
2: त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
3: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट। नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी

0: रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड में, कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ है आप। और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में, हमारे एफएम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
1: मैं बहुत बढ़िया।

0: हाँ जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आनंद वीडियो, और जब भी रेडियो पर आते हैं कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, और आज की ये जो सुबह है बहुत खास है, क्योंकि आज मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हुआ, तो मेरे साथ एक बहुत ही गजब की पर्सनालिटी है। यार, सुबह सुबह उठते ही ना कभी कभी बड़ा आलस आता है। मम्मी हमेशा ताने मारती, बेटा उठ जाओ, कुछ एक्सरसाइज कर ले। मैं कहता हूँ मम्मी इंटरनेट पे देखे ना, मेरे से नहीं होती है, मुझे ना प्रैक्टिकली सीखना है। तो फिर मैंने सोचा प्रैक्टिकली सीखना है तो क्या किया जाए। फिर मैंने सर्च किया यहाँ पे योगा टीचर को, योगा एक्सपर्ट को। अब जब योगा की बात आती है, योगा एक्सपर्ट की बात आती है, तो भाई साहब एक ऐसा नाम अपने मानसरोवर का जाना माना नाम, यस आई एम टॉकिंग अबाउट रुचि मदान, आज वो मेरे साथ स्टूडियो में है। मैम आपका वार्म वेलकम है, स्वागत करते हैं आपका जोरदार तालियों से। हाउ आर यू, कैसी हैं आप?
1: आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच आरजी आनंद,
0: थैंक यू मैम
1: पर इनवाइट करने के लिए।
0: थैंक यू मैम, मैम बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं, और मैम से जरा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले ये बताओ आपको रेडियो में आके कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है, मतलब मैं अपना यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ।
0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा लग रहा है,
0: थैंक यू सो मच। वैसे हम लोगों का जो प्लान है बहुत टाइम से चल रहा था, मेरा और रुचि मैम का, कि हम इंटरव्यू करेंगे, स्टूडियो में आपको बुलाएंगे, बट वो एक मतलब सही टाइम जैसे कहते हैं वो बन नहीं पा रहा था। कभी मैम बिजी हो जा रहे थे, कभी हम बिजी हो जा रहे थे, बट फाइनली आप स्टूडियो आए, तो आपको कैसा लग रहा है? टेल मी, ये ऑफिस लाइटिंग सारी चीजें
1: सब कुछ बहुत ऑसम है, आपका पूरा सेट बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू सो मच। और आज आप
1: स्पेशली आरजी आनंद,
0: नहीं नहीं स्पेशली रुचि मैम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, और नो डाउट मैम बहुत ब्यूटीफुल हैं। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मैम ने मेंटेन की हुई है, शायद उसकी राज योगा तो नहीं उसका राज?
1: यस यस,
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अरे वाह, आज बहुत सारी बातें होंगी रुचि मैम से। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मौजूद हैं, और आप सुन रहे हैं इनको ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, बिना किसी देरी के मैम इंट्रो कराते हैं। मैम से जो है आपको रूबरू कराते हैं, उनका तारुफ जरा सुन लेते हैं। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं जो लोग आपको सुन रहे हैं।
1: हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि मदान हियर। मैं मानसरोवर में योगा स्टूडियो है मेरा, योगा फिट विद रुचि के नाम से, जिसकी मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो हम लोग वहाँ पर सब लेडीज को और बच्चों को, सभी को योगा कराते हैं, और सब लोग वहाँ पे आके बहुत हैप्पी होते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स भी करते रहते हैं, इवेंट्स प्लान करते रहते हैं, और सबको हम निशुल्क योगा भी करवाते हैं।
0: अरे वाह, निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट?
1: फ्री ऑफ कॉस्ट योगा हम वीक में एक बार रखते हैं।
0: अरे वाह,
1: पार्क में या स्कूल्स में।
0: अरे वाह,
1: एक सेशन होता है हमारा, जिससे कि सब लोग मोटिवेट हों, योग के लिए प्रेरित हों।
0: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मैम इसके लिए आपने कोई सर्टिफाइड कोर्स किया है या कोई स्टडी?
1: जी, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है लखनऊ से।
0: अरे वाह, बहुत
1: गोकुलम से, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने अपना कोर्स कम्प्लीट किया है पोस्ट ग्रेजुएशन का। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस की है, 10 ईयर्स मैंने अपना प्रैक्टिशनर भी रही हूँ योग में, और अब मैंने लोगों को मतलब इस तरीके से अवेयर किया है, और सब लोग मेरे साथ जो जुड़ गए हैं उनकी मैंने जो भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उन पे बहुत वर्क किया है, और उसके एक्सपीरियंस के साथ मैं सब लोगों को हील भी कर रही हूँ।
0: ओह वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। तो गाइज, आज जो हमारे साथ बैठी हैं वो कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है भैया, अपने आप में ग्रैंड पर्सनालिटी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी भी शेप में आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, आप जो एकदम ऑसम दिखो बिल्कुल रुचि मैम की तरह, वो दिख भी नहीं है भाई, इंस्टाग्राम पे उनके चिच्चे रील्स भी आने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट फॉलो करके रखिएगा। वेल आगे बढ़ेंगे। रुचि मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये क्यूरियोसिटी कैसे आई कि आपको योगा फील्ड में आना है?
1: एक्चुअली मेरे को योगा शुरू स्टार्टिंग से ही फिटनेस का बहुत था।
0: अच्छा।
1: कि मतलब एक फिटनेस अपने आप को फिट रखने का और अच्छा दिखने का।
0: क्या बात है।
1: तो मैं जब भी कॉलोनी में वॉक करती थी सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे।
0: अरे वाह।
1: मेरा शुरू से ही वॉक का हमेशा नियम रहा है, तो सभी लोग अप्रिशिएट करते थे कि यार तुम्हारा तो अच्छा रूटीन है, तुम्हारी फिगर बड़ी मेंटेन है। तो मुझे लगा कि सब लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो क्यों ना मैं इस फील्ड में आगे बढ़ू, फिटनेस के फील्ड में, और लोगों को भी फिट करूं। मेरा ये एम है कि मैं सभी लेडीज को जो मेरे यहाँ भी आती हैं उनको हैप्पी बनाऊं, उनको हमेशा खुश रखूं इंटरनली और एक्सटर्नली, उन सबको फिट करूं और फिजिकली और मेंटली।
0: क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव रुचि मदान मैम आपका है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो खुद भी फिट होते हैं और दूसरों को भी फिट रखते हैं, मतलब ईच वन टू कीच वन। भैया मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, नहीं करोगे तो जबरदस्ती करा देंगे।
1: हमारे योगा सेंटर में जितने भी लोग आते हैं सब लोग फिजिकली इतने फिट हो गए हैं, और उनके सारे डिजीजेस जो भी थी प्रॉब्लम सब दूर हो गई है, मेंटली भी वो लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और इन सब चीजों के साथ फिजिकली मेंटली तो वो फिट हुए ही हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव हुआ है।
0: That's very nice. तो ये जो सेशन है ना गाइस, इसको आपने पूरा सुनना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं आज आपके लिए जो बहुत ही अल्टीमेट होने वाली हैं। योगा करने का शौक है आपको तो बस टेंशन मत लो, आज बहुत सारी एक्सरसाइज मैम से पूछने वाले हैं, अंदर की बातें बाहर निकालेंगे। मैम ने एक छोटा सा शब्द बोला था हील वाला ना, उसके बारे में भी हम जानेंगे। स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी 9837896896। रुचि मदान जी हमारे साथ हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, और आगे आइए उनसे और जानकारियां लेते हैं। योगा के बारे में और जानकारियां विस्तार से लेने वाले हैं हम, और जानेंगे उनसे इसके बारे में। और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। मैं तो सोच रहा था आज की सुबह सुबह ओम चैंटिंग कर लूं, फिर मुझे याद आया नहीं भाई, मुझे ओम चैंटिंग से ज्यादा ना मुझे कपाल भाति के बारे में जानना, फिर अंदर से आवाज आई नहीं प्राणायाम के बारे में जानेंगे, और कभी ख्याल आता नहीं मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, बट आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी है उनके पास डेफिनेटली है। यस, हम रुचि मदान जी से बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। तो मैम आपको एनर्जी मिल रही है, अच्छा लग रहा है?
1: Yes, obviously, आपके साथ है तो अच्छी
0: क्या बात है। That's very nice, ma'am. And अब हम आगे का सिलसिला शुरू करेंगे। मैम एक मेरे जैसे लोग होते हैं जो सुबह उठते ही ऑफिस चले आते हैं, मतलब नहाए ऑफिस चले आए, उनको टाइम नहीं है ओम चैंटिंग का भी, बट कभी कभी ऑफिस में बैठ के कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो कहते हैं ना अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस सुबह उठते हैं, बैठ टी पीते हैं और अपनी दिन की शुरुआत बड़ी नॉर्मली करते हैं। कुछ आपके जैसे होते हैं बड़ी ग्रैंड पर्सनालिटी, उठते हैं वॉक करते हैं, अपनी फिटनेस के लिए लड़ाई करते हैं डेली, सेक्रीफाइस करते हैं सुबह। कितने बजे आप उठ जाती हैं?
1: सर मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ।
0: अरे बापरे, मतलब कोई भी हो, मतलब सीजन गर्मी सर्दी बरसात।
1: यस,
0: आपने 5 बजे उठते हैं तो उठना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर कैसे आप शुरुआत करती हैं?
1: एक्चुअली मेरे सेशंस होते हैं 7 to 8 और 8 to 9 सेशंस होते हैं।
0: ओके, मतलब क्लासेस भी आप?
1: क्लासेस स्टार्ट होने लगती हैं 7 o'clock से।
0: ठीक है,
1: तो उससे पहले मुझे अपना पूरा रूटीन फॉलो करना होता है। जो भी मेरा रूटीन है, तो मैं 5 o'clock उठकर अपनी पहले योगा की प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मेडिटेशन में जाती हूँ, फिर उसके बाद अपने मेरे दिनचर्या के कार्य शुरू हो जाते हैं।
0: दैट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा रुचि मैम, आपने तो अपनी दिनचर्या की बात कर ली, अब एक नॉर्मल इंसान अपनी दिन की शुरुआत कैसे करे, जिनको नहीं पता, जो तो आज के डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया सबको पता है, पर बहुत सारे लोगों को सही डायरेक्शन नहीं पता होती है।
1: Yes.
0: कौन सा वाला योगा उन्हें करना चाहिए, कौन सी इसमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमारी बॉडी के लिए कौन सा वाला बेस्ट है ना, हमें ये चीज नहीं पता होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, एक जो नॉर्मल इंसान है जिसको कुछ नहीं पता और बट वो एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है अपने दिन की शुरुआत, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो वो एड ऑन कर सकता है?
1: एड ऑन करने के लिए जो बिगनर्स हैं, मेरे पास योगा स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं जिन्हें मैंने गाइड किया है अभी तक, वो सभी बिगनर्स आए हैं।
0: वाओ,
1: तो मैंने बिगनर्स को, अब मैं उनको धीरे धीरे, पहले मैं इंटरमीडिएट लेवल पर उनको लेकर गई, अब मैं एडवांस लेवल पर उनको लेकर जा रही हूँ।
0: ओके,
1: तो उनकी बॉडी में काफी अच्छे चेंजेस आए हैं और वो लोग इम्प्रूव भी कर रहे हैं।
0: ओ, वाओ।
1: मैं अब सभी के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ, जो लोग अपने इतने बिजी शेड्यूल से अपने लिए हाफ एन आवर तो जरूर निकाले।
0: करेक्ट, बिल्कुल।
1: और अगर वो अपना मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं तो बैक टी से स्टार्ट न करके थोड़ी देर फ्रेशन अप होके पहले 2 glass ल्यूकवार्म वाटर लें, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होके, अपना थोड़ा फ्रेश होके वो थोड़ी देर अपने प्राणायाम और थोड़े से स्मॉल सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये बहुत बेसिक और बहुत लाइट एक्सरसाइज है।
1: अगर वो स्टार्ट सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं और फिर उसके बाद वो प्राणायाम करते हैं तो उनके लिए सफिशियंट होगा। धीरे धीरे उनकी बॉडी से स्टिफनेस जाने लग जाएगी, तो फिर धीरे धीरे से वो और भी दूसरी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: अभी नहीं, हम एकदम से ही कह दें कि नहीं जी आपको 100 सूर्य नमस्कार करने, 108 सूर्य, तो भाई बंदे को मोटिवेशन कैसे मिलेगी?
0: करेक्ट।
1: अब धीरे धीरे आप जीरो से स्टार्ट करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे ही, और कंसिस्टेंसी जरूरी है।
0: एब्सोल्युटली, आपने ये मेरी तरह नहीं करना है, एक दिन किया फिर एक हफ्ते बात कर रहे हो, फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह सुबह मैं कहता हूँ, आपकी लाइफ कितनी भी क्यों ना बिजी हो मैम, अगर हम फिट हैं तो सारी चीजें अच्छी हैं, आपका करियर, आपकी जॉब, एवरीथिंग, जो भी आप चाहते हैं, बट अगर आप फिट ही नहीं है तो सब चीजें खराब है।
1: सही,
0: तो
1: अपनी यही लेडीज के साथ भी है भाई, अगर लेडीज हेल्दी हैं तो तभी अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगी, अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर पाएंगी।
0: बिल्कुल मैम,
1: अगर वो खुद ही हैप्पी नहीं है, खुद ही वो डल फील कर रही है, तो अपनी फैमिली में भी 100% नहीं दे सकते।
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात बोली है मैम ने। और मैम आपने जो विमेंस को टारगेट किया ना, बहुत ही बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो घर की मियां होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, उनका लाइफस्टाइल सुबह से शुरू हो जाता है। आपने बताया 5 बजे से आपका समझ लो शुरू ही हो गया अपना रूटीन, तो वो उसके अभी क्या होता है ना, कुछ कुछ हमारे घर में हमारी जो मम्मियां होती हैं, हमारे जो घर में सिस्टर्स होते हैं, वो अपनी लाइफ में ना अपने आप पे थोड़ा कम ध्यान देती हैं।
1: एक्चुअली होता क्या है कि सुबह का टाइम हमारा अपना होता है लेडीज का।
0: करेक्ट।
1: तो अगर हम सुबह अपने आप को टाइम दे दें थोड़ी देर 40 मिनट्स ही अगर लेडीज अपने आप को टाइम दे दें तो वो पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक हो जाती हैं।
0: ग्रेट।
1: और अगर हम अपना योग से जुड़ जाते हैं तो योग करने से हमारे जो

0: करने की स्पीड है वो डबल हो जाती है।
1: अरे वाह, मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है।
0: एक्स्ट्रा एनर्जी तो मिलती है और जो हमारी वर्क करने की स्पीड होती है वो डबल हो जाती है।
1: प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है ना।
0: प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ती है और हम अपने काम डबल एनर्जी से कर पाते हैं।
1: वाओ, ये चीज खैर मुझे पता नहीं था, शायद मैं इतनी एनर्जी से आपसे बात करूं बिना योगा किए। सोचो मैं कल से करके आऊंगा तो कितनी डबल हो जाएगी। आई डोंट नो, वो फिर मैं रुचि मैम को उसका क्रेडिट दूंगा डेफिनेटली।
0: ये सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं, जब तक हम इसको अप्लाई
1: नहीं करेंगे
0: तब तक ऐसा नहीं हो सकता।
1: राइट राइट, मतलब उसको एग्जीक्यूट भी करना है।
0: एक्सरसाइजेस और ये सब हम हर चीज यूट्यूब और हर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं,
1: करेक्ट,
0: लेकिन जब तक हम योग को अपना कर उसको एक बार करके नहीं देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तब तक हम उसको मतलब बता नहीं सकते। आपको उसका जो इफेक्ट है वो मैं समझा नहीं सकती
1: मैम,
0: क्योंकि इतना पावरफुल है और जब तक हम इसको अपनी बॉडी में फील नहीं करेंगे तब तक इसका आप इफेक्ट नहीं समझ सकते।
1: क्या बात है, वैसे भी योगा डे आने वाला है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और मुझे लगता है कि अब योगा ना एक ऐसी चीज हो गया है जिसके बिना ना हम अधूरे हो गए हैं। अगर हमने उसको अपनी लाइफ में नहीं अपनाया तो लगेगा हम बहुत पीछे हैं। मुझे ऐसा लगता है
0: हमें अपनी दिनचर्या में
1: जैसे
0: हम अपने डेली
1: रूटीन में अपना खान पान और सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं
0: तो हमें अपनी दिनचर्या में ही इसको शामिल कर लेना चाहिए।
1: गॉट इट, बहुत अच्छा बोला रुचि मैम ने। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट हैं और मैम से हम लगातार बात कर रहे हैं, आपकी फिटनेस पे बात कर रहे हैं, आपकी हेल्थ पे बात कर रहे हैं। मैम आपने सुबह का रूटीन एक बेसिक इंसान के लिए तो बताया, अब अगर मैं बात करूं अपनी वुमेन्स की, अपनी उन घर की महिलाओं की जो सुबह कामकाज में लग जाती हैं उठते ही अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाती हैं और पूरा दिन बहुत बिजी रहती हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगी अगर वो उठ रही हैं तो कैसे दिन की शुरुआत एक हेल्दी करें?
0: अब जैसे उनका स्कूल बच्चों को भेजने का शेड्यूल होता है
1: जी,
0: तो वो सुबह के टाइम तो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड्स को भेजने की ड्यूटी हो जाती है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो 15 मिनट्स प्राणायाम करें सुबह मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर पीकर, तो उनके लिए सफिशियंट रहेगा। उसके बाद वो 40 मिनट्स का अपना वर्कआउट जरूर करें, जैसे फैमिली से फ्री हो गए थोड़ा सा और अपना ऑफिस हस्बैंड चले गए, तो आपका 10 बजे के बाद आपका टाइम फ्री हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आपको 40 मिनट जरूर निकालने ही चाहिए अपनी एक्सरसाइज के लिए।
1: क्या बात है, तो लेडीज अब जो है आपको गाने सुनने के साथ साथ खुद को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आपको रुचि मैम को फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, क्योंकि हर चीज, हाँ ये चीज मुझे इसलिए भी याद आ गई क्योंकि हमारी एक हैबिट बन गई रुचि मैम कि हम हर चीज को इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हमें लगता है यूट्यूब पे इसका कंटेंट होगा, गूगल पे हमें ये मिल जाएगा, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं मिल तो जाता है बट जो सही डायरेक्शन है सही फॉर्मेट है वो नहीं मिल पाता है।
0: सही,
1: एब्सोल्युटली, जब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, हम तो कुछ भी करेंगे और उसके नेगेटिव असर भी होते हैं शायद।
0: सही बात है, अगर आप अंडर गाइडेंस कोई एक्सरसाइज करोगे तो भाई आपको एक देखने वाला सुपरवाइज करने वाला है तो आप अच्छे से कर पाओगे।
1: राइट,
0: इन केस आपने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली देखकर तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है।
1: 100% बिल्कुल, तो इसीलिए
0: देखिए किसी की बैकएक है और उसने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली तो उसकी बैकएक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
1: अच्छा मैम मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, योगा के बारे में हम ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं और ये टॉपिक ऐसा है जिसपे हम शायद जितनी बातें करें वो कम होंगी, करेक्ट, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ योगा जब हम करते हैं तो इससे कौन कौन सी चीजें जो हमें लगता है कि रिलीव हो सकता है, उसमें हमें आराम मिल सकता है, कुछ चीजें हमारी छूमंतर भी हो सकती हैं।
0: देखिए जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस हो या हमें बॉडी के बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी लेडीज की क्या आदत होती है, जरा सा हमें बैक पेन हुआ या शोल्डर पेन हुआ या नेक पेन हुआ तो फटाफट पेन किलर लिया
1: ले लिया
0: और
1: कार,
0: बस हमारा हो गया, नेक्स्ट डे उनको वही प्रॉब्लम दोबारा
1: रिपीट होने लगती है। बिल्कुल,
0: अब मेरे यहाँ जितने भी योगा स्टूडियो में लोग आते हैं कोई भी अब एंटीबायोटिक नहीं लेता, सब लोग पेन फ्री हो गए हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ मेरा जोर रहता है और मैं सभी को इस चीज के लिए मोटिवेट भी करती हूँ, क्योंकि अब किसी को सियाटिका पेन और बैक पेन वगैरह सब सबके रिमूव हो गए हैं।
1: That's very nice. अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है और कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेडिसिन ले लेके परेशान हो रहे हैं और अंदर जाके वो प्रॉब्लम भी कर रही हैं।
0: और फ्रोजन शोल्डर और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका, स्लिप डिस्क, ये प्रॉब्लम्स तो मैंने सभी लोगों की हील कर दी है।
1: वाह लवली मैम, बहुत ही बढ़िया, ऐसे लोगों के लिए सल्यूट जाता है, प्लीज मैम।
0: बाकी जैसे हम लोग मैंने थायराइड के भी 2-3 पेशेंट्स को ठीक किया है,
1: वाह,
0: तो उनका थायराइड बहुत ज्यादा था तो अब उनका जब वो नॉर्मल, मैं उनसे कहती रहती हूँ उन्होंने मेडिसिन नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मेडिसिन स्टार्ट हुई हुई थी जब वो मेरे पास आए थे,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो मैंने उन्हें मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं बोला था, साथ में उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, मैंने उनको डाइट गाइडेंस दी, मैं सबको पर्सनलाइज्ड डाइट गाइडेंस देती हूँ, तो हाँ तो डाइट गाइडेंस दी, फिर उसके बाद मैंने उनको योगा कराया तो उससे उनका हील हो गया। काफी चीजें हम हीलिंग भी साथ में कराते हैं, काफी चीजें, खाली एक योगा ही नहीं, काफी चीजें कराते हैं, तो उससे वो लोग हील हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं।
1: भाई मैं तो मैम की बातों में खो गया हूँ भाई, मुझे लग रहा है मुझे कोई जगाओ, मेरे को उठाओ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी प्यार से एक्सप्लेन कर रही है ना, आपको सुनने में जितना मजा आ रहा है, मेरे को देखने में और उनकी बातें सुनने में उतना ही मजा आ रहा है। एक तो नाम आनंद, ऊपर से बातें आनंदित वाली हो रही है, और जब बात हेल्थ की होती है तो डबल आनंद आता है, क्योंकि हमें हम कुछ भी करें बट अपनी हेल्थ के लिए ना हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा मैम, टाइम से मुझे याद आया एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना रैंडम आते हैं, सॉरी वो ऑन द स्पॉट चलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं पूछ रहा था, क्या योगा करने का सिर्फ मॉर्निंग ही है या फिर हम शाम को भी कर सकते?
0: नहीं, हम इवनिंग में भी कर सकते हैं।
1: ओके।
0: हाँ, उसके पहले सिर्फ हमें 2.5 आवर का थोड़ा सा बीच में फूड अवॉइड करके 2.5 आवर का ब्रेक लेना होगा।
1: ब्रेक लेना होगा, उसके बाद हम
0: कंटिन्यू, उसके बाद हम कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, मतलब फिर कोई इशू नहीं है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: परफेक्ट।
0: इवनिंग बैचेस भी चलते हैं, तो सब लोग 2.5 आवर पहले ही लंच कर लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं।
1: That's very nice. अब चलिए,
0: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सेशन।
1: अब चलिए मैम की ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो कैसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है मुरादाबाद की लेडीज को, और क्या कुछ स्पेशल होता है उनके इस सेशन के अंदर, कितने क्लासेस वो देते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो जो प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाह रही है, चाह सिर्फ मेल का है या फीमेल का, ये भी हम जानेंगे। डोंट वरी, आप बने रहो और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6। योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मेरे साथ हैं, मेरा नाम आनंद है, और आपको आनंदित करने के लिए, आपकी हेल्थ पर और ढेर सारी बातचीत करने के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ एक फैंटास्टिक मैम को, जिनका नाम रुचि मदान है। सो ग्लैड यार, क्योंकि उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनका मैं जब भी स्टेटस देखता हूँ मुझे भी एक मोटिवेशन आता है, बट हाँ वो बात अलग है, मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूँ, बट अब नहीं भूलूंगा, क्योंकि अब मैम मेरे को मंत्र सिखा के जाने वाले हैं यहाँ पे लाइव। अच्छा मैम, ओम चेंडिंग की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वंस अगेन वेलकम बैक। और ओम चेंडिंग की अगर बात करें तो ओम चेंडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं?
0: देखिए, ओम चैंटिंग में रोज अपने स्टूडियो जब हमारे साथ योग कराते हैं तो हर बैच में ओम चैंटिंग अलग से होता है।
1: ओके।
0: क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल ओमकार मंत्र है जो मतलब हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से ही रिलेटेड है।
1: ओके।
0: तो ओम का जाप करने से हमारी 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती
1: है। एक बार रिपीट कर देंगे, मैं भूल जाऊंगा, दोबारा बता दो आप।
0: 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं ओम का उच्चारण।
1: अरे वाह, कितनी देर तक कर सकते हैं ओम चैंटिंग में?
0: ओम चैंटिंग आप जैसे हम लोग तो 3 टाइम्स कराते हैं, 3, 5, 7 इस तरीके से,
1: मतलब और अलग अलग कैटेगरी
0: और फिगर्स में ओम चैंटिंग कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, ठीक है। तो
0: इसको करने का भी तरीका होता है जो हम मतलब मेथड से कराते हैं। ओम चैंटिंग से हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो जाती है।
1: ठीक है।
0: तो अभी क्या कहते हैं, हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कराते हैं, और इससे ओम चैंटिंग से रिलेटेड हम लोग अपना प्रज्ञा योग भी कराते हैं। तो प्रज्ञा योग इतना पावरफुल है जो कि ओम से ही कनेक्टेड है।
1: ऑलराइट,
0: तो प्रज्ञा योग में हम क्या करते हैं, उससे हमारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल है वो, और हमारे मेंटल एबिलिटी बढ़ती है उससे, हमारा कंसंट्रेशन मेंटल पावर इम्प्रूव होती है प्रज्ञा योग से, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे हमेशा सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हमेशा ओम की वाइब्रेशंस होती रहती है। तो उसकी वाइब्रेशंस को प्रज्ञा योग में हम अपने भीतर लेते हैं।
1: अरे
0: उसके करने के बाद जब भी वो सब लोग करते हैं, उसके बाद सब लोग, एक तो उससे बॉडी की टोनिंग तो होती ही है जो प्रज्ञा योग हम करते हैं, और उसके साथ हमारी मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, और सब लोग इतने हैप्पी हो जाते हैं उसको करने के बाद, बहुत सब लोग रिलैक्स और काम फील करते हैं।
1: दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है रुचि मैम से एक बार ओम चेंडिंग करा लें क्या? क्या हम अभी लाइव चेंडिंग कर सकते हैं ओम की? पॉसिबिलिटी है,
0: कर सकते।
1: ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आंखें खोल लूंगा। वेल, आंखें मीच के ओम चेंडिंग करते हैं, आंखें खोल के पहले आप ये बताओ।
0: देखिए, जब हम प्रेयर करते हैं स्टार्टिंग में,
1: ठीक है ठीक है,
0: हमारा सेशन प्रेयर से स्टार्ट होता है।
1: हाँ जी।
0: तो हम जब प्रेयर करते हैं तो हम आईज क्लोज ही रखते हैं।
1: ठीक है।
0: आईज नहीं खोल,
1: कुछ लोग कहते हैं जब हम आईज क्लोज करते हैं या जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो बड़ी नेगेटिविटी मन में आने लगती है, हमारा मन बहुत भटकता है।
0: एक्चुअली जिनको थोड़ा सा मेंटली जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, जिनको थोड़ा डिप्रेशन का इश्यू होता है, तो वो लोग आईज क्लोज करके नहीं कर पाते। तो उनको मैं अलाउ कर देती हूँ कि आप आईज खोल के ही कर लो, क्योंकि उनको हेडेक या ये सब प्रॉब्लम
1: सारे लगते हैं। राइट राइट।
0: लेकिन एक मेरे पास डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं, तो उनकी वो अब काफी इम्प्रूव्ड हैं और उनको अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती।
1: अरे वाह, ब्यूटीफुल। तो हम भी ट्राई करके देखें मैम एक छोटा सा, कितनी देर तक करना होगा?
0: आज तो हम शॉर्ट करेंगे ना।
1: ठीक है, तो ठीक है, रुचि मैम मुझे सिखाने वाली है ओम चेंडिंग। आई एक्सक्लूसिवली लाइव रेडियो पे पहली बार आप ओम चेंडिंग सुनोगे, अनबिलीवेबल यार, मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है। कैसे करेंगे हम, कैसे शुरू करना है आप बताइए। दोस्तों आप भी हमारे साथ ट्राई करिएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज ट्राई करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, एंड आपको बहुत मजा आएगा। तो मैम शुरू करें? ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, आंखें बंद कर
0: दी होगी? पहले हम लोग, आज तो हम लोग चेयर पर बैठे हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं।
1: अच्छा, अलाउ है ये भी?
0: हाँ जी,
1: ओके, ठीक है,
0: चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो अपने पृथ्वी तत्व से जुड़े और जमीन पर बैठ कर ही करें।
1: ठीक है, ठीक है।
0: तो सबसे पहले हम अपनी कमर, गर्दन और कंधे सीधे करके बैठ जाते हैं,
1: है।
0: स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं,
1: ओके।
0: अपनी आईज को क्लोज करते हैं,
1: ठीक है,
0: और सबसे पहले हम 5 ब्रेथ्स लेते हैं,
1: ओके।
0: अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जान्वित करने के लिए
1: 5
0: ब्रेथ्स लेते हैं, लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल,
1: ओके।
0: लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल। अपने लंग्स में, अपने डायफ्राम में अच्छे से प्राण ऊर्जा को भरेंगे और एक्सहेलेशन कर देंगे। हर इनहेलेशन के साथ एक पॉजिटिविटी हमारे भीतर आएगी और हर एक्सहेलेशन के साथ सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी। 5 टाइम्स लॉन्ग एंड डीप इनहेल करने के बाद हम अपने ध्यान को आईज क्लोज ही रखेंगे। हम अपने ध्यान को अपने आईब्रोज के सर में आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे, जहां पर हम अपना तिलक लगाते हैं वहां पे अपने ध्यान को लेकर 5 टाइम्स अपने मन को शांत करते हुए आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। अपने मन को शांत करेंगे, माथे को रिलैक्स करेंगे, खुद को योग के लिए तैयार करेंगे, अपनी माइंड, अपनी बॉडी और सोल को योग के लिए प्रिपेयर करेंगे। माथे पर ध्यान देते हुए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए ओमकार का जाप करेंगे। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओमकार शब्द, ओम जो शब्द है वो हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। तो इसको उच्चारण करने का सही तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। आ का उच्चारण थोड़ा कम देर के लिए, ओ का उच्चारण उससे थोड़ा ज्यादा, और माँ का उच्चारण थोड़ा डीप करते हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग हम माँ का उच्चारण करते हैं, जिससे हमारे गर्दन से लेके पूरे ऊपर सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर एक चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, वहां तक वाइब्रेशंस आती हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पहले लॉन्ग एंड डीप इनहेल,

0: इसके बाद हम गायत्री मंत्र का जाप करवाते हैं 3 बार, और इसके बाद हम लोग पामिंग करते हैं, अपने दोनों हाथों को रब करते हैं। हमारे दोनों हाथों में हमारी पूरी बॉडी की तंत्रिकाओं का जाल होता है, उसको पामिंग करके अपने सबसे पहले आईज पर, अपने चेहरे पर, माथे पर और कानों पर लगाते हैं, इसको स्पर्श कराते हैं, और जो भी पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है वो अपनी बॉडी को प्रदान करते हैं। धीरे अपनी आंखें हाथों में ही खोलते हैं। इसको करने के बाद हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड और काम हो जाती है, एक बॉडी में एनर्जी आ जाती है, और हम अपने आगे का योग और एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं।
1: मेरे को तो इतना मजा आया गाइस, लिटरली

0: अच्छा फील करते हैं और सब लोग, जो लोग रिलैक्स इतने हो जाते हैं, जो लोग रात को जिनकी नींद पूरी नहीं होती और जो लोग सो नहीं पाते, वो लोग सो भी जाते हैं योग निद्रा में और मेडिटेशन में।
1: वाओ मैम, मुझे भी क्लासेस चाहिए। आप मेल्स को नहीं देते ना, प्रॉब्लम ये है शायद।
0: नहीं हाँ। आप मेल्स का ग्रुप बना लीजिए।
1: पक्का
0: पक्का।
1: चलो गाइस, जो जो मैम से ये क्लासेस लेना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर देना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, डोंट फॉरगेट, वहाँ भी फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी आपको मैं मिल जाऊंगा। कुछ भी क्वेरीज है मेरे साथ, जितने भी लोग योगा करना चाहते हैं मैम के साथ मिलके सीखना चाहते हैं, सोचो मेरे को 2 मिनट के अंदर इतना आनंद आ गया, जब हम प्रैक्टिकली मैम से सीखेंगे तो कितना मजा आएगा, सच में बता रहा हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप कर देना, एंड आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं मैम। वेलकम बैक है, आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद विद यू। हां जी, कैसे हालचाल है? आई एम श्योर आपको योगा करके मजा आ गया होगा, मेरे को बहुत मजा आया, जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डबल हो गई है। वेल, आज बहुत ही स्पेशल दिन है, हमारे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मौजूद है मेरे साथ। तो रुचि मैम, हाउज यू फीलिंग, टेल मी, आपको मजा आ रहा है या नहीं?
0: Awesome. Thank बहुत you. अच्छा लग रहा है।
1: थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आज, एकदम ऑरेंज कलर आपने मतलब पूरा एकदम गेटअप लिया है, तो क्या क्या मतलब ऐसे क्यों आप पहन के आए, बहुत प्यारे लग रहे हो आप।
0: एक्चुअली आज मेरे को, मैं इस ऑनर के लिए भी आई हूँ, क्योंकि मुझे, मैंने आज ऑरेंज कलर इसलिए वियर किया कि मुझे नेशनल ऑनर अभी रिसेंटली ही मिला है 9 मई को।
1: ओ वाओ, कांग्रेचुलेशन, क्या बात है, डबल सेलिब्रेशन, वेरी नाइस। तो मतलब कैसे मिला ये, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा।
0: हाँ, ये मेरे को अवार्ड मिला है, 100 आइकोनिक वुमेन्स ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है, जिसमें 31 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों की लेडीज आई थी, वहां से उनको सिलेक्शन किया गया था। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की लेडीज थी, कोई सोशल वर्कर थी, डॉक्टर्स थी, और मुझे, मैंने अपने यूपी को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे एज अ योगा टीचर और वेलनेस कोच।
1: वाओ, दैट्स अमेजिंग, अपने आप में एक बहुत ही यू नो हैपनिंग मूवमेंट जो आपने सेलिब्रेट किया है, कांग्रेचुलेशन। वो अवार्ड देखना चाहते हैं जनता, चलिए मैम। हाँ, तो अभी ना मैजिक हो गया, अभी हम उस अवार्ड की बात करें, मैम के हाथ में आ गया है, मतलब एकदम से छू मंतर करके वो हाथ में आ गया है। मैम थोड़ा सा बताइए इसके लिए, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि कोई भी चीज इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है, बहुत मेहनत लगती है।
0: सही बात है,
1: है ना,
0: एक बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं हर चीज के लिए, क्योंकि आपको इस लेवल पे पहुंचना पड़ता है कि कोई आपको नॉमिनेट कर सके।
1: गॉट, अग्री
0: 100%। इस अवार्ड के लिए मुझे सिलेक्टेड किया गया है,
1: राइट,
0: तो उसके पीछे मेरे काफी हार्ड वर्क भी है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को हील भी किया है।
1: मैम के अचीवमेंट के बारे में बात कर रही हूँ रुचि मैम की, और लगातार हम उनके साथ जुड़े हुए हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बातें हो रही हैं दिल से दिल तक वाली। रुचि मदान हमारे साथ है, आपका योगा सेंटर का नाम क्या बताया आपने?
0: मेरे योगा सेंटर का नाम योगा फिट विद रुचि है,
1: फिट विद रुचि,
0: मानसरोवर कॉलोनी।
1: ऑल राइट, तो ये नाम क्यों रखा आपने, मतलब अपना आप भी आप उसमें जो है हाईलाइट हो गए और बहुत प्यारे हो आप, अपने नाम के साथ ही आपने अपने काम को जोड़ दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बताओ ना, ये नाम कैसे आइडिया आया दिमाग में इस नाम को लेकर?
0: नाम को लेके आई थिंक मुझे लगा कि मैं लोगों को अपने नाम से, क्योंकि लोग मुझे वैसे ही, सभी लोग मेरे फ्रेंड्स और जो कॉलोनी में सब लोग मुझे फिटनेस के लिए सब लोग अप्रिशिएट करते रहते थे,
1: करते हैं,
0: तो मुझे लगा मैं अपना यही स्टूडियो का नाम
1: रखूं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को, इस अचीवमेंट के बारे में बताइए जो आप सेलिब्रेट कर रही है, लगातार आपकी खुशियां मुझे दिख रही है और होनी भी चाहिए, हम भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरे FM इंटायर फैमिली की ओर से, कांग्रेचुलेशन। थोड़ा जनता को भी बताइए इस अचीवमेंट के बारे में।
0: ये मैंने 100 आइकॉनिक वुमेन्स ऑफ इंडिया अवार्ड में मुझे सेलेक्टेड किया गया था।
1: अरे वाह,
0: तो इसमें ये जो एक राष्ट्रीय सम्मान के रूप में मेरे को प्रस्तुत किया गया है, ये इसके ऑर्गेनाइजर जो थे वो तबस्सुम मैम थे, और उन्होंने ये प्रोग्राम डी में रखा था, तो हम लोग सब दिल्ली के लिए, मैं दिल्ली गई थी इस अवार्ड को अचीव करने के लिए। ये अवार्ड उन्होंने 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लेडीज को चयनित करके लिया गया था।
1: ओके,
0: चयनित करके सारी लेडीज को लिया था, तो उसी में से मैंने योगा टीचर के रूप में इस अवार्ड को प्राप्त किया, एक योगा टीचर और वेलनेस कोच के रूप में ये अवार्ड मुझे दिया गया था, जिसमें मैंने लोगों को, उन्होंने मेरे से मतलब मेरे अचीवमेंट्स पूछे थे, तो इस बेसिस पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। जैसे कि मैंने कुछ लेडीज का, एक हमारे यहाँ आती है, तो उनका मैंने नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन को उसको हमने अवॉइड कराया और उनको ऐसे ही हेल्दी कर दिया अपनी नेचुरल योगा से और नेचुरल प्रैक्टिसेस।
1: वाओ, लवली मैम, दैट्स वेरी नाइस, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन इस सेलिब्रेशन के लिए, एंड आई एम रियली श्योर आगे आपको और भी बड़े बड़े अवार्ड मिलेंगे, हमें पूरा विश्वास है, और आप जो काम कर रही हो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, लोगों को फिट करने का काम बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव, एंड आई एम श्योर आगे भी आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैम कौन कौन से बैचेस हैं आपके, जरा एक बड़ी बता दीजिए।
0: मेरे मॉर्निंग 7 o'clock से बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं।
1: ऑलराइट।

0: 7 से लेके 10 तक होते हैं हमारे बैचेस, फिर उसके बाद हमारे बैचेस इवनिंग में होते हैं।
1: ओह वाओ,
0: 5 o'clock से स्टार्ट हो जाते हैं बैचेस। और जैसे एज पर रिक्वायरमेंट, अगर लोगों को किसी को भी अगर जरूरत है अपने अपने टाइम पे, तो हम उस टाइम पर भी उनको करा देते हैं।
1: लवली, ब्यूटीफुल,
0: जो टाइम उनके अप्रोप्रिएट होता है वो उसके अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं।
1: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रुचि मैम, और आपने लाइव जनता को आज योगा कराया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगली बारी भी जल्दी आएंगे और एक नई अचीवमेंट के साथ आएंगे, करेक्ट?
0: यस
1: चलो बहुत बढ़िया। sure. जाते जाते कुछ हमारे लिसनर्स को मैम, हम ऑलवेज, आई एम ऑलवेज विद यू,
0: करती रहूं और आपके पास आती रहूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग्स भी हमें चाहिए, आप भी सुनते रहो और आके ऐसे ही प्रमोट करते
0: आप
1: रहो,
0: भी फेमस होते रहो।
1: बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, कुछ कहना चाहती हूँ तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे रेडियो पे आज की सुबह?
0: मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग योग करते रहे और स्वस्थ रहे, मस्त।
1: क्या बात है, ब्यूटीफुल, छोटी बात बट बहुत पावरफुल थी रुचि मैम। थैंक यू सो वंस अगेन, एफएम मुरादाबाद और आरजे आनंद आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता है, आप आए, और कांग्रेचुलेशन आपकी इस सेलिब्रेशन के लिए, एंड फिर कभी जरूर आपसे मुलाकात करेंगे मैम।
0: थैंक यू,
1: बाय बाय। थैंक यू गाइस, प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।

0: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठाई मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली किरण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, लोग हम लोग बहुत अच्छे स्पेस आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: उससे क्या स्वाद है?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके यहाँ हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर के क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके।
0: स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, पर्यटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाली खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त RJ खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊं पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद RJ खुशी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
5: वाह क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
6: यही तो पोषण की असली तस्वीर है, और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है, और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
5: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
6: बिल्कुल सही कहा आपने RJ, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
5: तो सबसे आसान भाषा में बताइए पोषण आखिर होता क्या है?
6: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
5: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
6: देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
5: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
6: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
5: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
6: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
5: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
6: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
5: और प्रोटीन?
6: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है,
5: वसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
6: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए, लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
5: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
6: बिल्कुल, इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
5: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
6: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
5: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
6: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
5: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
6: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
5: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
6: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
5: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
6: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है, ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर देते।
5: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
6: जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
5: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
6: जी बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
5: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
6: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
5: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
6: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
5: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
6: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
5: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
6: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
5: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
6: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
5: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
6: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल, हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वे ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
5: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
6: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है, जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
5: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
6: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
5: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
6: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के 4th महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
5: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
6: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियाँ दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियाँ, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
5: क्या आरती ने सलाह मानी?
6: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
5: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा?
6: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
5: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
6: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
5: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
6: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
5: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
6: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
5: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
6: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
5: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
6: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
5: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
6: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
5: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
6: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
5: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
6: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
5: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
6: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
5: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
6: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
5: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
6: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
5: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
6: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
5: लाभ कई, धन्यवाद। सेहत सही तो लाभ कई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
7: Brothers for Life, Mika Singh.

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

तुझे तो छत्ती।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी हाजिर है आप सभी का फेवरेट शो लेकर। जी हाँ, संडे मॉर्निंग मस्ती और करेंगे आज ढेर सारी मस्ती। दोस्तों वक्त हुआ है 10:10, अपनी घड़ियां मिला लीजिए। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ज्यादा क्या कुछ स्पेशल है बताती हूँ मैं आपको। दोस्तों जिंदगी खूबसूरत तब बनती है जब शरीर स्वस्थ हो, मन संगीत से भरा हो और सिर पर पिता का आशीर्वाद हो। जी हाँ, जब हमारी बॉडी फिट रहती है, मन हमारा ओहो म्यूजिक में डूबा रहता है और फादर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं। और कितनी खूबसूरत बात है ना कि आज का दिन हमें ये तीनों ही नियमित याद दिलाता है। आज इंटरनेशनल योगा डे है जो हमें सिखाता है बैलेंस, एंड आज है वर्ल्ड म्यूजिक डे जो हमें सिखाता है हैप्पीनेस, और आज है फादर्स डे जो हमें सिखाते हैं स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइस एंड अनकंडीशनल लव। तो आज की सुबह सिर्फ एक नई तारीख नहीं बल्कि हेल्थ, हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड को सेलिब्रेट करने का दिन है। दोस्तों मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और अगले 2 घंटे तक आपके साथ रहूंगी पॉजिटिव वाइब के साथ, अमेजिंग म्यूजिक और दिल से जुड़ी ढेर सारी बातें। सो बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों आज तारीख है 21 जून की, क्या कुछ और आज स्पेशल है सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। एंड आप भी मेरे साथ इस शो में जो कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा। एवरीवन हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और आज का सुबह का वातावरण ओहो इतना खूबसूरत, वाओ अमेजिंग। पता है क्या हुआ दोस्तों, अभी बताऊंगी आकर सब चीजें एक साथ बता दूं, ना ना ना ना ना ऐसा खुशी नहीं करती है, थोड़ा तो इंतजार करना होगा आपको। दोस्तों आज फादर्स डे है एंड सभी फादर्स को जितने भी हमें सुन रहे हैं एंड सभी को मैं कहना चाहूंगी हैप्पी फादर्स डे। एंड पापा जी के लिए बड़ी ब्यूटीफुल सी लाइनें हैं जो हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, और हम बहुत लकी हैं कि हमें इतने प्यारे स्वीट से पापा मिले हैं। और सभी के पापा बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज अगर आप भी अपने फादर्स आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, अपने पापा जी के लिए 2 लाइंस कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो अपना वॉइस नोट हमें पहुंचा दीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। दोस्तों आज का दिन उन हाथों के नाम है जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनके कंधों के नाम है जिन पर बैठकर हमने दुनिया देखी, और उस इंसान के नाम जो अपनी हर खुशी से पहले हमारे सपनों को रखते हैं। जी हाँ, आज फादर्स डे है एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ अगर आप अपने पापा जी के लिए कुछ 2 लाइन 2 शब्द कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह डालिए। आज मन में कोई भी बात मत रखिएगा अपने पापा जी के लिए। आप अपना वॉइस नोट भी पहुंचा सकते हैं अपनी मधुर सी आवाज में जो आप अपने पापा जी को आज कहना चाहते हो। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और दोस्तों पापा वो किताब है जिसे जिंदगी हर रोज पढ़ाती है, पापा जी वो किताब है जिसे जिंदगी हर रोज पढ़ाती है, पापा जी वो बरगद है जिसकी छाँव में हर मुश्किल छोटी लगती है, और पापा वो हौसला है जो कहते नहीं लेकिन हर कदम पर हमारे साथ खड़े होते हैं। तो चलिए सुनवाती हूँ मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए गुड मॉर्निंग माय लवली पीपल।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548-539-705।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
4: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम। यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग मस्ती शो विद आरजे खुशी. एंड यहां पर टाइम हुआ है 10:28. और दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल दिन है. तीन तीन दिन सेलिब्रेट किए जा रहे हैं और सब अपने आप में बहुत स्पेशल हैं. जी हाँ दोस्तों, आज इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है. और हम सुबह सुबह आज पार्क में गए, रामलीला ग्राउंड में. इतना अच्छे से वहाँ पर योगा गुरु आए हुए थे जिन्होंने हमें योगा सिखाया. एंड बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों. एवरीवन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी योग करते हैं ना, तो फिर आपको कोई शिकायत ही नहीं होगी अपने आप से, क्योंकि जो फिट है वो हिट है. और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी आ रहे हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी. दोस्तों, आज म्यूजिक डे भी है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको म्यूजिक का शौक है. अगर गाना आप सिर्फ अकेले में गुनगुनाते हैं, तो आज हम आपको कहते हैं कि आज आप अपना गाना सबको सुना सकते हैं. जी हाँ, अगर आपको सिंगिंग करने का शौक है, तो आप दो लाइनें गुनगुनाकर अपना वॉइस नोट हमें पहुंचा सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896. आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ हमारे लाखों श्रोताओं तक पहुँचे, तो अपना व्हाट्सएप मैसेज हमें पहुँचाएगा. जी हाँ, अगर आज आपको इतना स्पेशल दिन है, आज विश्व सिंगिंग दिवस, जी हाँ, वर्ल्ड म्यूजिक डे, एंड अगर आपको भी सिंगिंग करने का शौक है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, तो आप अपना वॉइस नोट यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, अपना ऑडियो पहुँचा सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाना होगा. नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगेन, 9837896896. कहते हैं ना दोस्तों, बेजान संगीत, बेजान जिंदगी में कोई मन मीत होना चाहिए. बेजान जिंदगी में कोई मन मीत होना चाहिए. मन का मीत नहीं तो साथ संगीत होना चाहिए. और सभी म्यूजिकल लवर को आज स्पेशल वर्ल्ड म्यूजिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जी हाँ, विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी दोस्तों. और आप अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाएगा, हमें भी सब्री से इंतजार है. संडे का दिन है, माना बहुत सारी तैयारियां आप कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन थोड़ा वक्त तो निकालिए. और अभी जो ऑन द वे हमें कार में सुन रहे हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे गुड मॉर्निंग. हौली हौली ऐसे ही केयरफुली ड्राइविंग कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप सब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं. और ये स्माइल ना चेहरे से दूर नहीं जानी चाहिए, हाँ, ऐसे ही चेहरे पर बनी रहनी चाहिए. और हमारे पास जो मैसेज आए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ. हमारे पास फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का, और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी मैम. एंड इन्होंने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें भी भेजी हैं कुछ, लेकिन वो अभी हम शामिल करेंगे. अरे वाह, थैंक यू सो मच. और ये कहती हैं हैप्पी फादर्स डे, आज मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है. ओ माय गॉड, रियली, अरे वाह, ये तो बहुत स्पेशल हो गया फिर आपके लिए. संदीप जी को भी हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जीवन में हमेशा ऐसे हैप्पी रहें और आगे प्रोग्रेस करते रहें, अपने करियर में सक्सेस पाते रहें. और आप सब हमेशा साथ रहें, बस हमारी तो यही दुआएं हैं, यही ब्लेसिंग्स हैं. एंड एक बर्थडे सॉन्ग तो प्ले होना चाहिए आज की मॉर्निंग, क्यों दोस्तों. चलिए एक बर्थडे सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद हम लौट कर आएंगे. आप मुझे अपना मैसेज पहुंचाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ बार बार, ताकि आप भूल ना जाएं, आप याद कर लें. और इस नंबर को इस तरह से याद करें कि आप ना इस नंबर को आंखें बंद कर भी लगा सकें, ठीक है.
कॉल तो अभी नहीं लगाना है फिलहाल, आपको अभी व्हाट्सएप करना है। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। चलिए सुनते हैं अभी एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, और संडे का दिन है, अपनी फैमिली के साथ भरपूर टाइम स्पेंड कीजिए। एंड कोई बहाना नहीं चलेगा आज, हाँ अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि बहुत स्पेशल दिन होता है संडे का जब पूरी फैमिली साथ होती है।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और मैंने आपसे कहा था, हमारे प्यारे से श्रोताओं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं राइट नाउ, कि आप अपने फादर साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं आज, जो आपने नहीं कहा है। एंड बहुत टाइम से वो मन में है बात कि हम किस तरह से पापा जी के सामने कहें। पापा जी बहुत स्वीट होते हैं एंड वो देखने में थोड़े से लगता है स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रांग हैं। मतलब स्ट्रांग तो होते हैं फादर साहब, लेकिन स्ट्रिक्ट लगते हैं ना थोड़ा सा, कि डर लगता है पापा जी से। लेकिन वो अंदर से ऐसे होते नहीं हैं, ऊपर से वो दिखाते हैं, अंदर वही प्यार होता है। उनकी डांट के पीछे भी प्यार छिपा होता है। मम्मा तो जता देती हैं लेकिन पापा जता नहीं पाते हैं। बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर आज अपने पापा जी को कुछ कहना चाहते हैं, कोई ब्यूटीफुल मैसेज उन तक डिलीवर करना चाहते हैं, तो फटाफट से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। और मैं आपके साथ आपकी खुशी। यहाँ पर एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही लवली मैसेज हमारे पास आया है, वॉइस नोट आया है, तो मैं इसको क्विकली प्ले करती हूँ। एंड क्या पहुँचा है हमारे स्वीट से लिसनर ने, ज़रा सुन लेते हैं उनकी प्यारी सी आवाज़ एंड जानते हैं उनके दिल की बातें भी, कि वो आज अपने पापा जी को क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन,
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
1: टुडे इज वेरी स्पेशल डे, फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। योर लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस आर ऑलवेज प्रेशियस टू मी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू इन माय लाइफ। वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे, विशिंग यू good health, happiness and a long life. Stay happy and stay healthy. Happy Father's Day, Papa. And my father's name is Mr. Suresh Kumar Prajapati.
0: थैंक यू सो मच मुस्कान, आपने अपने पापा जी के लिए इतना ब्यूटीफुल वॉइस नोट पहुंचाया है। एंड सच में यार, सो पापा जी का ये आपका वॉइस नोट सुनकर पापा जी का दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा एंड वो बहुत हैप्पी होंगे। और देखिए ना, जो हमें हर समय हमारी खुशियों का ख्याल रखते हैं, अपनी खुशी को पीछे छोड़ देते हैं सिर्फ हमारी खुशियों के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, तो आज उनके लिए हमारा बनता है ना, हमारा फ़र्ज बनता है ना, कि उनके डे को आज हम और ज़्यादा यूनिक स्पेशल बनाएं। एंड जो आज तक आप अपने पापा जी से नहीं कह पाए, कि बहुत डर लगता है थोड़ा सा, तो मैं कहती हूँ कि आज कह डालिए अपने पापा जी से अपने दिल की बात, जो आप कहना चाहते हैं, जो उन तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको गले लगाइए, उनको आज आई लव यू तो प्यार से कह दीजिएगा ना। और एक क्लैपिंग मुस्कान के लिए। थैंक यू सो मच मुस्कान, आपने अपना वॉइस नोट यहाँ पर पहुँचाया। आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड

0: गुनगुना लिया है, अब मौका है आप सबके सामने गुनगुनाएं, ठीक है? तो फटाफट से आप अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाइए कुछ लाइनें गुनगुना कर। कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में कोई मन का मीत हो तो सफर आसान हो जाता है, और अगर मन का मीत ना मिले तो संगीत जरूर होना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक में वो जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की हर भावनाएं को बयां कर देता है। आज 21 जून है यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे, उन सभी लोगों के लिए जिनकी सुबह किसी मधुर धुन से शुरू होती है, जिसकी शाम किसी प्यारे से गीत के साथ सुकून पाती है, और जिनके हर एहसास के साथ ही सिर्फ म्यूजिक होता है। आज मौका है तो जल्दी से आप अपना वॉइस नोट मुझे पहुंचा दीजिएगा और मैं एक अमेजिंग ट्रैक आप तक पहुंचाती हूँ। और ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है, किशोर जी की आवाज़ में, किशोरदा जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना है, मीनिंगफुल ट्रैक है। एंड जब आप इसको सुनेंगे ना, आपने कई बार ही सुना है लेकिन जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक मोमेंट, हर एक सेकेंड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कितना मोस्ट है। और वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, मुझे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं भी गुनगुना लेती हूँ, और जो गाना मैं प्ले कर रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्रैक मैं गुनगुनाना चाहती हूँ आप सभी के लिए, और इतनी प्यारी सी लाइफ मिली है हमारी, हमें ज़िंदगी मिली है, तो एक ट्रैक है ना बहुत ही खूबसूरत सा है, वो आप सबने सुना भी है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है दोस्तों। तो एवरी टाइम आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी रहो, खुशियां बांटो एंड खुश रहो, और क्या रखा है जिंदगी में। बाकी मेरी आवाज तो ऐसी ही है, लेकिन हाँ ये ट्रैक मैं आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ, तो एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक पर।
1: जिंदगी

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है कुछ खूबसूरत गानों के साथ, इंटरेस्टिंग बातों के साथ और इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हम डिलीवर करते हैं यहाँ पर एवरी मॉर्निंग। आज संडे की सुबह है और वक्त हुआ है 11:01 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और आप सभी के मैसेज यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों, क्या आपको पता है 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, इसी वजह से उत्तरी गोलधारा में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। कई जगहों पर लगभग 14 से 15 घंटे तक सूरज की रोशनी रहती है। यही दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति का हर पल कितना अनमोल है, इसलिए सुबह की धूप का आनंद लीजिए, थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताइए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। और दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, तो अगर अभी तक आपने योगा नहीं किया है या कर लिया है, वैसे कर लिया होगा हमारे लिसनर्स हैं क्योंकि सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड स्मार्ट भी हैं। सुबह सुबह 5 बजे उठकर जो रामलीला ग्राउंड के आसपास रहते हैं वो वहां पर पहुंच चुके थे और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लिसनर्स ने हमारे सुबह सुबह योगा किया, मेडिटेशन की, एक्सरसाइज किया, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे अनमोल अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी जो बॉडी है वो एकदम फिट रहेगी, तो हम हर चीज़ का लुत्फ़ उठा पाएंगे। और दोस्तों देखिए, चाहे हमारे एक इंसान ऐसा भी है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास स्वास्थ्य नहीं है, हेल्दी बॉडी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसों का? कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आपके पास पैसा कम है और आपके पास फिटनेस है, हेल्दी हैं आप, तो आप हर चीज़ का आनंद ले पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें, पानी पीते रहें, इस मौसम में विशेष अपना ध्यान रखें, जो मौसमी फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका सेवन कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ और संदेश यहाँ पर लगातार आ रहे हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो क्या क्या पहुँचाते हैं आज की मॉर्निंग। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने गुड मॉर्निंग तो पहुँचा है लेकिन अपना नाम नहीं बताया, ये गलत करते हैं आप। कितनी बार मैं आपसे कहती हूँ, आप भूल जाते हो। ओहो, अपना नाम भी लिखा कीजिए। एंड यहाँ पर एक मैसेज और हमें मिला है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। रणवीर सिंह जी का मैसेज आया है मुरादाबाद से, कहते हैं बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान जी के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पापा जी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे, तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत सी बात आपने कही है और रियली। एंड हम लोग भी जब बचपन में छोटे थे तो हम लोग मेला देखने के लिए जाया करते थे, स्पेशली दशहरे का मेला बहुत क्राउड होता है, बहुत लोग जाते हैं देखने के लिए और बहुत भीड़ भी होती है। तो हम लोगों को जब रावण के दर्शन नहीं होते थे, जब रावण दहन होता था, तो पापा जी हमें अपने शोल्डर पर बिठाकर हमें दिखाया करते थे। हम बोलते थे पापा जी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो पापा हमें अपने कंधे पर बिठाते थे और हमें वहाँ पर दिखाया करते कि देखो बेटा अब दिखाई दे रहा है ना साफ। हम कहते थे हाँ, और बहुत खुश हुआ करते थे। वो टाइम, वो पल हम बहुत मिस करते हैं और बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें इतने प्यारे मम्मी पापा मिले हैं। तो उनका आप विशेष ध्यान रखिए एवरीवन, उनसे प्यार कीजिए, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस अगर चाहिए तो वो है आपका समय, जो आप अगर आप उनको 10 मिनट भी देंगे ना, उनके पास बैठेंगे, उनके हालचाल आप पूछेंगे, वो उसी में खुश हो जाएंगे। मैं अभी लेती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं करूँगी आपसे और भी बातें। देखिए, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मालूम करना चाहती हूँ, अगर आप म्यूजिक लवर हैं
तो आप गुनगुनाने के शौकीन भी हैं मुझे मालूम है, आप गुनगुनाती रहती हैं किचन में, कभी रूम में, कभी सिलाई करते करते, तो कभी खाना बनाते बनाते, लेकिन आज आपके पास मौका है, आप वो प्यारा सा संगीत जो आप अक्सर अकेले में गुनगुनाया करती हैं आज हमारे लाखों श्रोताओं तक सुनवाइए अपनी आवाज़। जो गाना आपका फेवरेट है देखिए यहाँ पे आपको शर्माना नहीं है, सीधा आपको दिल से गुनगुनाना है जो आप अक्सर गुनगुनाया करती हैं। हाँ जी वही ट्रैक अपना फेवरेट। जब तक आप गुनगुनाकर हमें अपना ऑडियो भेजती हैं तब तक हम आपको एक ब्यूटीफुल ट्रैक सुनवाते हैं। आज की मॉर्निंग अमेजिंग ट्रैक है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना भी पसंद आएगा। बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और कहीं मत जाइए, ठीक है। वैसे आज स्पेशल और क्या आप कुछ कर रहे हैं, कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं ये भी बता सकते हो आप, शायद हम भी चले जाएं कहीं घूमने के लिए। लेकिन टेंशन ना लो, अभी नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, अभी हम आपके साथ रहने वाले हैं, बने रहेंगे यहीं पर 12 बजे तक। बस आप यूं ही एंजॉय करो ये प्यारा सा ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, सलाम तो हम भी आपको करेंगे, सलाम नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू एवरीवन, बताइए अपने हालचाल कैसे हैं। ओ हो, आज तो मेडिटेशन करके आपकी बॉडी अलग ही लग रही है। हाँ, अलग ही एनर्जी बॉडी के अंदर है ना। दोस्तों देखिए, जब आपने आज योगा किया है एक दिन, तो कितना अच्छा फील हो रहा है। जब आप रेगुलर करेंगे तो फिर कितना अच्छा महसूस कर पाएंगे, है ना। हमेशा फिट भी रहेंगे, कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, ओहो, शोल्डर में दर्द, वो चीज़ें वो की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी जब आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे। तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और ये सुबह सुबह व्यायाम कीजिए, वॉक कीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप फिट रहेंगे ना तो हर कोई आपका अपना बनना चाहेगा, लेकिन अगर जब आपका स्वास्थ्य ही आपका साथ नहीं देगा तो कोई कितना भी अपना हो वो भी आपसे दूर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। सुबह ज़्यादा नहीं तो बस 30 मिनट्स आप अपने लिए निकाल लीजिए एवरी मॉर्निंग। आप सुबह 5 बजे उठिए एंड उसके बाद आप वॉक करने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। 5:30 तक आप कर सकते हैं, 5:30 बजे, उसके बाद जो भी आपके काम होते हैं, जो भी आपका रूटीन होता है, वो आप अपने उसी हिसाब से फिर अपना कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कहना चाहती हूँ कि आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ओहो, अब आपको पता चल रहा होगा कि खुशी जी को कैसे पता चल जाता है हम मुस्कुराते हैं। देखिए, दिल से दिल का रिश्ता है आपका और हमारा, तो आप जब मुस्कुराते हैं ना तो इधर खुशी को भी मुस्कुराहट आ जाती है, तो हम समझ जाते हैं ओहो हमारे श्रोता भी इस समय मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और कामों में भी व्यस्त हैं। लेकिन आप, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जब आप सब ऐसे ही ध्यान से रेडियो सुनते हैं और अपने कामों में अच्छे से मतलब काम को कर पाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए फाइनली खुशी की जो मेहनत है वो रंग लेकर आ रही है धीरे धीरे। और अभी यहाँ पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग से मैसेज आए हैं, मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आए हैं तो मैं जल्दी से शामिल करती हूँ क्या क्या पहुँचाते हैं हमारे सुबह सुबह प्यारे प्यारे से लिसनर्स। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे, पल पल एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल, हम सुनवाएंगे ट्रैक आपको। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है प्रतीक्षा का, और प्रतीक्षा कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड ये हमें योगा डे की शुभकामनाएं दे रही हैं, इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, और ये कहते हैं राम राम, गुड मॉर्निंग आपको, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। साथ में इनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, कांट रोड लदावली मुरादाबाद से ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, और ये कहते हैं कि कुछ रिश्तों को मुलाकात की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ रिश्तों को मुलाकात की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस याद करते ही चेहरे पर खुशी छा जाती है। आपने हमारा मैसेज पढ़ा, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, हमारी तरफ से भी आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं बैक टू बैक, हम उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। बस आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अकेले अकेले गुनगुना रहे हो आप? हाँ, हमने कहा था वॉइस नोट पहुँचा दो, लेकिन आप इतना शर्माते क्यों हैं? देखिए, शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आपको आज ये मौका मिला है ना गुनगुनाने का, तो आप गुनगुना दीजिएगा ना कुछ गाना जो आपको पसंद हो। क्या बोल रहे हैं कि नहीं मैम, हम अकेले ही गुनगुनाएंगे? अच्छा चलो ठीक है, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जो प्यार से बातें एक्सेप्ट करते हैं ना, वो उसमें नहीं है, फोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। देखिए, अगर आपका मन होगा ना गुनगुनाने का, आपके अंदर वो हेजिटेशन नहीं होगी, वो घबराहट नहीं होगी, तो आप अपना मैसेज हमें वॉइस नोट पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आप फिर पीछे ही रह जाएंगे दोस्तों। तो ये आप ही के लिए प्लेटफॉर्म है एफएम मुरादाबाद 89.6। तो अभी सुनिएगा एक अमेजिंग सा ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ, बस यूँ ही मुस्कुराते रहिए।

0: सर जी, अरे काहे मुस्कुरा रहे हो?
1: कहा मुस्कुरा रहे? नहीं कहीं मुस्कुरा रहे?
0: मुस्कुरा तो रहे हो?
1: नहीं मुस्कुरा रहे।
0: लो लो
2: अनंत।
3: अरे क्या हुआ
2: अनंत?

0: फुर्सत का स्वाद भी।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस, नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
9: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। दोस्तों कहते हैं ना कि माँ ममता की मिसाल होती हैं, लेकिन पिता वो मजबूत छत होते हैं जिनकी छाया में हर सपना सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों पिता की छाया में हर खुशी मिल जाती है, उनके होने से हर राह आसान हो जाती है। खुद दर्द सहकर भी मुस्कुराते रहते हैं, पिता ही बच्चों के लिए पूरी दुनिया बन जाते हैं।

एंड दोस्तों आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने एक प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट मुझे भेजी है, गुड़िया चाहे ना लाना पापा तुम जल्दी आना। ओल्ड ट्रैक है लेकिन बहुत प्यारा है ना, लाइनें कितनी खूबसूरत हैं। एंड ये हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं वैदिक, ज्योति, अक्षरा, कनिका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना साहू एंड प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो दोस्तों अभी हम लौट कर आते हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, बस यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज आप अपने पापा जी के लिए क्या स्पेशल कर रहे हो बताओ मुझे एवरीवन। हाँ जी, जो हमारी पूरी दुनिया है, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, आज आप उनके लिए क्या स्पेशल कर रहे हो बताओ मुझे। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और एक अमेजिंग सा ट्रैक मैं आपको यहाँ पर सुनवाती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी, फिर करूँगी आपसे बहुत सारी गपशप एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो आप तक मुझे डिलीवर करनी है, जो आप तक मुझे शेयर करनी है, बस आप यूँ ही चिपके रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने फेस पर ऐसे ही स्माइल बनाए रखिएगा।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और ऐसे ही शाम में अपने पापा जी का इंतजार करते थे। जब सुबह पापा ऑफिस जाते हैं और शाम को जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं 6 बजते हैं तो पापा का इंतजार भी सब्र से बच्चे को होता है कि पापा घर आएंगे, हमारे लिए कुछ चॉकलेट्स फ्रूट्स लेकर आएंगे एंड कोई फेवरेट चीज़ जो हम पापा से अक्सर विश किया करते हैं। पापा को बोलते हैं कि पापा जी प्लीज़ जब आप शाम को आएंगे ना तो ये चीज़ें हमारे लिए लेकर आना। एंड जब पापा शाम को आते थे तो वो एक्साइटमेंट, वो हैप्पीनेस हमेशा यू नो दिल में रहती थी। और थोड़ा सा डर भी होता था, लाइक जैसे मम्मा के सामने तो बच्चे एक बार को पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब खेलते हैं मस्ती करते हैं, क्योंकि वो मम्मा से इतना मतलब नहीं डर पाते क्योंकि वो फ्रेंडली ज़्यादा रहते हैं। मम्मी बहुत प्यार करती हैं, बहुत स्वीट होती हैं, पापा भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब सामने से दिखाते हैं कि कितने स्ट्रिक्ट हैं, बट ऐसे होते नहीं हैं अंदर से।

0: बहुत सॉफ्ट होते हैं. एंड तो हम क्या किया करते थे, मैं अपने अगर बचपन की बात आपको बताऊं तो जब हम छोटे हुआ करते थे, आई थिंक 4-5 क्लास में हम थे, तो इवनिंग में क्या होता था, जब हम पापा का इंतज़ार करते थे कि घड़ी में 6 बज गए हैं, पापा जी अब आने वाले हैं, तो हम किताबें खोलकर बैठ जाते थे कि पापा को लगेगा ओहो हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, ये कितनी पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं. हम थोड़े नटखट भी हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी किया करते थे, थोड़ी शरारतें भी किया करते थे. और अभी मैं तो अभी भी वैसी ही नटखट सी लड़की हूँ, बहुत शरारतें करती हूँ. मम्मी कहती हैं कि तुम बड़ी हो गई लेकिन तुम्हारा बचपना कभी नहीं जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है. मैंने कहा मम्मा इतना प्यारा सा जीवन है, और मुझे लगता है कि देखिए बड़े हम कितने भी हो जाएं लेकिन वो छोटा सा जो हमारे अंदर बच्चा है ना, जो मतलब कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, तो थोड़ा सा वो नटखटपन रखना चाहिए, उसे ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत लगती है. इतनी जैसे हम कभी कभी बहुत भारी भरकम सोचने लगते हैं, बहुत दूर तक की सोचते हैं बड़ा बड़ा, तो उससे क्या होता है ना लाइफ में स्ट्रेस भी बढ़ता है. लेकिन जब हम थोड़ा सा लाइफ में फन करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा वो बचपना अपने अंदर लेकर आते हैं, तो ज़िंदगी आसान लगती है, खूबसूरत लगती है. और हम जब शाम को पापा जी आया करते थे तो हम लोग किताबें खोलकर बैठ जाया करते थे, तीनों बहन भाई, और पापा हमें देखकर बहुत खुश हुआ करते थे कि ओहो मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. और हम सबके लिए कुछ नया कुछ रेगुलर लेकर आया करते थे और सबको प्यार से बांट कर खिलाया करते थे. लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मिला करता था घर में, कोई भी चीज़ अगर पापा लेकर आते थे तो सबसे पहले मेरे को मिलता था और मुझे सबसे ज़्यादा मिलता था. तो मेरा छोटा ब्रदर बोलता था कि पापा जी दीदी को हमेशा आप ज़्यादा क्यों चीज़ें देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते, मैं तो सबसे छोटा हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए ना आप सभी को, आप दीदी को हर चीज़ दे देते हैं सबसे ज़्यादा. तो पापा कहते हैं कि बेटियाँ देखो हमारी बेटी अकेली है और बहुत प्यारी है और तुम्हारी इकलौती बहन है, तो उसको डबल हिस्सा मिलना चाहिए ना, आप तो दोनों भाई हो. तो फिर कहते थे ठीक है. तो वो वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और अभी भी पापा जी हमेशा उतना ही प्यार हमें करते हैं जब हम घर जाते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा हमारे साथ होती हैं. और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपने सब कुछ हमें दिया है, थैंक यू सो मच, एंड इतने अच्छे पेरेंट्स हमें दिए हैं, और बस यही हम प्रार्थना करते हैं कि वो ऑलवेज हमेशा हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें. और बाकी हम जो भी पापा के ड्रीम्स हैं वो हम सब पूरे कर पाएँ हम बच्चे मिलकर, क्योंकि देखिए हमारी खुशी में पेरेंट्स अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो हमारे भी फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी खुशी में हम भी खुशियाँ ढूंढें. और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास ना एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा वॉइस नोट आया है, तो मैं उसको क्विकली प्ले करती हूँ क्योंकि उसको सुने बिना मैं तो नहीं रह पाऊँगी, इतना प्यारा सा मैम ने भेजा है. तो चलिए सुन लेते हैं दोस्तों क्या पहुँचाए हैं आज की सुबह हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लिसनर ने.
1: राधे राधे खुशी, मैं अलका वर्मा. आज फादर्स डे के मौके पे सभी FM सुनने वालों को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. खुशी मुझे एक गाना सुनवा देना दुश्मन मूवी का, चिट्ठी ना कोई संदेश जहाँ तुम चले गए. खुशी मेरे पापा को 2 साल हो गया गए, पर आज भी उनकी यादें हैं मुझे, हमेशा उनके साथ रहती है. मैं उनके बारे में क्या लिखूं, क्योंकि मैं तो उनकी खुद ही लिखावट हूं, मैं कुछ कह नहीं सकती. और जानती हैं मुझे गाने का शौक और रेडियो सुनने का शौक पापा से ही मिला था, क्योंकि मेरे पापा रेडियो के बहुत शौकीन थे और जब भी सोते थे तो सिरहाने पे रख के सोते थे और सुबह उठते ही ऑन कर देते थे. ये शौक मुझे अपने पापा से ही मिला था बस, और मैं क्या कहूँ. थैंक यू खुशी.
0: मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना वॉइस नोट पहुँचाया, अपनी दिल की बातें हम तक पहुँचाई. और आपने कितनी अच्छी बात कही कि आपके पापा जी से आपको ये रेडियो सुनने का शौक मिला और गाने सुनने का. देखिए हमारे घर में पहले से ही जब हमारे फैमिली मेम्बर्स जो बड़े करते हैं वही बच्चा देखकर सीखता है. और रेडियो आपने कहा कि सुनाने रख कर वो सुना करते थे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही पहले वो रेडियो ऑन किया करते थे. हमारे घर में अभी भी ऐसा ही होता है, एंड हमें ये रेडियो सुनने का शौक हमारे अंकल जी से लगा, क्योंकि वो बहुत बड़े रेडियो के दीवाने हैं, बहुत क्रेजी हैं। एंड वो भी रात को चाहे 11-12 बज जाते थे, वो रेडियो सुबह ऑन करते थे और रात को उनका इतनी लेट बंद होता था रेडियो। तो हम जब लोग हम एक अच्छा कोई गाना प्ले होता था तो हम खूब डांस किया करते थे तीनों बहन भाई मिलकर। तो मेरे चाचा जी बहुत खुश हुआ करते थे जब हम सब बच्चे खुश हुआ करते थे, कहते थे अच्छा चलो दूसरा गाना लगाता हूँ मैं आपके लिए। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा रेडियो के शौकीन थे और हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ रेडियो पर होती है। दोस्तों जो रेडियो का प्यार है ना, जो रेडियो पर ट्रैक चलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सुनने का मज़ा ना एक अलग ही है। हम चाहे कितना भी फ़ोन चला लें, कितना भी टीवी देख लें, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता है जो रेडियो पर मिलता है। एंड हमारे पास एक और प्यारा सा मैसेज आया है यहाँ पर मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आपका शो मॉर्निंग मस्ती, संडे मॉर्निंग मस्ती हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आपने ट्रैक भी बहुत ही अच्छे प्ले किए हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एक मैसेज और हमारे पास यहाँ पर आया है गुजरात से मधुभाई चौहान जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपको योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सेम टू यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड दोस्तों कुछ और मैंने कहा था ना आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या शेयर करने वाली हूँ मैं आपसे। दोस्तों आज पूरे देश में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसी खास मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। गंगा जी के पावन तट पर हजारों लोगों ने एक साथ योग और प्राणायाम कर ये संदेश दिया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, हर किसी ने पूरी उत्साह के साथ योग किया। प्रकृति की गोद, माँ गंगा का किनारे और उगते सूरज की किरणें के बीच किया गया योग सच में एक अद्भुत नज़ारा था। दोस्तों योग सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसी आदत है जो हमें तन से भी मजबूत बनाती है और मन को भी शांत रखती है। वंस अगेन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवरीवन। और दोस्तों योग केवल शरीर को फिट रखने का तरीका नहीं बल्कि ये तन, मन और आत्मा तीनों को एक साथ जोड़ने का माध्यम है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और सोच सकारात्मक होती है, तब जीवन भी खूबसूरत लगने लगता है ना। महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था सच्ची खुशी हमारे भीतर ही होती है, और योग हमें उसकी आंतरिक खुशी और आत्मविश्वास से जोड़ने का रास्ता दिखाता है। तो आज हम सब मिलकर छोटा सा संकल्प लें कि रोज अपनी व्यस्त जिंदगी में कम से कम 15 से 20 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालेंगे। जो खुद का ध्यान रखता है ना, वही अपने परिवार और अपने सपनों का भी सबसे अच्छा साथी बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए मैं कहती हूँ अगर सबसे अच्छा अपना साथी बनना है ना खुद का ही, तो आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है एंड अपने आप को फिट रखना है। वंस अगेन एवरीवन, इंटरनेशनल हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। एंड एक ट्रैक हम सुनवाएंगे यहाँ पे, मैम ने रिक्वेस्ट हमें की थी, तो बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और एक बहुत ही खूबसूरत सा हम मैम की पसंद का ट्रैक सुनवाते हैं जगजीत सिंह जी की आवाज़ में, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा वो देश जहाँ तुम चले गए। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति, आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लिए भी ज़रूर समय निकालिए दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना जो फिट है वो हिट है। तो चलिएगा, मिलेंगे हम आपसे, सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, कीप स्माइलिंग।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाँ जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आनंद विद यू। और जब भी रेडियो पर आते हैं कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, और आज की ये जो सुबह है बहुत खास है, क्योंकि आज मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हुआ है। तो मेरे साथ एक बहुत ही गजब की पर्सनालिटी है यार। सुबह सुबह उठते ही ना कभी कभी बड़ा आलस आता है। मम्मी हमेशा ताने मारती है, बेटा उठ जाओ, कुछ एक्सरसाइज कर ले। मैं कहता हूँ मम्मी इंटरनेट पे देखे ना, मेरे से नहीं होती है, मुझे ना प्रैक्टिकली सीखना है। तो फिर मैंने सोचा प्रैक्टिकली सीखना है तो क्या किया जाए। फिर मैंने सर्च किया यहाँ पे योगा टीचर को, योगा एक्सपर्ट को। अब जब योगा की बात आती है, योगा एक्सपर्ट की बात आती है, तो भाई साहब एक ऐसा नाम अपने मानसरोवर का जाना माना नाम, यस आई एम टॉकिंग अबाउट रुचि मदान। आज वो मेरे साथ स्टूडियो में है। मैम आपका वार्म वेलकम है, स्वागत करते हैं आपका जोरदार तालियों से। हाउ आर यू, कैसी हैं आप?
1: आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच आरजी आनंद,
0: थैंक यू मैम
1: पर इनवाइट करने के लिए।
0: थैंक यू मैम। मैम बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं, और मैम से जरा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले ये बताओ आपको रेडियो में आके कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है, मतलब मैं अपना यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ।
0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच। वैसे हम लोगों का जो प्लान है बहुत टाइम से चल रहा था, मेरा और रुचि मैम का, कि हम इंटरव्यू करेंगे, स्टूडियो में आपको बुलाएंगे, बट वो एक मतलब सही टाइम जैसे कहते हैं वो बन नहीं पा रहा था। कभी मैम बिजी हो जा रहे थे, कभी हम बिजी हो जा रहे थे, बट फाइनली आप स्टूडियो आए। तो आपको कैसा लग रहा है, टेल मी, ये ऑफिस लाइटिंग इन सारी चीजें?
1: सब कुछ बहुत ऑसम है, आपका पूरा सेट बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू सो मच। और आज आप
1: स्पेशली आरजी आनंद,
0: नहीं स्पेशली रुचि मैम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, और नो डाउट मैम बहुत ब्यूटीफुल हैं। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मैम ने मेंटेन की हुई है, शायद उसकी कराज योगा तो नहीं उसका राज?
1: यस यस,
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अरे वाह, आज बहुत सारी बातें होंगी रुचि मैम से। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मौजूद हैं, और आप सुन रहे हैं इनको ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, बिना किसी देरी के मैम का इंट्रो कराते हैं। मैम से जो है आपको रूबरू कराते हैं, उनका तारुफ जरा सुन लेते हैं। मैम थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं जो लोग आपको सुन रहे हैं।
1: हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि मदान हियर। मैं मानसरोवर में योगा स्टूडियो है मेरा, योगा फिट विद रुचि के नाम से, जिसकी मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो हम लोग वहाँ पर सब लेडीज को और बच्चों को, सभी को योगा कराते हैं, और सब लोग वहाँ पे आके बहुत हैप्पी होते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स भी करते रहते हैं, इवेंट्स प्लान करते रहते हैं, और सबको हम निशुल्क योगा भी करवाते हैं।
0: अरे वाह, निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट?
1: फ्री ऑफ कॉस्ट योगा हम वीक में एक बार रखते हैं।
0: अरे वाह,
1: पार्क में या स्कूल्स में।
0: अरे वाह,
1: एक सेशन होता है हमारा, जिससे कि सब लोग मोटिवेट हो, योग के लिए प्रेरित हो।
0: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मैम इसके लिए आपने कोई सर्टिफाइड कोर्स किया है या कोई स्टडी?
1: जी, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है लखनऊ से।
0: अरे वाह, बहुत
1: गोकुलम से, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने अपना कोर्स कम्प्लीट किया है पोस्ट ग्रेजुएशन का। फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस की है, 10 ईयर्स मैंने अपना प्रैक्टिशनर भी रही हूँ योग में, और अब मैंने लोगों को मतलब इस तरीके से अवेयर किया है, और सब लोग मेरे साथ जो जुड़ गए हैं उनकी मैंने जो भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उन पे बहुत वर्क किया है, और उसके एक्सपीरियंस के साथ मैं सब लोगों को हील भी कर रही हूँ।
0: ओह वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। तो गाइज आज जो हमारे साथ बैठी हैं वो कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है भैया, अपने आप में ग्रैंड पर्सनालिटी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी भी शेप में आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, आप जो एकदम ऑसम दिखो बिल्कुल रुचि मैम की तरह, वो दिख भी रही है भाई इंस्टाग्राम पे, उनके अच्छे रील्स भी आने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट फॉलो करके रखिएगा। वेल आगे बढ़ेंगे। रुचि मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये क्यूरियोसिटी कैसे आई कि आपको योगा फील्ड में आना है?
1: एक्चुअली मेरे को योगा शुरू स्टार्टिंग से ही फिटनेस का बहुत था।
0: अच्छा।
1: कि मतलब एक फिटनेस अपने आप को फिट रखने का और अच्छा दिखने का।
0: क्या बात है।
1: तो मैं जब भी कॉलोनी में वॉक करती थी सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे।
0: अरे वाह।
1: मेरा शुरू से ही वॉक का हमेशा नियम रहा है, तो सभी लोग अप्रिशिएट करते थे कि यार तुम्हारा तो अच्छा रूटीन है, तुम्हारी फिगर बड़ी मेंटेन है। तो मुझे लगा कि सब लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो क्यों ना मैं इस फील्ड में ही आगे बढ़ूं, फिटनेस के फील्ड में, और लोगों को भी फिट करूं। मेरा ये एम है कि मैं सभी लेडीज को जो मेरे यहाँ भी आती हैं उनको हैप्पी बनाऊं, उनको हमेशा खुश रखूं इंटरनली और एक्सटर्नली, उन सबको फिट करूं और फिजिकली और मेंटली।
0: क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव रुचि मदान मैम आपका है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो खुद भी फिट होते हैं और दूसरों को भी फिट रखते हैं, मतलब ईच वन टू कीच वन। भैया मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, नहीं करोगे तो जबरदस्ती करा देंगे।
1: हमारे योगा सेंटर में जितने भी लोग आते हैं सब लोग फिजिकली इतने फिट हो गए हैं, और उनके सारे डिजीजेस जो भी थी प्रॉब्लम सब दूर हो गई है, मेंटली भी वो लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और इन सब चीजों के साथ फिजिकली मेंटली तो वो फिट हुए ही हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव हुआ है।
0: That's very nice. तो ये जो सेशन है ना गाइस, इसको आपने पूरा सुनना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं आज आपके लिए जो बहुत ही अल्टीमेट होने वाली हैं. योगा करने का शौक है आपको तो बस टेंशन मत लो, आज बहुत सारी एक्सरसाइज मैम से पूछने वाले हैं, अंदर की बातें बाहर निकालेंगे. मैम ने एक छोटा सा शब्द बोला था हील वाला ना, उसके बारे में भी हम जानेंगे. स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ. और बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी 9837896896. रुचि मदान जी हमारे साथ हैं, योगा एक्सपर्ट हैं. और आगे आइए उनसे और जानकारियां लेते हैं, योगा के बारे में और जानकारियां विस्तार से लेने वाले हैं हम और जानेंगे उनसे इसके बारे में. और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद. मैं तो सोच रहा था आज की सुबह सुबह ओम चैंटिंग कर लूं, फिर मुझे याद आया नहीं भाई, मुझे ओम चैंटिंग से ज्यादा ना मुझे कपाल भाति के बारे में जानना. फिर अंदर से आवाज आई, नहीं प्राणायाम के बारे में जानेंगे, और कभी ख्याल आता नहीं मेडिटेशन के बारे में जानेंगे. तो इन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, बट आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी है उनके पास डेफिनेटली है. यस, हम रुचि मदान जी से बात कर रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है. तो मैम आपको एनर्जी मिल रही है, अच्छा लग रहा है?
1: Yes, obviously. आपके साथ
0: में तो अच्छी
1: लग रहा है.
0: That's very nice, ma'am. And अब हम आगे का सिलसिला शुरू करेंगे. मैम एक मेरे जैसे लोग होते हैं जो सुबह उठते ही ऑफिस चले आते हैं, मतलब नहाए ऑफिस चले आए, उनको टाइम नहीं है ओम चैंटिंग का भी, बट कभी कभी ऑफिस में बैठ के कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो कहते हैं ना अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस सुबह उठते हैं, बैठ टी पीते हैं और अपनी दिन की शुरुआत बड़ी नॉर्मली करते हैं. कुछ आपके जैसे होते हैं बड़ी ग्रैंड पर्सनालिटी, उठते हैं वॉक करते हैं, अपनी फिटनेस के लिए लड़ाई करते हैं डेली, सेक्रीफाइस करते हैं सुबह. कितने बजे आप उठ जाती हैं?
1: सर मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ.
0: अरे बाप रे, मतलब कोई भी हो, मतलब सीजन गर्मी सर्दी बरसात.
1: यस,
0: आपने 5 बजे उठने हैं तो उठना है. क्या बात है, बहुत बढ़िया. उसके बाद फिर कैसे आप शुरुआत करती हैं?
1: एक्चुअली मेरे सेशंस होते हैं 7 to 8 और 8 to 9 सेशंस होते हैं.
0: ओके, मतलब क्लासेस भी
1: क्लासेस स्टार्ट होने लगती हैं 7 o'clock से.
0: ठीक है,
1: तो उससे पहले मुझे अपना पूरा रूटीन फॉलो करना होता है. जो भी मेरा रूटीन है, तो मैं 5 o'clock उठकर अपनी पहले योगा की प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मेडिटेशन में जाती हूँ, फिर उसके बाद अपने मेरे दिनचर्या के कार्य शुरू हो जाते हैं.
0: दैट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा रुचि मैम, आपने तो अपनी दिनचर्या की बात कर ली, अब एक नॉर्मल इंसान अपनी दिन की शुरुआत कैसे करे, जिनको नहीं पता, जो तो आज के डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया सबको पता है, पर बहुत सारे लोगों को सही डायरेक्शन नहीं पता होती है.
1: Yes.
0: कौन सा वाला योगा उन्हें करना चाहिए, कौन सी इसमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमारी बॉडी के लिए कौन सा वाला बेस्ट है ना, हमें ये चीज नहीं पता होती है. तो अगर मैं आपसे बोलूं एक जो नॉर्मल इंसान है जिसको कुछ नहीं पता और बट वो एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है अपने दिन की शुरुआत, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो वो एड ऑन कर सकता है?
1: एड ऑन करने के लिए जो बिगनर्स हैं, मेरे पास योगा स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं जिन्हें मैंने गाइड किया है अभी तक, वो सभी बिगनर्स आए हैं.
0: वाओ,
1: तो मैंने बिगनर्स को, अब मैं उनको धीरे धीरे, पहले मैं इंटरमीडिएट लेवल पर उनको लेकर गई, अब मैं एडवांस लेवल पर उनको लेकर जा रही हूँ.
0: ओके,
1: तो उनकी बॉडी में काफी अच्छे चेंजेस आए हैं और वो लोग इम्प्रूव भी कर रहे हैं. मैं अब सभी के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ, जो लोग अपने इतने बिजी शेड्यूल से अपने लिए हाफ एन आवर तो जरूर निकालें.
0: करेक्ट, बिल्कुल.
1: और अगर वो अपना मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं तो बैड टी से स्टार्ट न करके थोड़ी देर फ्रेशन अप होके पहले 2 glass ल्यूकवार्म वाटर लें, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल होके अपना थोड़ा फ्रेश होके वो थोड़ी देर अपने प्राणायाम और थोड़े से स्मॉल सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं.
0: ओके, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये बहुत बेसिक और बहुत लाइट
1: एक्सरसाइज
0: है.
1: अगर वो स्टार्ट सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं और फिर उसके बाद वो प्राणायाम करते हैं तो उनके लिए सफिशियंट होगा. धीरे धीरे उनकी बॉडी से स्टिफनेस जाने लग जाएगी, तो फिर धीरे धीरे से वो और भी दूसरी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं.
0: वेरी नाइस.
1: अभी नहीं, हम एकदम से ही कह दें कि नहीं जी आपको 100 सूर्य नमस्कार करने, 108 सूर्य, तो भाई बंदे को मोटिवेशन कैसे मिलेगी?
0: करेक्ट.
1: अब धीरे धीरे आप जीरो से स्टार्ट करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे ही. और कंसिस्टेंसी जरूरी है.
0: एब्सोल्युटली, आपने ये नहीं, मेरी तरह नहीं करना है, एक दिन किया फिर एक हफ्ते बात कर रहे हो, फिर वहीं के वहीं रह जाओगे. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सुबह सुबह मैं कहता हूँ आपकी लाइफ कितनी भी क्यों ना बिजी हो, मैम अगर हम फिट हैं तो सारी चीजें अच्छी हैं, आपका करियर, आपकी जॉब, एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं, बट अगर आप फिट ही नहीं है तो सब चीजें खराब है.
1: सही, तो अपनी यही लेडीज के साथ भी है, अगर लेडीज हेल्दी है तो अभी अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगी, अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर पाएंगी.
0: बिल्कुल मैम,
1: अगर वो खुद ही हैप्पी नहीं है, खुद ही वो डल फील कर रही है, तो अपनी फैमिली में भी 100% नहीं दे सकते.
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात बोली है मैम ने. और मैम आपने जो विमेंस को टारगेट किया ना, बहुत ही बढ़िया. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो घर की मियां होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, उनका लाइफस्टाइल सुबह से शुरू हो जाता है. आपने बताया 5 बजे से आपका समझ लो शुरू ही हो गया अपना रूटीन, तो वो उसके अभी क्या होता है ना, कुछ कुछ हमारे घर में हमारी जो मम्मियां होती हैं, हमारे जो घर में सिस्टर्स होते हैं, वो अपनी लाइफ में ना अपने आप पे थोड़ा कम ध्यान देती हैं.
1: एक्चुअली होता क्या है कि सुबह का टाइम हमारा अपना होता है लेडीज का.
0: करेक्ट.
1: तो अगर हम सुबह अपने आप को टाइम दे दें थोड़ी देर 40 मिनट्स ही अगर लेडीज अपने आप को टाइम दे दें तो वो पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक हो जाती हैं।
0: ग्रेट।
1: और अगर हम अपना योग से जुड़ जाते हैं तो योग करने से हमारे जो काम करने की स्पीड है वो डबल हो जाती है।
0: अरे वाह, मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है।
1: एक्स्ट्रा एनर्जी तो मिलती है और जो हमारी वर्क करने की स्पीड होती है वो डबल हो जाती है।
0: प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है ना।
1: प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ती है और हम अपने काम डबल एनर्जी से कर पाते हैं।
0: वाओ, ये चीज खैर मुझे पता नहीं था। शायद मैं इतनी एनर्जी से आपसे बात करूं बिना योगा किए। सोचो मैं कल से करके आऊंगा तो कितनी डबल हो जाएगी। आई डोंट नो, वो फिर मैं रुचि मैम को उसका क्रेडिट दूंगा डेफिनेटली।
1: ये सिर्फ कहने और सुनने के लिए नहीं, जब तक हम इसको अप्लाई
0: नहीं करेंगे
1: तब तक ऐसा नहीं हो सकता।
0: राइट राइट, मतलब उसको एग्जीक्यूट भी करना है।
1: एक्सरसाइजेस और ये सब हम हर चीज यूट्यूब और हर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं।
0: करेक्ट।
1: लेकिन जब तक हम योग को अपना कर उसको एक बार करके नहीं देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तब तक हम उसको मतलब बता नहीं सकते। आपको उसका जो इफेक्ट है वो मैं समझा नहीं सकती
0: मैम,
1: क्योंकि इतना पावरफुल है। और जब तक हम इसको अपनी बॉडी में फील नहीं करेंगे तब तक इसका आप इफेक्ट नहीं समझ सकते।
0: क्या बात है। वैसे भी योगा डे आने वाला है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और मुझे लगता है कि अब योगा ना एक ऐसी चीज हो गया है जिसके बिना ना हम अधूरे हो गए हैं। अगर हमने उसको अपनी लाइफ में नहीं अपनाया तो लगेगा हम बहुत पीछे हैं। मुझे ऐसा लगता है
1: हमें अपनी दिनचर्या में
0: जैसे
1: हम अपने डेली
0: रूटीन में अपना खान पान और सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं
1: तो हमें अपनी दिनचर्या में ही इसको शामिल कर लेना चाहिए।
0: गॉट इट। बहुत अच्छा बोला रुचि मैम ने। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट हैं और मैम से हम लगातार बात कर रहे हैं, आपकी फिटनेस पे बात कर रहे हैं, आपकी हेल्थ पे बात कर रहे हैं। मैम आपने सुबह का रूटीन एक बेसिक इंसान के लिए तो बताया, अब अगर मैं बात करूं अपनी वुमेन्स की, अपनी उन घर की महिलाओं की जो सुबह कामकाज में लग जाती हैं उठते ही अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाती हैं और पूरा दिन बहुत बिजी रहती हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगी? अगर वो उठ रही हैं तो कैसे दिन की शुरुआत एक हेल्दी करें?
1: अब जैसे उनका स्कूल बच्चों को भेजने का शेड्यूल होता है
0: जी,
1: तो वो सुबह के टाइम तो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड्स को भेजने की ऑफिस भेजने की ड्यूटी हो जाती है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो 15 मिनट्स प्राणायाम करें सुबह मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर पीकर, तो उनके लिए सफिशियंट रहेगा। उसके बाद वो 40 मिनट्स का अपना वर्कआउट जरूर करें। जैसे फैमिली से फ्री हो गए थोड़ा सा और अपना ऑफिस हस्बैंड चले गए तो आपका 10 बजे के बाद आपका टाइम फ्री हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आपको 40 मिनट जरूर निकालने ही चाहिए अपनी एक्सरसाइज के लिए।
0: क्या बात है। तो लेडीज अब जो है आपको गाने सुनने के साथ साथ खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आपको रुचि मैम को फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, क्योंकि हर चीज। हाँ, ये चीज मुझे इसलिए भी याद आ गई क्योंकि ना हमारी एक हैबिट बन गई रुचि मैम कि हम हर चीज को इंटरनेट पे सर्च करते हैं। हमें लगता है यूट्यूब पे इसका कंटेंट होगा, गूगल पे हमें ये मिल जाएगा, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं मिल तो जाता है बट जो सही डायरेक्शन है सही फॉर्मेट है वो नहीं मिल पाता है।
1: सही
0: एब्सोल्युटली, जब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, हम तो कुछ भी करेंगे और उसके नेगेटिव असर भी होते हैं शायद।
1: सही बात है। अगर आप अंडर गाइडेंस कोई एक्सरसाइज करोगे तो भाई आपको एक देखने वाला सुपरवाइज करने वाला है तो आप अच्छे से कर पाओगे।
0: राइट।
1: इन केस आपने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली देखकर तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है।
0: 100% बिल्कुल। तो इसीलिए
1: आप देखिए किसी की बैकएक है और उसने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली तो उसकी बैकएक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
0: अच्छा मैम, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। योगा के बारे में हम ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं और ये टॉपिक ऐसा है जिसपे हम शायद जितनी बातें करें वो कम होंगी। करेक्ट। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, योगा जब हम करते हैं तो इससे कौन कौन सी चीजें जो हमें लगता है कि रिलीव हो सकता है, उसमें हमें आराम मिल सकता है, कुछ चीजें हमारी छूमंतर भी हो सकती हैं?
1: देखिए, जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस हो या हमें बॉडी के बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी लेडीज की क्या आदत होती है, जरा सा हमें बैक पेन हुआ या शोल्डर पेन हुआ या नेक पेन हुआ तो फटाफट पेन किलर लिया
0: ले लिया और बस
1: हमारा हो गया। नेक्स्ट डे उनको वही प्रॉब्लम दोबारा
0: रिपीट होने लगती है। बिल्कुल।
1: अब मेरे यहाँ जितने भी योगा स्टूडियो में लोग आते हैं कोई भी अब एंटीबायोटिक नहीं लेता, सब लोग पेन फ्री हो गए हैं। मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ मेरा जोर रहता है और मैं सभी को इस चीज के लिए मोटिवेट भी करती हूँ, क्योंकि अब किसी को सियाटिका पेन और बैक पेन वगैरह सब सबके रिमूव हो गए हैं।
0: That's very nice. अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है और कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेडिसिन ले लेके परेशान हो रहे हैं और अंदर जाके वो प्रॉब्लम भी कर रही हैं।
1: और फ्रोजन शोल्डर और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका, स्लिप डिस्क, ये प्रॉब्लम्स तो मैंने सभी लोगों की हील कर दी है।
0: वाओ, लवली मैम, बहुत ही बढ़िया। ऐसे लोगों के लिए सल्यूट जाता है, प्लीज मैम।
1: बाकी जैसे हम लोग मैंने थायराइड के भी 2-3 पेशेंट्स को ठीक किया है।
0: वाओ।
1: तो उनका थायराइड बहुत ज्यादा था तो अब उनका जब वो नॉर्मल, मैं उनसे कहती रहती हूँ उन्होंने मेडिसिन नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मेडिसिन स्टार्ट हुई हुई थी जब वो मेरे पास आए थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो मैंने उन्हें मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं बोला था, साथ में उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, मैंने उनको डाइट गाइडेंस दी, मैं सबको पर्सनलाइज्ड डाइट गाइडेंस देती हूँ. तो हाँ, तो डाइट गाइडेंस दी, फिर उसके बाद मैंने उनको योगा कराया, तो उससे उनका हील हो गया. काफी चीजें हम हीलिंग भी साथ में कराते हैं, काफी चीजें, खाली एक योगा ही नहीं, काफी चीजें कराते हैं, तो उससे वो लोग हील हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं.
0: भाई मैं तो मैम की बातों में खो गया हूँ भाई, मुझे लग रहा है मुझे कोई जगाओ, मेरे को उठाओ. मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी प्यार से एक्सप्लेन कर रही है ना, आपको सुनने में जितना मजा आ रहा है, मेरे को देखने में और उनकी बातें सुनने में उतना ही मजा आ रहा है. एक तो नाम आनंद, ऊपर से बातें आनंदित वाली हो रही है, और जब बात हेल्थ की होती है तो डबल आनंद आता है, क्योंकि हमें, हम कुछ भी करें बट अपनी हेल्थ के लिए ना हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले. अच्छा मैम, टाइम से मुझे याद आया एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना रैंडम आते हैं, सॉरी वो ऑन द स्पॉट चलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर. तो मैं पूछ रहा था, क्या योगा करने का सिर्फ मॉर्निंग ही है या फिर हम शाम को भी कर सकते?
1: नहीं, हम इवनिंग में भी कर सकते हैं.
0: ओके.
1: हाँ, उसके पहले सिर्फ हमें 2.5 आवर का थोड़ा सा बीच में फूड अवॉइड करके 2.5 आवर का ब्रेक लेना होगा.
0: ब्रेक लेना होगा, उसके बाद हम
1: कंटिन्यू, उसके बाद हम कर सकते हैं.
0: ऑल राइट, मतलब फिर कोई इशू नहीं है.
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: परफेक्ट.
1: इवनिंग बैचेस भी चलते हैं, तो सब लोग 2.5 आवर पहले ही लंच कर लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं.
0: That's very nice. अब चलिए,
1: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सेशन.
0: अब चलिए मैम की ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो कैसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है मुरादाबाद की लेडीज को, और क्या कुछ स्पेशल होता है उनके इस सेशन के अंदर, कितने क्लासेस वो देते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो जो प्रोवाइड कराती हैं. अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाह रही है, चाह सिर्फ मेल का है या फीमेल का, ये भी हम जानेंगे. डोंट वरी, आप बने रहो और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6. योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मेरे साथ हैं, मेरा नाम आनंद है, और आपको आनंदित करने के लिए, आपकी हेल्थ पर और ढेर सारी बातचीत करने के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ एक फैंटास्टिक मैम को, जिनका नाम रुचि मदान है. सो ग्लैड यार, क्योंकि उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनका मैं जब भी स्टेटस देखता हूँ मुझे भी एक मोटिवेशन आता है. बट हाँ, वो बात अलग है, मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूँ, बट अब नहीं भूलूंगा, क्योंकि अब मैम मेरे को मंत्रा सिखा के जाने वाले हैं यहाँ पे लाइव. अच्छा मैम, ओम चेंडिंग की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वंस अगेन वेलकम बैक. और ओम चेंडिंग की अगर बात करें तो ओम चेंडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं?
1: देखिए, ओम चैंटिंग में रोज अपने स्टूडियो जब हमारे साथ योग कराते
0: हैं, हाँ जी,
1: तो हर बैच में ओम चैंटिंग अलग से होता है.
0: ओके.
1: क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल ओमकार मंत्र है, जो मतलब हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से ही रिलेटेड है.
0: ओके.
1: तो ओम का जाप करने से हमारी 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती
0: है. एक बार रिपीट कर देंगे, मैं भूल जाऊंगा, दोबारा बता दो आप.
1: 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं ओम का उच्चारण.
0: अरे वाह, कितनी देर तक कर सकते हैं ओम चैंटिंग में?
1: ओम चैंटिंग आप जैसे हम लोग तो 3 टाइम्स कराते हैं, 3, 5, 7 इस तरीके से,
0: मतलब और अलग अलग कैटेगरी
1: और फिगर्स में ओम चैंटिंग कर सकते हैं.
0: ऑल राइट, ठीक है. तो
1: इसको करने का भी तरीका होता है जो हम मतलब मेथड से कराते हैं. ओम चैंटिंग से हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो जाती है.
0: ठीक है.
1: तो अभी क्या कहते हैं, हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कराते हैं. Okay. और इससे ओम चैंटिंग से रिलेटेड हम लोग अपना प्रज्ञा योग भी कराते हैं. तो प्रज्ञा योग इतना पावरफुल है जो कि ओम से ही कनेक्टेड है.
0: ऑलराइट,
1: तो प्रज्ञा योग में हम क्या करते हैं, उससे हमारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल है वो, और हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है उससे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन मेंटल पावर इम्प्रूव होती है प्रज्ञा योग से, जो कि हमारे एटमोसफेयर में ऊपर जो हमारा

0: वायुमंडल है वहाँ पे हमेशा सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हमेशा ओम की वाइब्रेशंस होती रहती है। तो उसकी वाइब्रेशंस को प्रज्ञा योग में हम अपने भीतर लेते हैं।
1: ओके
0: तो उसके करने के बाद जब भी वो सब लोग करते हैं उसके बाद सब लोग एक तो उससे बॉडी की टोनिंग तो होती ही है जो प्रज्ञा योग हम करते हैं और उसके साथ हमारी मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और सब लोग इतने हैप्पी हो जाते हैं उसको करने के बाद बहुत सब लोग रिलैक्स और काम फील करते हैं।
1: दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है रुचि मैम से एक बार ओम चेंडिंग करा लें क्या? क्या हम अभी लाइव चेंडिंग कर सकते हैं ओम की? पॉसिबिलिटी है?
0: कर सकते।
1: ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद आंखें खोल लूंगा। वेल, आंखें मीच के ओम चेंडिंग करते हैं, आंखें खोल के पहले आप ये बताओ।
0: देखिए, जब हम प्रेयर करते हैं स्टार्टिंग में,
1: ठीक है ठीक है,
0: हमारा सेशन प्रेयर से स्टार्ट होता है।
1: हाँ जी।
0: तो हम जब प्रेयर करते हैं तो हम आईज क्लोज ही रखते हैं।
1: ठीक है।
0: आईज नहीं खोल।
1: कुछ लोग कहते हैं जब हम आईज क्लोज करते हैं या जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो बड़ी नेगेटिविटी मन में आने लगती है, हमारा मन बहुत भटकता है।
0: एक्चुअली जिनको थोड़ा सा मेंटली जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, जिनको थोड़ा डिप्रेशन का इश्यू होता है, तो वो लोग आईज क्लोज करके नहीं कर पाते। तो उनको मैं अलाउ कर देती हूँ कि आप आईज खोल के ही कर लो, क्योंकि उनको हेडेक या ये सब प्रॉब्लम
1: सारे लगते हैं। राइट राइट।
0: लेकिन एक मेरे पास डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं तो उनकी वो अब काफी इम्प्रूव्ड है और उनको अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती।
1: अरे वाह, ब्यूटीफुल। तो हम भी ट्राई करके देखें मैम एक छोटा सा। कितनी देर तक करना होगा?
0: आज तो हम शॉर्ट करेंगे ना।
1: ठीक है, तो ठीक है, रुचि मैम मुझे सिखाने वाली है ओम चेंडिंग। आई एक्सक्लूसिवली लाइव रेडियो पे पहली बार आप ओम चेंडिंग सुनोगे। अनबिलीवेबल यार, मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है। कैसे करनी है, कैसे शुरू करना है, आप बताइए। दोस्तों आप भी हमारे साथ ट्राई करिएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज ट्राई करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, एंड आपको बहुत मजा आएगा। तो मैम शुरू करें? ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा? आंखें बंद कर दीजिए।
0: सबसे पहले हम लोग, आज तो हम लोग चेयर पर बैठे हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं।
1: अच्छा, अलाउ है ये भी?
0: हाँ जी।
1: ओके ठीक है,
0: चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो अपने पृथ्वी तत्व से जुड़े और जमीन पर बैठ कर ही करें।
1: ठीक है ठीक है।
0: तो सबसे पहले हम अपनी कमर, गर्दन और कंधे सीधे करके बैठ जाते हैं। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं।
1: ओके।
0: अपनी आईज को क्लोज करते हैं।
1: ठीक है।
0: और सबसे पहले हम 5 ब्रेथ्स लेते हैं।
1: ओके।
0: अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जान्वित करने के लिए
1: 5
0: ब्रेथ्स लेते हैं। लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
1: ओके।
0: लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल। लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल। अपने लंग्स में, अपने डायफ्राम में अच्छे से प्राण ऊर्जा को भरेंगे और एक्सहेलेशन कर देंगे। हर इनहेलेशन के साथ एक पॉजिटिविटी हमारे भीतर आएगी और हर एक्सहेलेशन के साथ सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी। 5 टाइम्स लॉन्ग एंड डीप इनहेल करने के बाद हम अपने ध्यान को आईज क्लोज ही रखेंगे। हम अपने ध्यान को अपने आईब्रोज के सर में आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे, जहां पर हम अपना तिलक लगाते हैं वहां पे अपने ध्यान को लेकर 5 टाइम्स अपने मन को शांत करते हुए आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। श्वास लें, छोड़ें। श्वास लें, छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। श्वास लें, छोड़ें। अपने मन को शांत करेंगे, माथे को रिलैक्स करेंगे, खुद को योग के लिए तैयार करेंगे। अपनी माइंड, अपनी बॉडी और सोल को योग के लिए प्रिपेयर करेंगे। माथे पर ध्यान देते हुए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए ओमकार का जाप करेंगे। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओमकार शब्द, ओम जो शब्द है वो हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। तो इसको उच्चारण करने का सही तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। आ का उच्चारण थोड़ा कम देर के लिए, ओ का उच्चारण उससे थोड़ा ज्यादा और माँ का उच्चारण थोड़ा डीप करते हैं। सबसे ज्यादा लॉन्ग हम माँ का उच्चारण करते हैं, जिससे हमारे गर्दन से लेके पूरे ऊपर सहस्त्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर एक चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, वहां तक वाइब्रेशंस आती हैं। तो स्टार्ट करेंगे, पहले लॉन्ग एंड डीप इनहेल।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
1: देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
0: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी ही हो जाता है?
1: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
0: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
1: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम, ये बच्चे की आँखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इस सब को मसलकर बच्चे को दिया जा सकता है।
0: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
0: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितने खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
0: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
1: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
1: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
0: भाभी एक बात मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुँह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
1: नहीं आरजे खुशी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिर सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
0: हाँ ये तो सही बात है, बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
1: ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी में और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
0: भाभी एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं, सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
1: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती हैं। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
0: और भाभी क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
1: हाँ बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
0: भाभी जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
1: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
0: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
1: देखिए पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
0: सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है?
1: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को

0: सदाघर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उसे समझाते हैं कि हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसे बातें बार बार याद दिलाते हैं।
1: श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताज़ा आहार देना शुरू कर देना है। यह क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताज़ा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसलकर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पिसे दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
0: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सोच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए, इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार के हर सदस्य, माँ पिता, दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग दें, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
1: दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाएंगे।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा, सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत से लाभ कई,
1: तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ। धन्यवाद। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
9: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हां श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद
2: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तू बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
3: नाम तो बहुत अच्छा और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
2: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें अभी, क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
3: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
2: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बार होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
3: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
2: एब्सोल्युटली, स्पेशली डिजिटल टाइम में ना।
3: बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटल की तरफ पड़ा है।
2: करेक्ट। तो श्रोताओं आप कहीं मत जाइए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स, व्हाट्सएप से ये संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालो, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बिठाई करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए हैं। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बस कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है मेरा और प्राची का आज इस प्रोग्राम के जरिए, कि अगर हम अपनी सोच को बदले, हमें क्यों सोचना है कि हमें एक का डबल चाहिए भाई। अगर हमें इस तरह की कोई पॉलिसी देखनी है तो हम फिजिकली अपने पैसे को सेफ और अच्छी जगह लगाएंगे ना, हम अपने आसपास में जाएंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारे बैंक हैं हमारे नियर बाय, हम वहां जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तमाम ऑप्शन हैं। ऑनलाइन ही क्यों करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मत करिए श्रोताओं, ऑनलाइन करिए बहुत जरूरी है, लेकिन सोच समझ के सही चीजों का इस्तेमाल करिए ना।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद।
0: तो इसी पर देखिए, हमारे पास एक और खास बातचीत है जो स्पेशली हम अभी आपको सुनवा रहे हैं, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, तो मैं और प्राची लौटेंगे बस इसी देर में, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम आपको मिलते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के, इतना मुनाफा कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है। अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है। ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
0: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से भी कई हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
0: एब्सोल्युटली। तो श्रोताओं, हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आनंद और प्राची के साथ एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। वो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत, प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर जांच कर लें कि वो जो कंपनी है वो सीबी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल। प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। मतलब भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है। 1930 पे आप कॉल करें, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी,
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वह लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कुशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है, विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस तीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाइयों काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा। पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।

0: और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
5: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
6: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
6: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है, सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर और

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है, भाई पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है और जितनी महिलाएं उतनी पुरुष हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ,
0: हाँ
1: महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ, फाइनली तुम आज हो गए।
0: गाइस मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल हुआ हूं, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है, क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं होंगी जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मियां घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, स्टोरी लगा लगा के फेमस
1: है। के काम से लेकर ऑफिस तक हर
0: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मियां। तो अब हमारी मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं बची है और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इन्वाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
2: हाउ आर यू आरजे आनंद?
0: मैं बहुत ही
2: कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ।
0: हाँ हाँ हाँ, मुझे मैं महिला मंच में बहुत कमाता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ खाने का गाइस, अभी जाके खाना खाऊंगा। और जो हमारी गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? हाँ, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है।
3: मैं शैली सिंह मुरादाबाद से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके। और
0: अरे वाह क्या बात है, और बिल्कुल होनी चाहिए मुझे लगता है शैली जी, एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है, क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद है वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो, तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं।
3: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ आरएसएम पब्लिक स्कूल छजलैट, मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगा जिम ये सारी चीजें।
0: तो कहना कि योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही हैं?
3: रुचि मदान, मैं उनके स्टूडेंट हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी?
3: हाँ प्रिंसिपल आरएसएम पब्लिक स्कूल छजलैट।
0: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है। मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
3: मैं बस कहते ना महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से आप नौ दुर्गों में जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए करते हैं। और शक्ति क्या है? हम ही धन भी हम है, विद्या भी हम है,
0: सही बात
3: सब
0: है,
3: सब कुछ हम
0: मुझे
3: है।
0: लगता है अगर देखा जाए ना तो हमारे आसपास की चीजें है ना वो सब भगवान देवियों से जुड़ी है, धन की देवी लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, काली देवी सर्वनाश करने
3: जब
0: वाली
3: हम ही
0: है,
4: की देवी अन्नपूर्णा है।
0: हाँ तो मतलब हर माँ गंगा जो जिसमें हम नहाते धोते हैं वो गंगा मैया है, वो भी गंगा माँ है, तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
3: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी
4: ही।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इनवाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहना चाहिए। वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाएं बट वो रील भी बना लेती है, वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है, आप कैसे करती हो ये?
3: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं।
0: वो तो जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना,
3: ये तो शक्ति है कि आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बड़ी बात में चलाओ।
0: क्या बात है।

0: नहीं, अच्छा हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में। जैसे शैली जी आप बहुत सारा काम करती हैं और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बस सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं। क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक कदम का आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे आया ये और जो लोग आपको सुन रहे हैं ताकि वो उनको भी ये चीज आए कि वो भी शुरुआत करें।
1: देखिए आजकल की अगर हम बात करते हैं कि महिला इतनी कमजोर है तो आज की महिला तो नहीं।
0: करेक्ट,
1: ये 90s के दौर की जब हमारी मम्मियाँ थी तब की बात है ये कि उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था।
0: करेक्ट,
1: अपने लिए एक साड़ी लाने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं इस फंक्शन में यही पुरानी वाली पहन लेती हूँ। आजकल की लेडीज सशक्त हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं अपनी प्रायोरिटीज कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। वो सेल्फ डिपेंड भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं। उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है। लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था। वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी, उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए।
0: करेक्ट, बिल्कुल। तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है। क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही कह रही हैं आप। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे। मतलब ऐसा भी होता है,
2: अभी भी बहुत ऐसी फैमिली
1: है, अभी भी वो फैमिलीज ऐसी है लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार है, इन्हें ही आपको आगे
0: मेंटेन करना है।
1: लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आपको ग्रो अप कर सकते हो,
0: करेक्ट,
1: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं।
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी आप जो कर रही है ना ये एक तो मोटिवेशन है ही और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग बना रहा है ना।
1: फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहा है।
0: आने वाला टाइम देखिए आप कितना महंगा हो रहा है, आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर। आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी।
1: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के कि आप कुछ अपने लिए। पहले तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी, आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी। अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है तो अस्त व्यस्त हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की। लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं, उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है।
0: तो मतलब दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है।
1: हाँ जी,
0: करेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने। और कुमकुम तुम क्या कहना चाहते हो?
3: मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसे कि मैम ने भी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है।
0: करेक्ट,
3: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को, मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए। कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी, और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा।

0: दोस्तों बिल्कुल, देखिए एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि लेडीज के साथ साथ ना हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक हम चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे उनको पुश नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें अच्छे लेवल पे जा सकती है ना। जैसे आज ही मैं राजमा चावल बनाना सीख के आया हूँ भाई, कल मेरी शादी होगी तो मेरी बीबी को कुछ तो रिलैक्स मिलेगा भाई। अगर वो अपने घर चली जाएगी तो मुझे होटल का वेट नहीं करना पड़ेगा। शैली जी,
1: तो ये तो एक बड़ी एक सबसे बड़ा मिथ लगता है मुझे कि सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाती
2: हैं। हाँ, वही
1: आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, होटल्स में देख लो,
0: मेल खाना बना
1: शेफ है। शेफ कौन है? आप फीमेल शेफ बहुत ही कम
2: पुरुष
1: मिलेंगे नहीं।
0: तो फिर ये समाज में क्यों है कि
1: आप घर में हलवाई बुलाओगे कोई लेडीज नहीं आएगी, पुरुष ही आ रहा है।
0: हाँ।
1: वो ये केवल घर का ही चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है।
3: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है, कुकिंग। यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही।
0: करेक्ट,
1: बिल्कुल सही बात है।
2: तो वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने,
0: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें।
1: नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुकिंग करें।
0: हाँ।
1: लेकिन अगर आपकी वाइफ बीमार है, आपकी मदर बीमार है, तो आपको इतना आना चाहिए कि उस 3-4 दिनों में उनका ध्यान रख पाए, उन्हें जैसे वो पहले थी वैसे ही उन्हें फिर से खड़ा कर पाए, उनका सपोर्ट कर पाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सुबह खाना बनाए बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें, या देखिए जेंट्स के बस की बात नहीं है। जितना एक लेडीज संभाल लेती है ना घर बाहर दोनों, सोसाइटी वगैरह सब, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: क्या बात है गाइस, आज महिला मंच में मैं बिल्कुल सीख के जाने वाला हूँ। बहुत सारी तैयारियां मेरे साथ हो रही है, अप्पे चप्पे खप्पे सब सीखूंगा आज मैं, आप टेंशन ना लो। रीना तू कुछ कह रही थी, टेल मी।
2: मैं ये कह रही थी, तुम्हारी बातों पे बोल रही थी, तुमने बोला कि मैंने आज ही राजमा चावल बनाने के लिए सीखा है। तो जब जैसे मैम ने बता ही दिया कि घर में महिलाएं बीमार होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर में एक दूसरे का साथ दोगे तभी परिवार आगे बढ़ता है और ग्रो भी तभी करता है। और क्योंकि अब देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक अगर कोई पुरुष कमा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं हो पाएगा कि बच्चे भी है, फैमिली को भी लेकर चल रहा है। इसीलिए दोनों को ग्रो करना चाहिए, सपोर्ट करिए आप महिलाओं को।
1: हो भी पाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाएं दबाएंगे,
2: लो वही ना, तो दबाना उस चीज को आगे करिए।
1: और ये चीज आप सोचो, पहले के टाइम में चल भी जाता था कि महिलाओं हैं, बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, मगर अब ज्वाइंट फैमिलीज है कहाँ? हस्बैंड वाइफ दो बच्चे,
0: छोटा परिवार सुखी परिवार,
2: लेकिन खर्चा आज
1: वो इतना छोटा हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको घर के काम ही नहीं आते। पहले केवल बेटी का ही फर्ज बनता था कि पापा आए हैं आपको पानी देना है। आजकल क्या है कि बेटों को भी भाई पापा आए आप पानी दीजिए,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको आदत में डालिए।
0: करेक्ट, छोटे छोटे काम में उनका जो है एनरोलमेंट कराइए,
1: क्योंकि बेचारे उन बॉयज को बाहर जाके बहुत परेशानी होती है, उनकी तकलीफ नहीं। आप सोचो जो जिस बच्चे ने एवरी टाइम घर में बेड पे खाना खाया है, बेड पे चाय पी है, वो हॉस्टल जा रहा है रहने के लिए, उसको अपने खुद या जॉब पे बाहर है, खुद बना के कुछ खाना है, तो वो कितना परेशानी होती है उसको, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं होती। लड़कियों को आपने कभी देखा है कि परेशानी हो रही है?
2: नहीं, क्योंकि वो घर पे भी उसको काम करवाया जाता है,
1: उनके लिए 5 मिनट मैगी नहीं, उनके लिए 5 मिनट में खाना भी बन जाता है।
0: नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत ज्यादा अंकल आंटी के साथ साथ सब एक्टिव हो रहे हैं,
1: सब एक्टिव हो रहे हैं। आजकल के बॉयज बहुत नहीं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, वो कोऑपरेटिव आ रही है। लेकिन उनको वो कोऑपरेट करते हैं ना तो उनको फिर लोग ये कहते हैं, अरे यार तुम कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा नहीं करने का है। तो वो जो नहीं वाला शब्द है, नहीं अच्छी, उनको ये बोलो कि नहीं अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हो।

0: ये बात तो आपने सही बोली, और मुझे भी लगता है कि गाइज अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, मतलब कहने का ये कि दोनों लोग साथ में चल रहे हैं और दोनों ही लोग बराबरी में काम करते हैं। कोई प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं जहाँ लड़के लड़कियां काम ना कर रहे हो, हर जगह कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये भी था आपको बुलाने का शैली, जिस प्रोग्राम में महिलाओं को एक मोटिवेशन आप जो आपसे मिलेगी ना उसकी बात अलग होगी। तो हमने कर ली, अभी जो हमने बात करी है, खैर ये महिलाओं की और पुरुषों की बात कर ली खाने पीने की, मर्दों को भी आना चाहिए और जरूरी भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता भाई कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो उन्हें आप क्या कह सकती हैं? आजकल तो घर से भी बहुत सारे काम कर सकती हैं
1: उन्हें महिलाएं। तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें बस ये सोचना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: करेक्ट।
1: उन्हें सिंगिंग अच्छी लगती है, उन्हें डांसिंग अच्छी, उनका शौक क्या है, उस शौक को प्रोफेशन बनाया।
0: अच्छा, आपकी बात को बीच में रोक के बोलूंगा, रिसेंटली ना एक लेडीज हमारी मुलाकात हुई, हमारे स्टूडियो में ही आई थी वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको बहुत अच्छा गाना आता है, उन्हें गाने का बहुत शौक है और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज उनकी, गवर्नमेंट टीचर है, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचर है, उनका बेटा मुंबई में बहुत ही बड़े स्टूडियो में प्रोड्यूसर है, मुंबई बॉलीवुड में काम करता है, मुरादाबाद की ही है वो। तो उन्होंने बताया कि उनके उनको गाने का बड़ा शौक है, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उनका बेटा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तुम यही घर में ही रहो, तुम्हारी आवाज यहीं तक अच्छी है, तुम्हें ऐसा मिथ है कि तुम अच्छा गाती हो, तुम घर पे खाना वाना बनाओ, तुम्हारे लिए यही सफिशिएंट है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन वो कहती है कि मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना, तो बेटा भी बोलता है नहीं मम्मी मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम्हारी आवाज घर की दीवारों में ठीक है, बाहर बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको घर में डिमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये नहीं कि गलत चीज है, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन जितना हमने आंटी मैम को देखा, उनको सुना, तो मुझे लगा नहीं शी इज वेरी ब्रिलियंट, वो अच्छा कर सकती है। बट अगर उनको एक मौका दिया जाए, उनको एक सपोर्ट किया जाए उनके पेरेंट्स से, उनके हस्बैंड से या उनके बेटे से, तो शायद वो और अच्छा कर ले। तो बात वही आ गई है कि लेडीज करना तो चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर है कि तुम अच्छा, उनको डिमोटिवेट कर दिया जा रहा है।
1: तो उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार अपना सॉन्ग इंस्टा पे डालिए, जो भी आपको एक बहुत अच्छा आता है, व्यूअर्स आपके कितने आते हैं, कौन आपको लाइक करता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या है आपकी।
0: लेकिन
2: अपने प्लेटफॉर्म को खुद जनरेट करें,
0: जनरेट तो करना है, लेकिन अब जब अलाउड ही नहीं है घर में, जब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा गाती नहीं हो, तो फिर
1: ठीक है अलाउड नहीं है, तो जो घर के मेंबर्स है ना, चार दीवारी में ही गाना है, तो उन जो हमारे चार लोग हैं, हमारे घर के रिलेटिव, हमारे भाई हो गए, हमारी बहनें हो गई, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, व्हाट्सएप पे डालिए सिंगिंग करके, हाइड कर दीजिए सबको, फिर वो उनके व्यूज क्या होते हैं आपके गाने के प्रति पता चल जाएगा।
0: ये अच्छा आपने,
1: क्योंकि आज को आज क्या,
0: सही
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लेडीज प्रोग्राम है ना, इसके इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि हम लोग लोगों की सोच को बदलें, और सिर्फ महिलाओं की क्यों, जेंट्स की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है।
1: नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, आप घर में कीर्तन रखिए, आप अगर अच्छा गाते हैं बजाते हैं, आपको चार लोग इन्वाइट करेंगे, यार वो उनकी वाइफ बहुत अच्छा गाती है, और देखिए लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जिनमें कुछ बात है। चार लोग जो पीछे बैठने वाले होते हैं उन्हें लोग कम इनवाइट करते हैं, आपको बजाना आ रहा है, आपको गाना आ रहा है, आपको डांस आ रहा है, तो आपको जब आपका घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो आप सोचेंगे चलो उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाएंगे,
2: उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले
1: होगा।
0: सही कहा आपने। तो श्रोताओं, फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जो है मेरा तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों की बात आप सुनते रहिए, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को जानने को मिले। थोड़ा सा मैं बस जाने से पहले शैली मैम से और पूछना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच में आई है, तो इतना अच्छा काम करती है और इतनी फिट भी है वो, और इतनी अच्छी फ्लेक्सीबिलिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है, तो इसका राज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है ना, परिवार के भी पूरा समाज स्वस्थ है। अगर हमारी घर की नारियां कमजोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, थकेंगी, दिक्कतें होंगी, तो वो नहीं चला पाएंगे, और पुरुष तो इतना नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं को आप क्या टिप्स देंगी, क्या एडवाइस देंगी, दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे वो खुद की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें?
1: मैं महिलाओं के लिए बस यही बोलना चाहेंगी कि अगर आप 45 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2 घंटे निकालिए, 45 मिनट अगर आप पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स में वो आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी मेंटल हेल्थ तक वो सही करेगी, और जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो उस 45 मिनट में आप प्राणायाम है वो करिए, आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, योगा नहीं जा पा रहे हो, सारी चीजें अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, वो आप उनको सर्च करके 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भारती कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इतनी सारी एक्सरसाइज है वो 45 मिनट। और सबसे पहला जो दिन की शुरुआत करो, एक फ्रूट से करो, चाहे आप ये नहीं है कि रोज आप एप्पल ही खाओ, बनाना खा लो, किसी दिन गुआवा खा लो, मैंगो खा लो, सीजनली फ्रूट्स पे अपने जो भी चीजें अपने उनको हेल्थ इश्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैल्शियम, विटामिन D3 वुमेन्स का, विटामिन B12 बहुत कम होता है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है क्योंकि वो खाने को ना बिल्कुल साइड कर देती है। तो अपने खाने का सबसे पहले ध्यान रखें, टाइम से नाश्ता, टाइम से डिनर, टाइम से लंच, ये चीजें उनको जरूर करना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी पे उन्हें 45 मिनट्स अपने हेल्थ को देने हैं। और दूसरी बात, अगर वो टाइम से खाना वाना खाएंगे तो वो वैसे ही स्वस्थ रहेंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव चीजें सुने, निगेटिविटी अपने पास से हटाने की कोशिश करें।
0: बहुत ही अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और गाइस अब हम लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत। रीना तुम्हारा क्या टेक रहेगा, तुम क्या कहना चाहोगी जाते जाते?
3: मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से कि अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ है तो पूरा परिवार, पूरा समाज स्वस्थ है। और जब महिलाएं आगे बढ़ती है, महिलाएं पढ़ती है, क्योंकि आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि अपने लड़कियों को ये नहीं चाहता हो कि तुम ना पढ़ो, क्योंकि जब महिलाएं पढ़ती है ना तो वो एक पीढ़ी को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो वो पढ़ शिक्षित है, स्वस्थ है, तो समाज भी शिक्षित है और स्वस्थ है।
0: क्या बात है कुमकुम, तुम क्या कहोगी जाते जाते?
2: मैं भी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी महिलाएं, आपकी वाइफ, आपकी बेटियां आपका साथ दें, तो आप भी उनका उतना ही साथ दें। अगर वो थकी हारी आती हैं तो आप उनको एक गिलास पानी दें, उनसे कहें कि हाँ 2 मिनट रेस्ट करो, जो काम करना है आप आराम से करो।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस फिर मिलेंगी आपको रीना और खुशी, मैं लेता हूँ इस महिला मंडली से इजाजत, फिर आपको जल्दी मिलूंगा, आप ख्याल रखिए अपना। और जाते जाते थोड़ा सा फन करते हैं, एक छोटी सी शायरी है मेरे साथ आपको बोलनी है, आर यू रेडी गाइस? ठीक है चलो तो शुरू करें। तो गाइस महिला मंडली में एक थोड़ी सी फनी शायरी, माफी चाहता हूँ आप सभी को, बोला है दिल जवा है तो बेबसी कैसी, बोलो गाइस,
3: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
0: आप भी कोई बोला है okay. फिर से बोला है, दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
4: दिल जवा है तो बेबसी कैसी,
0: सफेद बालों की ऐसी की तैसी,
2: सफेद बालों की
1: सफेद बालों,
3: फिलहाल सफेद बाल भी इनके ही है इसीलिए बोला है।
1: सबसे ज्यादा काउंट करे आएंगे तो
0: मैं नमक के पानी से नहा लिया था किसी एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था एक ग्लास एक चुटकी नमक डाल के नहाना है आपका ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो बालों के कार्य पूरे सिद्ध हो गए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और टिप्स आप उनसे ले लें, हाँ। आपके बाली चले जाएं।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा,
1: रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
0: ये तो इन्होंने मेरी नानी की कहावत जोड़ दी। फिलहाल तो मैं लेता हूँ जाने की अनुमति, और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
5: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
6: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
7: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
6: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
8: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
9: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
10: जन जन तक पहुंचा संदेश।
11: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, PM किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, अभी वक्त हुआ है 3:13 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। एंड अभी आपने बहुत ही अमेजिंग सा ये ट्रैक सुना। दोस्तों, कुछ गाने ना बहुत प्यारे होते हैं जो दिल को सुकून भी देते हैं और अपनों की यादों में हमें वापस ले जाते हैं, है ना दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का आरजी खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है। एंड आपको पता है, शो का नाम है बिंदास बोल जहां।

पर आप बिंदास होकर बातें करते हैं आरजी खुशी के साथ। और संडे का बहुत ही स्पेशल दिन है आज। एंड आज आपको पता है दोस्तों कि बहुत सारे डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे भी है एंड आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है और आज फादर्स डे भी है। जी हाँ दोस्तों, संगीत यानी वो जादू जो बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात कह देता है। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे संगीत से प्यार ना हो। किसी के लिए गाने यादें हैं, किसी के लिए सुकून और किसी के लिए हिम्मत, तो किसी के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास। कभी खुशी हो तो गाना साथ देता है, कभी उदास हो तो वही गाना दिल को संभाल भी लेता है। कुछ धुनें हमें बचपन में ले जाती हैं और कुछ किसी अपने की याद दिला देते हैं और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी कहानी बन जाते हैं। दोस्तों आज का दिन संगीत के नाम, उन सुरों के नाम जो हर दिल को जोड़ते हैं। और मैं भी आपसे कुछ मालूम करूंगी, सवाल मेरे भी हैं आपसे, लेकिन अभी तो मैं आई हूँ यहाँ पर और कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक भी मैं आपको सुनवाऊंगी एंड कुछ फन भी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बिंदास फूल शो में बिंदास होकर बातें करेंगे। यहाँ पर आप अपने मैसेज हमें पहुँचा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मैंने आज की दोपहर यहाँ पर आप सभी के लिए सिलेक्ट किया है ताकि आप उसको सुनें और आप इंजॉय करें। दोस्तों बाकी आप भी मुझे अपने मैसेज यहाँ पर पहुँचा दीजिएगा, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ आपके संदेशों का एंड करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। आपको भी अगर म्यूज़िक से प्यार है, आप भी म्यूज़िक लवर हैं, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ट्रैक है जो जिसे आप सुनते हैं तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। हाँ बताओ दोस्तों, कौन सा ऐसा ट्रैक है जिसको सुनकर आपके चेहरे पर प्यारे से ब्यूटीफुल से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, स्माइल आ जाती है, कौन सा है वो ट्रैक बताइएगा ज़रूर मुझे, अपना मैसेज हमें पहुँचाइएगा। नंबर मैं अगेन आपको बताती हूँ 9837968696। और दोपहर का समय है, हमारे बहुत सारे श्रोता तो इस समय आराम कर रहे हैं और कुछ अभी ऑन द वे कार में हैं जो अपनी मंजिल की ओर कहीं जा रहे हैं। एंड कुछ लिसनर्स हमारे जो हैं अभी राइट नाउ क्या कर रहे हैं, आराम से लेट कर रेडियो पर जो प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उन सभी का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक आप सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और शो का नाम है संडे. जी हाँ, शो का नाम बिंदास बोल है. संडे का दिन है और वक्त हुआ है 3:28 राइट नाउ. खुशी आप सभी के साथ है. और ये संडे का दिन बहुत ही प्यारा होता है ना दोस्तों, लेकिन किसी के लिए तो

संडे भारी हो जाता है, इतने सारे काम करके होते हैं, पता ही नहीं चलता कि संडे कैसे गुजर गया है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप काम करके थक गए हैं तो आप परेशान मत होइए, खुशी यहाँ पर देखिए आपको एंटरटेनमेंट का डोज, जिससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आप हैप्पी हो जाएंगे। प्यारे प्यारे से म्यूजिक एंड सॉन्ग्स मैंने आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं आज के दोपहर, जो आपके इस प्यारे से आफ्टरनून को बनाएंगे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल।

0: और दोस्तों आज फादर्स डे है। पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होते बल्कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं और जब बड़े होने पर उनके संस्कार हमें हर मुश्किल रास्ते पर संभाल लेते हैं। दोस्तों हाल ही में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने पापा के साथ बेहद प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है हैप्पी फादर्स डे पापा, और कहा कि उनके पापा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। हर जीत हर हार हर संघर्ष में उनके पिता हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। और सच ही तो है दोस्तों, एक पिता शायद अपने जज्बात कम शब्दों में जताते हैं लेकिन उनका प्यार उनकी मेहनत और उनका साथ पूरी जिंदगी हमारी ढाल बनकर रहता है। दोस्तों आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके पापा जी की एक ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमेशा हिम्मत देती है। उनके नाम एक प्यारा सा मैसेज, आप अगर कुछ करना चाहें उनके लिए स्पेशल तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके पापा जी की एक ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमेशा हिम्मत देती है। उनके नाम के साथ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें तुरंत फटाफट से मैसेज कीजिएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और दोस्तों अभी कुछ कमर्शियल एड ब्रेक के टाइम हो गए हैं, मिलती हूँ मैं अभी आपसे कुछ एड ब्रेक के बाद एंड फिर लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोई बिंदास होकर बिंदास बोल में बिंदास तरीके से बात कर सकते हैं मुझसे, लेकिन उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा। आज कॉल का सेशन नहीं है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, नंबर मैं आपको 9837896896 ये मैंने आपको नंबर बता दिया है। अब आप मुझे मैसेज पहुंचा दीजिएगा, अपना काम हमने कर दिया है, अब आप भी अपना काम कीजिएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, हमें संदेश पहुंचाइए। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी
1: जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेवर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:45। जी हाँ, 3:45 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योग का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हजारों लोगों ने योग किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने योग को स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और वैश्विक एकता का माध्यम बताया है। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और उत्साह को दर्शाया। ये आयोजन योग की वैश्विक लोकप्रियता और उत्साह को दर्शाया ये आयोजन योग की वैश्विक लोकप्रियता और भारत की संस्कृति विरासत का शानदार उदाहरण बना। दोस्तों, और साथियों, योग हमें सिखाता है कि अगर हर दिन कुछ मिनट अपने शरीर और मन को दें तो जीवन की कई परेशानियों का सामना और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइएगा, एंड आज जो नेशनल योगा डे है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप भी सुबह सुबह मेडिटेशन, योग, एक्सरसाइज, वर्कआउट करते हैं? बताइए, आप सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं और क्या आप भी योगा करते हैं? अगर हाँ करते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक मैसेज से पता नहीं कितने श्रोताओं के ऊपर असर पड़े, यानी बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा भी ले सकते हैं, प्रेरित होकर वो भी एवरी मॉर्निंग एक्सरसाइज, अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप भी अपना थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप सुबह सुबह उठते हैं, कैसा महसूस करते हैं और जब आप मेडिटेशन करते हैं तब कैसा फील करते हैं, आप मुझे बताइएगा। अपने व्हाट्सएप मैसेज हमें पहुँचाइए, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और यहाँ पर कुछ और ट्रैक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए। जैसे मैंने आपसे बताया था कि दोस्तों, आज हमने जो सॉन्ग यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। जब आप सुनेंगे ना तो सुनते रह जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आज इतना खूबसूरत सा दिन है। जी हाँ, क्या क्या है आज, बताया तो है आपको मैंने। ओहो, भूल जाते हो आप, ऐसे मत किया करो, कैसे भूल जाते हो आप। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है। तो बताइएगा, अगर आप भी म्यूजिक के शौकीन हैं, आप भी सिंगिंग करते हैं, तो आप पीछे क्यों हैं फिर? हाँ बताइए मुझे, कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद है एंड जो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाता है। जब आप उस ट्रैक को सुनते हैं तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब आप पीछे मत रहिए, इतना मत सोचिए, फटाफट से अपने आंसर हमें पहुंचाइएगा, हमें भी सब्री से इंतज़ार है। और बाकी एक ट्रैक में यहाँ पर सुनवाती हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है जिसी गिल की, एंड ये गाना भी बहुत ही शानदार है, आपने सुना होगा कई बार ही, लेकिन मुझे लगा कि आज फादर्स डे है तो फादर्स डे पर स्पेशल मौके पर ये प्यारा सा ट्रैक तो आज की दोपहर बनता है ना दोस्तों, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे खुशी के लिए, हमारे सपनों के लिए वो अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए सुनिएगा इस शानदार से गाना, बस मैं लौट कर आती हूँ।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बिल्कुल दोस्तों, पल पल दिल के पास आप हमारे रहते हैं, तभी तो हम चले आते हैं ना एवरी डे आप सभी से मुलाकात करने के लिए। हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और शो का नाम है बिंदास बोल, जहां पर बिंदास होकर बातें होती हैं। नो टेंशन, नो हेजिटेशन, ओनली फॉर दिल का कनेक्शन। और हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है न्यू मुरादाबाद से मीनाक्षी जी का, और ये कहती हैं, गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हमें शुभकामनाएं पहुंचाती हैं, आपको भी। मीनाक्षी कहती हैं कि मैम, मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लाइक म्यूज़िक से मुझे बहुत प्यार है, और सुबह उठते ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं रेडियो ऑन करती हूँ और उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत, मैं सारे काम करती हूँ अपने। एंड जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ 6 बजे से पहले मैं उठती हूँ, पहले मैं वॉक करने जाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद मैं 6 बजे घर आती हूँ, फिर मैं रेडियो को ऑन करती हूँ और उसके बाद मैं भजन सुनती हूँ। बाकी घर के सारे काम होते रहते हैं और भजन भी चलते रहते हैं, तो घर का वातावरण पॉजिटिव एकदम हो जाता है और पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत अच्छा फील होता है सुबह सुबह। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कॉलेज जाती हूँ और स्टडी करती हूँ, फिर मैं रिटर्न घर आती हूँ, फिर मैं रेडियो ऑन करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो से लाइक कनेक्टिविटी बनाना, रेडियो पर गाने सुनना, इन्फॉर्मेशन सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि हाँ, कोई, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई तो है, मेरा दोस्त जो मेरे साथ है। अरे वाह, थैंक यू मीनाक्षी, आपने अपनी इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। और इन्होंने कहा है कि मैम, मुझे गाना बहुत ही पसंद है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। हाँ, पापा जी की तो तमन्ना होती है, ख्वाहिश यही रहती है कि हमारे बच्चे लाइफ में कुछ अच्छा करें, आगे जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो पूरा करें और लाइफ में हमारा नाम भी रोशन करें। एंड पता है आपको दोस्तों, दुनिया में ना पेरेंट्स एक ऐसे हैं जो हमें हर हाल में, हर सिचुएशन में हमें सपोर्ट करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएंगे, जब हम बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाते हैं, तब वहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमारी हिम्मत बनते हैं और वो हमेशा हमेशा हमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, हमें हमेशा शाबाशी देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वो ही एक ऐसे पेरेंट्स हमारे होते हैं जो हमें कभी नहीं कहते कि बेटा तुम रुक जाओ, वो हमेशा कहते हैं कि तुम चलो, शाबाश, तुम कर पाओगे, तुम कर सकते हो। और जब वो मोटिवेशन मिलता है, जब वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जब वो अप्रिशिएट करते हैं, तो हर इंसान लाइफ में कितना भी हिम्मत हार जाए, वो भी एक ना एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल कर लेता है, पा लेता है, जब अपनों का साथ होता है। तो चलिए मीनाक्षी जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये शानदार सा ट्रैक और लौट कर आती हूँ मैं। ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा और अपने मैसेज भी हमें पहुँचाएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। अब आप इतना विचार, इतना मत सोचिए कि हम मैम को क्या बोले, क्या लिखें। ओहो, जो आपके पास टाइम है उसे यूटिलाइज करो, जो भी मन में आपकी चल रहा है वो हमारे साथ शेयर करो। मैंने आपसे पूछा था कौन सा ऐसा ट्रैक है दोस्तों जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। जब आप उस गाने को सुनते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। बताओ, इतना मत घबराओ, इतना मत सोचो, ठीक है? अभी आपके पास ऑप्शंस हैं और सुनिए कहीं ब्यूटीफुल ट्रैक। मीनाक्षी की रिक्वेस्ट पर मैं लौट कर आती हूँ।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शूट हो रहा है आप सभी का फेवरेट बिंदास बोल। संडे की प्यारी सी इवनिंग है, 4:18 हो गए राइट नाउ, और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि संगीत सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचता है। चाहे आपकी आवाज़ शुरू में हो या फिर जब दिल से गाना गुनगुनाते हो, तो वही सबसे खूबसूरत म्यूजिक बन जाता है। मैंने आपसे पूछा था वो कौन सा गाना है जिसे आप आज तक सबसे ज़्यादा गुनगुनाते हैं, चाहे किचन में खाना बनाते हुए या फिर नहाते वक्त, सफ़र में या फिर अकेले बैठे बैठे। कौन सा गाना आपने, हाँ आपने अपने मतलब प्यारी सी आवाज़ में गुनगुनाया है, बताइए ज़रा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और मुझे पता है कि हमारे श्रोता गाने गुनगुनाने के और गाने सुनने के तो बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो बताइएगा मुझे और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक और ब्यूटीफुल ट्रैक जो आप सभी के लिए यहाँ पर मैं प्ले करने वाली हूँ राइट नाउ, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। दोस्तों गाना ऐसा है कि आप थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि खुशी जी कौन सा गाना प्ले करने वाली है। हाँ हाँ, थोड़ा इंतजार करो और ये प्यारा सा गाना सुनो। बस मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के उस पार। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराएगा और अपने संदेश भी हमें पहुंचाएगा। और दोस्तों आज और क्या स्पेशल है वो सब मैं आपको बताऊंगी अभी।

0: नशे से जड़ गई ओए कुड़ी नशे से जड़ गई।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने के लिए आई हूँ। देखिए दोस्तों, वक्त हुआ है अभी कितना हुआ है, 4:32 राइट नाउ, और अभी आपके पास टाइम है, एक ब्यूटीफुल सेशन में आप जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मौका आपके पास है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और क्या कुछ खास होने वाला है वहाँ पर, मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ, बस आप कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, आपको भी पता है, और ये मुरादाबाद में पहली बार होने वाला है। जी हाँ, वर्ल्ड म्यूजिक डे फेस्टिवल। अरे, सबसे खास बात यह है कि इवेंट की, हाँ जी हाँ जी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो आज 21 जून की तारीख है, और शाम 5 बजे आप पहुंच जाइएगा पंचायत भवन, और बनाइए इस शानदार म्यूजिकल सेलिब्रेशन, बनिएगा इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल सेलिब्रेशन का हिस्सा। जी हाँ, अगर आपको सिंगिंग, गिटार, कैरोके एंड ड्रम्स या फिर किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का आपको शौक है, तो ये इवेंट आपके लिए ही है, आप जरूर इवनिंग में जाइए। और सुनिए विवन, इवेंट में होने वाले एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलने वाला है कुछ प्राइज भी। जी हाँ, जो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला है, जो प्ले कर सकते हैं, चाहे वो गिटार हो या फिर आप ड्रम्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप प्ले करते हो बेस्ट, उनको कोई लकी विनर होगा जिसको मिलने वाला है वहाँ पर प्राइज। वो क्या कुछ स्पेशल है, आपको वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ज़्यादा आप वहाँ जाइए, इवेंट को इंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिएगा। शाम 5 बजे पंचायत भवन, एंट्री बिल्कुल फ्री है, और अपनी शाम को बनाइएगा और भी ज्यादा खूबसूरत, अमेजिंग एंड वंडरफुल। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास, तो जरूर पहुंचिएगा पंचायत भवन शाम 5 बजे, एंड अपनी फैमिली को भी लेकर जाइएगा, अकेले ही मत जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको राइट है एंजॉय करने का, और संडे का दिन है, वैसे भी छुट्टी है, तो आप सोच ही रहे होंगे कहीं ना कहीं जाने का शाम में, तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, आप जा सकते हैं पंचायत भवन शाम 5 बजे, और अपनी शाम को बनाइए बेहतरीन, यादगार, मेमोरेबल। और मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग से ब्यूटीफुल ट्रैक, बस आप बने रहिए, चिपके रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक और अमेजिंग ट्रैक, पंजाबी गाना है लेकिन बहुत प्यारा है, एंजॉय कीजिएगा।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7066002430।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. एंड दोस्तों, अगर अभी आप स्टेशन रोड जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है इस टाइम, एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बहुत गर्मी भी है. तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ आपसे, ये बात कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, अगर गर्मी में आप ट्रैफिक में हैं तो आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ पर हूँ ना खुशी. आपको आपकी जो माइंड है ना, आपका जो माइंड है उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर कूल अमेजिंग ट्रैक प्ले करने वाली हूँ, जिससे आपका माइंड और भी ज़्यादा कूल हो जाएगा. आप चिल करो. एंड हाँ, बेवजह हॉर्न ना बजाओ, क्योंकि हॉर्न बजाते रहते हैं तो उससे ना सामने वाले को भी दिक्कत होती है. अभी एक दो दिन की बात है, मैं अभी मार्केट शॉपिंग करने के लिए गई थी टाउन हॉल, तो मैं उधर से रिटर्न वापस आ रही थी. एंड इवनिंग का टाइम, सेम टाइम था, इतनी भीड़, इतना क्राउड था वहाँ पर, यू नो, इतना ट्रैफिक, और पीछे से लोग हॉर्न बजाए जा रहे हैं बैक टू बैक. जो लोग बाइक से थे, जो लोग स्कूटी से थे एंड कार में थे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी आराम से धीरे धीरे यू नो गाड़ी को क्रॉस करें, क्योंकि अगर एक इंसान भी गलत गाड़ी को मोड़ लेता है, गलत रोड पर चले जाते हैं, तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सभी को इशू हो जाता है. तो मैं कहना चाहती हूँ कि केयरफुली एंड सावधानी के साथ गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट ज़रूर बांध लीजिए और पानी

0: शारी कली जी हैं और ये कहते हैं गुड इवनिंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड इवनिंग सर, आई एम फाइन। आपका शो हम बिंदास बोल सुन रहे हैं और आप ट्रैक भी बहुत ही अच्छे प्ले कर रहे हो, बहुत अच्छे सॉन्ग्स लग रहे हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आराध्या का आया है और ये विकास नगर से हमारे साथ कनेक्ट हुई है। कहती है मैम आपने तो हमें डांस करने पर मजबूर कर दिया है, इतने प्यारे प्यारे ट्रैक आप प्ले कर रही हैं बैक टू बैक। हम सोच रहे हैं कि चलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, लेकिन आप दूसरा गाना ऐसा प्ले कर देती हैं कि हम ऑटोमेटिकली डांस करने लगते हैं। ओहो रियली, चलिए अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये प्यारी सी शाम है और शाम में खुशी का काम है आपको हैप्पीनेस देना, खुशियाँ देना। तो चलिए एक और मैं अमेजिंग ट्रैक यहाँ पर प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए। दिलजीत दोसांझ की बड़ी सोनी सी आवाज में, बड़ी मीठी सी आवाज है उनकी एंड गाना भी बहुत ही प्यारा है। पर मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, पानी जूस एंड नारियल पानी पीते रहिए, नींबू पानी, सिकंजी, इन सब चीजों का लुत्फ उठाइए। और अपने संडे की शाम को बेहतरीन बनाइए। बस मैं अभी कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
1: ए फाइव स्टार अपना
2: यस
1: ओके ना अभी मित्रपाद।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो गुड इवनिंग माय लवली लिसनर्स, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। अभी शो चल रहा था आप सभी का फेवरेट बिंदास बोल, जहां पर आप बिंदास होकर हमारे साथ बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने इतने ब्यूटीफुल मैसेज अपने पहुंचाए, अपने दिल के थॉट आपने हमारे साथ शेयर किए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब मुझे दीजिए जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको फिर, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए और अपनों का ख्याल भी रखिए, और बस एफएम मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन, मिलेंगे आपको, सी यू सून।

0: शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और वेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: Mixing in the house.

बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: sunny day.
1: It is a sunny day.
0: Oh, sunny shades day, yaar.
1: Yaar, sorry.
0: और फिर मिला है तुलसी?
1: कितने है ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को भी अता पता है ही नहीं यार।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखेड़ो है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और उस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती होगी की तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ चारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं तो कितने भक्ति अब शायद माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से निपानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचंद पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आंच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है।
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचंद पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचंद पेड़ा, कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: मेरी हाय हाय गोली मारे अखियों से, हाय हाय।

0: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त RJ खुशी। दोस्तों, मौसम ने आज फिर से करवट ली है। बादल छाए हैं, हवाओं में ठंडक है और दिल में प्यारी यादें जाग रही हैं। कुछ लोग चाय के साथ पकौड़े एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ लोग किसी की DP देखकर इमोशनल हो रहे हैं। दोस्तों, मैं अकेली नहीं हूँ इस सुहाने से मौसम में, मेरे साथ अखिल जी भी हैं। हेलो, हाय अखिल जी, नमस्कार, आपका स्वागत है।
1: हेलो खुशी जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हैं? और समोसे भी लेकर आए हैं आज, तो क्या बात है।
1: हाँ यार, बारिश में ना समोसे का तो मजा ही अलग है, और बारिश का सीजन ये जो है लगे, और बारिश का सीजन ये जो है बिल्कुल अजीब होता है। खुशी, सिंगल लोग जो बोलते हैं कि कितना सुहाना मौसम है, और कमिटेड लोग बोलते हैं बेबी अम्ब्रेला ले आना, मुझे लेके जाना है।
0: अरे वाह, हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी चटपटी बातें सुनने के लिए आपको बने रहना है, चिपके रहना है ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर। अभी मिलते हैं हम आपको एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: कुछ किसी के मैसेज का इंतजार करते हैं।
1: क्या बात है जनाब। वैसे मैसेज की अगर आपने बात कही है तो बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं, लिसनर हैं, इस समय वो भी अपने फोन को टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, किसी के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लो, हम हैं ना आपके साथ। आप बस प्यारी सी स्माइल करो और समझो कि हम आपके पास ही हैं।
0: अभी संध्या जी का मैसेज आया है खुशी।
1: अच्छा
0: संध्या जी हैं लाइन पार से ही
1: जी।
0: कहती हैं स्कूल की छुट्टी, गली का क्रिकेट मैच और कागज की कश्ती, हम तो ये बनाते हैं बारिश में। और क्रिकेट मैच मतलब सही है यार, मतलब आजकल जो है ना सभी में, मतलब अपने चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्रिकेट मैच की दीवानगी एक अलग ही चलती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे कागज की नाव मैंने भी बनाई है।
0: अच्छा
1: हाँ जी।
0: तो तुम्हारी कहाँ तक चलती थी नाव?
1: काफी दूर तक जाती थी, फिर वो डूब जाती थी।
0: गली तो पार कर जाती थी? नहीं
1: हाँ, गली को क्रॉस कर देती थी।
0: बचपन में बारिश देख के हम बाहर भागते थे और आज बारिश देखकर हम कपड़े अंदर उतारने भागते हैं। चलो भैया जल्दी भागो, कहीं कपड़े जो हैं तुम्हारे
1: भीग ना जाए,
0: भीग ना जाए।
1: हाँ अखिल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जब हम छोटे थे बचपन में तो जैसे ही बारिश आती थी हम तुरंत कोई ना कोई बहाना घर से बनाकर नहाने के लिए भाग जाते थे बच्चे। और अब बड़े हो गए हैं तो अब यही ध्यान रहता है, अचानक से याद आता है अच्छा मैंने तो आज कपड़े धोकर फैलाए थे। फटाक से जाते हैं फिर उतार कर लाते हैं, कहीं भीग ना जाए, इतनी मेहनत तो लगती है कपड़े धोने में।
0: बचपन में जब मैं 4th-5th क्लास में था तब मुझे याद है कि माँ कहती थी जब भी ऐसी बारिश होती थी कि मत भीगना बेटा, तुम मत भीगना, अभी बाहर मत निकलना। और शायद ही 5-6 मिनट के बाद माँ की आवाज आ रही होती थी, वो मुझे देखती थी मैं कॉलोनी में, क्योंकि पानी ऐसा भर जाता था थोड़ा सा ऊपर नीचे और सामने खाली प्लॉट था तो उसमें क्रिकेट मैच खेलते थे
1: जी।
0: तो वहाँ गड्ढे में कूदे बैठ रहे हैं हम सबके साथ सारे बच्चे कॉलोनी के, 3-4 बच्चे शैतान अपने, तो वो अलग ही मजा था उस समय बारिश का।
1: हाँ बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं। अभी भी बारिश आती है वो बचपन तो नहीं है लेकिन वो यादें फिर से ताजा हो जाती
0: है। मगर गड्ढे वही हैं अभी भी।
1: अच्छा गड्ढे वही हैं। तो चलो दोस्तों ये मटर गश्ती हमारी चलती रहेगी ऐसे ही, आप बस ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और कुछ खूबसूरत गीतों के बाद लौट कर आते हैं हम। रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है अखिल सर, आज तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। हाँ, और कहाँ डूबे डूबे से हैं आप?
1: एक तो ये गाना इतना अच्छा है खुशी, और मुझे एक बात पे हंसी आ रही थी कि बचपन में ना,
0: हाँ,
1: कागज की कश्ती थी, बारिश का पानी था,
0: हाँ,
1: ना टेंशन EMI की थी, ना रिचार्ज करवाना था।
0: वाह वाह वाह वाह, सुपर, ये तो बहुत अच्छी बात बोली है आपने।
1: वो एक अलग ही मजे थे, और उस समय तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया है। ना कागज की कश्ती मिलती है कहीं, बारिश का पानी कभी भी आ जाता है, EMI की टेंशन
0: खत्म नहीं होती है,
1: और चार्ज कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता, एकदम मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाती है कि अब आप अपना फटाफट नया रिचार्ज करवा लीजिए।
0: हाँ, और अब तो ऐसा भी हो गया है, अगर हम रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो कॉलिंग भी बंद हो जाता है ना। हाँ, कॉल आ सकता है ना ही कर सकते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो।
1: खुशी, बॉलीवुड ने ना हमें सिखा दिया है कि प्यार और बारिश का कनेक्शन बहुत ही पुराना है।
0: अच्छा,
1: फिल्म में हीरो हीरोइन बारिश में डांस करते हैं,
0: हाँ,
1: और असल जिंदगी में हीरो स्कूटर साइड में लगाकर इंजन बचाता है।
0: हाँ, ये तो आपने सही बोला है। अच्छा, फिल्मों में मैंने देखा है, मुझे भी याद आया, एक फिल्म थी जिसमें माधुरी जी और शाहरुख खान जी थे, और आपको याद है वो फिल्म?
1: शाहरुख खान जी और
0: कोई लड़की है।
1: अच्छा,
0: जब वो घसती है
1: बारिश होती है चमा चमा चम चम।
0: तो दोस्तों, ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में जब कोई लड़की होती है और वो हंसती है और बारिश होती है?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं होता है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको क्या पता ये इंसिडेंट आपके सामने हो जाए तो कैसा लगेगा?
0: कुछ भी हो सकता है,
1: कुछ भी हो सकता है, बारिश में तो कुछ भी हो सकता है,
0: बारिश में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज छाता जरूर लेके जाएं, रेनकोट भी पहने, एंड अगर बारिश नहीं है तो उसको साथ रखें, क्योंकि अपने फुल तैयारी से रहना चाहिए।
1: और बारिश में किसी के साथ चाय पीना ना और दिल की बातें करना, उसकी जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। बैठ जाओ चाय की टपरी पे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्या कहते हैं हम सफर के साथ, या अपने और भी जो होते हैं ना फैमिली मेंबर्स, या आपके कजन जैसे हो गए ना, मामा का लड़का और फूफा का लड़का, एकदम एकदम कांटे वाली जोड़ी होती है दोनों।
0: हाँ,
1: तो एकदम बैठ जाते हैं। और
0: अच्छा, आप ही बारिश की बातें कर रहे हैं तो मेरे जहन में आया है, क्यों ना आपसे मैं बारिश की कुछ यादों के बारे में जान लेती हूँ। आपकी बारिश की कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज जो आपको आज भी याद है?
1: बारिश की मेरी ब्यूटीफुल मेमोरी ऐसी है कि मतलब कह भी सकते हैं ब्यूटीफुल थोड़ी सी, मैं नया नया अम्ब्रेला लेके आया था, और मतलब कहते हैं ना चांस, जैसी मैंने अम्ब्रेला खरीदा उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश चालू हो गई थी
0: जी।
1: अच्छा, PAC पे मैंने शॉप पे PAC के पास ही अपने मुरादाबाद में वहाँ पे अम्ब्रेला खरीदा था
0: जी।
1: और PAC से मेरे को जाना था अंदर दीनदयाल नगर तक।
0: ओके,
1: तो जब वो बारिश चालू हुई, वो नया नया अम्ब्रेला था, तो एक डर ये था कि कहीं मम्मी ना डांट दे तुमने जो है अभी खोला, और अभी उस समय बारिश भी ऐसी हो रही थी, जब हाथ में अगर छाता नहीं खोले तो कहेगा यार तूने छाता क्यों ले रखा।
0: हाँ, छाता तो भी है और बारिश में भीग भी रहा है।

0: मेरा, तो मैंने हिम्मत करके एकदम वो अम्ब्रेला खोला।
1: हाँ।
0: अब मजे की बात क्या थी कि थोड़ी सी आगे चला, हवा भी तेज चल रही थी भाई, वो अम्ब्रेला बिल्कुल उल्टा हो गया। मेरे को ऊपर देखा तो तानी तानी दिख रही थी, वो पूरा उल्टा हो गया अम्ब्रेला। मैंने कहा बेटा आज तो गया, अभी तो तूने छाता खरीदा, अभी तेरे साथ ही हवा भी चल गई और तू छाते को संभालेगा, क्या संभालेगा घर, और घर में ये टेंशन नहीं कि मैं भीग जाऊंगा।
1: हाँ।
0: या मैं भीग रहा हूँ, ये टेंशन अब जाके मेरी डांट जुड़ी है, छाता तू उल्लू बना रहा था, तूने छाता नहीं लिया, किसी का सेकंड हैंड छाता लिया। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से करके उसे हवा जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में किया और अपने सामने ऊपर की सामने की तरफ करके।
1: आपको पता है उस सिचुएशन में ना छाता बंद भी नहीं होता है।
0: हाँ।
1: हम कोशिश भी बहुत करते हैं, कई बार तो छाता भी उड़ जाता है इंसान के हाथों से।
0: और जो भी आसपास से निकल रहा था वो ये कह रहा था अरे संभाल के संभाल के। मैंने कहा भाई तुझे क्या बताऊं, मैं खुद क्या संभालूं।
1: मतलब दोस्तों की बहुत हमारे जो श्रोता इस समय सुन रहे हैं ना अखिल सर, वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि साथ भी ऐसा हुआ है, ये मोमेंट हुआ है, तो वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि
0: अगर आपने छाता लिया है और हवा में वो छाता नहीं उल्टा हुआ है तो इसका मतलब आपका छाता लेना बेकार है।
1: तो चलिए दोस्तों ऐसे ही कुछ और बातें हम आपसे करेंगे, अभी लौट कर आते हैं, तब तक आप सुनिएगा कुछ शानदार गीत आपके अपने प्यारे से रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए
0: और गुनगुनाते रहिए
1: और अखिल सर की तरह मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजे खुशी स्वागत करती है और मेरे साथ में अखिल जी भी हैं जो यहाँ पर शानदार बातें कर रहे हैं। साथियों, कभी कभी बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं होती, ये दिल के अंदर चल रहे जज्बातों का भी एक नाम होती है। जो लोग किसी को याद कर रहे हैं, ये सेगमेंट उनके नाम है। कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, आते हैं और दिल को भिगा जाते हैं। कुछ यादें मीठी सी खुशबू की तरह, कुछ यादें मिट्टी की खुशबू की तरह उम्र भर साथ रह जाती हैं।
1: क्या बात कही है, क्या बात कही खुशी जी आपने, बिल्कुल मजेदार।
0: अच्छा अखिल सर, रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस लाइन क्या होती है?
1: मुझे लग रहा है खुशी, तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम चाहती हो कि आज जो है ना अखिल का जो बैंड बज जाए। मतलब रिलेशनशिप में डेंजरस लाइन, सारी लाइन ही डेंजरस होती हैं।
0: सबसे डेंजरस लाइन क्या होती है? कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं,
0: उसके पीछे का राज तो बहुत कुछ होता है।
1: उस कुछ नहीं का अंदर ना एक पूरा सिलेबस छुपा हुआ होता है। अभी तो पता नहीं ना उस सिलेबस क्या क्या है, वैसे पता चल जाएगा तुम्हें सिलेबस में क्या क्या होता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर बारिश बहुत तेज है तो जो ऊपर है ना उनको स्पीड वाली उस पे ले लेना, प्रोसेस पे थोड़ा तेज। जितना ज्यादा क्लियर विजन होगा ना उतनी जल्दी घर पहुँचोगे।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और कभी कभी होते हैं ना धीमी धीमी बारिश होती है, स्लोली गाड़ी चलती है और लाइट म्यूजिक होता है, कैसा लगता है वो सफर?
1: वो बहुत मतलब अच्छा सफर है। और अपना क्या है ना, सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी क्या होती है कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं, सब कुछ हर चीज आपके साथ चल रही, मगर आपके दिमाग में ना एक हल्का सा सुकून सा माहौल होता है। कुछ बातें कुछ यादें आपको वो रियलाइज, मतलब ड्राइव भी कर रहे हैं, मौसम जब इतना अच्छा हो जाता है ना तो लगता है कि कुछ चीजें आपको याद आती हैं और आप उनको मतलब रियलाइज करके उन्हें मुस्कुराते हैं उन चीजों पे। वरना फिर बगल में जो बैठा हुआ पार्टनर कहता है यार मुझसे बात करने का तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तुम, तो ये भी एक टाइम है। हाँ। जब बगल वाले पार्टनर के साथ आप बातें कर सकते हैं, उससे कुछ उसकी भी बातें सुन सकते हैं, कुछ अपनी बातें भी उससे बोल सकते हैं।
0: जैसे हम दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और कुछ आपके साथ भी साझा कर रहे हैं कि अखिल ने, मैंने अखिल सर से मालूम किया कि आप मुझे बताइए कोई ऐसी डेंजरस लाइन रिलेशनशिप की, तो उन्होंने मुझे कुछ बातों में ही बहला दिया, प्रॉपर नहीं बताया क्योंकि उनको भी पता है कि घर जाकर अगर मैंने कुछ बोला तो पर्दा फास्ट हो जाएगा। तो आज कुछ बोलूं ना ही उसमें फायदा है।
1: खुशी, संगीता जी का मैसेज आया है।
0: अच्छा संगीता जी, नमस्कार आपको भी।
1: संगीता जी ने लाजपत नगर से हैं, कहती मैं एक कुछ उन्होंने लिखा है, पढ़ता हूँ जरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बारिश का मौसम हो और किसी अपने का साथ हो,
0: वाह वाह क्या बात,
1: जिंदगी की हर मुश्किल उस पल में आसान हो। क्या बात है संगीता जी ने, बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा लिखा है।
0: बहुत खूबसूरत इन्होंने लाइनें लिखी। जिंदगी की जो मुश्किलें हैं ना वो आसान हो जाती हैं जब अपना हम सफर अपने साथ होता है।
1: चलिए बाकी ये गाने का ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ दोस्तों, और लौट कर आएंगे कुछ और बातों के साथ, कुछ नई शायरियों के साथ। अखिल सर आज पूरे शायराना अंदाज में यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं।
1: ये तो शायराना अंदाज हमारे साथियों का है जो हमें मैसेज कर रहे हैं, इतने अच्छे मैसेज किए। अगर आपके पास भी कोई मैसेज है ऐसा जो आप कहना चाहते हैं तो आप हमें जरूर उसे मैसेज करें 9837896 और 896 पर।
0: आपकी शायरियाँ सुनकर ना मुझे अखिल सर एक गाना याद आ रहा है,

0: स्वागत है आप सभी का वापस मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। एक शायरी है जो मैं बोलना चाहूँगा। तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तेरी खुशियाँ मेरी जान बन गई, कुछ इस तरह समा गए हो तुम दिल में कि हर धड़कन तेरा नाम बन गई।
1: वाह वाह, क्या बात है अखिल सर, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आपकी। और ये शायरी सच में मतलब दिल को छू गई है। और प्यार इतनी खूबसूरत चीज होती है ना कि उसमें इंसान खुद को भूलकर सामने वाले की खुशियाँ ढूंढने लगता है।
0: ये बात तो सही कही आपने खुशी जी।
1: मैं भी कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ।
0: इरशाद,
1: कि चांद से हसीन चेहरा है तुम्हारा, चांद से हसीन चेहरा है तुम्हारा, फूलों से प्यारा है साथ तुम्हारा, दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर दूं, कि दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर दूं, अगर मिल जाए उम्र भर साथ तुम्हारा।
0: क्या बात खुशी जी, क्या बात, लगता है कुछ है मामला।
1: ये मामला बिल्कुल है। ये ना हमारे साथियों से और हमारे प्यारे से रेडियो से हमारा ये रिश्ता है, और हम बस यही चाहते है कि उम्र भर ये साथ निभाए हम सब मिलकर।
0: बिल्कुल सही बात कही। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई खास है तो उसके लिए प्यारा सा मैसेज करिए हमें, हम बोलेंगे और उसे बताएंगे कि सच में आप उसके लिए कितने खास हो।
1: अच्छा अखिल सर, कभी कभी प्यार की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि सामने वाला कुछ कहे बिना भी सब कुछ समझ जाता है।
0: हाँ, ये तो है, ये तो एक मतलब कहते हैं ना, साइलेंट फीचर है प्यार का।
1: आप कुछ कहो भी नहीं और आंखों आंखों में सारी बातें हो जाती है।
0: ये बात भी है। देखिए, एक उन्होंने लिखा है विकास जी ने,
1: हाँ,
0: दीनदयाल नगर से
1: जी।
0: ना चांद चाहिए ना सितारों की बारात चाहिए,
1: वाह वाह वाह,
0: बस हर सुबह तेरे नाम की शुरुआत चाहिए।
1: ओए होए,
0: क्या बात, बिल्कुल लगे रहिए, कभी ना कभी बिल्कुल मतलब जो आपने बोला है ना हो जाएगा। सुबह सुबह मैडम आपको कहेंगी, अरे उठो जी, चाय तो पी लो।
1: सुबह सुबह अगर आप

0: ऐसा सोचते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन वो दिन भी जरूर आएगा जब मैडम आपको बोलेंगी, सुनिए जी मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, उठ जाइए और चाय पी लीजिए।
1: सही कह रहे हो।
0: मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
1: अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? मतलब क्या हो गया, एकदम अचानक तुम्हारे अंदर से सारी बातें निकल के आ रही हैं, कहीं कौन सा शायर आपने छुपा रखा है खुशी जी अपने अंदर?
0: नहीं नहीं नहीं, कोई शायर नहीं है। जब आप इतनी खूबसूरत लाइनें बोल रहे हैं तो मेरे जहन में भी कुछ आ रहा है कि तुम्हारी यादों का मौसम कुछ ऐसा छाया है, तुम्हारी यादों का मौसम कुछ ऐसा छाया है, हर तरफ बस तुम्हारा ही साया है, जब भी बंद करती हूँ आंखें, दिल ने सिर्फ तुम्हें ही पाया है।
1: क्या
0: दिल
1: बात
0: ने सिर्फ
1: है?
0: तुम्हें ही पाया
1: क्या
0: है?
1: क्या बात है, मतलब आपने आज ये बोल दिया ना, ऐसा कोई बोल देगा ना अपनी अपने किसी चाहने वाले के आगे तो आज ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाना। सही कह रहा हूँ?
0: हाँ बिल्कुल, आपकी बातें गलत थोड़ी ना होती, आप जो भी कहते हैं बहुत ही अच्छा बोलते हैं।
1: तो चलिए अब अपने लिसनर्स को भी हम कुछ अच्छा अच्छा सुनाते हैं इसी इश्क में।
0: हाँ बिल्कुल, सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत गीत यहाँ पर सुनवाते हैं। और दोस्तों अब हम आपसे जाने की अनुमति भी लेना चाहेंगे क्योंकि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। आई होप आपको ये सेशन, ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हम लेकर आए हैं, आपकी यादों को हमने फिर से ताजा किया है, तो आप अपने फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9837896896। रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: नमस्कार श्रोताओं, फिर मिलेंगे प्यारी बातों के साथ
1: बहुत जल्द इसी समय इसी मौसम के साथ।
0: मौसम बहुत सुहाना है तो कुछ सुहाने गाने भी हो जाएंगे आपके लिए।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
7: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योग अभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समृद्ध विरासत योग को वैश्विक मान्यता दिलाकर हमें गर्व की अनुभूति कराई है।
8: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
7: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, मेरठ, अमरोहा, चित्रकूट, अयोध्या, सीतापुर, जौनपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, रामपुर, मैनपुरी और अमेठी सहित सभी जिलों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों, कॉलेजों और स्वैच्छिक संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास और योग जागरूकता कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
9: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
7: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज शाम शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
4: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आज करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मैजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। अभ्यर्थियों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तर रेलवे विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
7: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज शाहजहांपुर के ग्राम हथौरिया में खनौत नदी पर बनने वाले सेतु निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री खन्ना ने कहा कि खनौत नदी पर बनने वाला ये पुल क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर को नगर निगम और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए और वर्षा जल संचयन को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ा जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: करके।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: RBI कहता है
3: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना,
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न, 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दिल्ली पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की, और ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट।
7: नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2,00,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
6: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष के योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। आयुष मंत्रालय ने बताया कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। इसके अलावा कर्तव्य पद, लोधी गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, सिरी फोर्ट खेल परिसर, यमुना खेल परिसर और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज सहित कई प्रमुख स्थानों पर भी योग सत्र आयोजित हुए। मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण के बाद प्रतिभागियों ने 45 मिनट के सामान्य योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। आयोजन ने स्वास्थ्य जीवन शैली और योग के प्रति लोगों की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया। योग सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय किया। उन्होंने बताया कि लगभग 190 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तब से सभी देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि योग से मानसिक जागरूकता बढ़ती है।
8: योग मैं भी दिन प्रतिदिन करता हूं, इससे बहुत शारीरिक एजिलिटी आती है, मानसिक जागृति आती है और शांत मन से, शांत चित्त से लंबे समय तक काम करने की प्रेरणा मिली। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस योग दिवस पर हम संकल्प लें कि हम कम से कम अपने दैनिक जीवन में योग का उपयोग करते हुए अपने जीवन को और उत्तम बना सकें, अपने शरीर को और अच्छा बना सकें, अपने मन को शांत रख सकें।
6: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
0: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
6: केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से

0: इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आसोला भाटी स्थित नीली झील पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वस्थ, सक्रिय और तनाव मुक्त बनाने की दिशा में योग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है जो तन, मन और जीवन में संतुलन प्रदान करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। इसके अलावा योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि योग को 365 दिन का कार्यक्रम बनाने पर बल देते हुए कहा कि योग से हमारी जीवन शैली बदलने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर होगा।
1: योगा का देखिए फिजिकल फिटनेस एक चीज है, खास तौर पे आज योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम जिसके थ्रू ये अचीव हो सकता है। बैलेंस हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बैलेंस से मेंटल बैलेंस निकलता है, फिजिकल बैलेंस निकलता है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। श्री संधू ने कहा कि लोगों का जबरदस्त उत्साह और सामूहिक भावना दर्शाता है कि योग एक ऐसी शक्ति है जो उम्र, पृष्ठभूमि और भूगोल की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ती है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय सहित राजधानी के विभिन्न जिलों में योग सत्र आयोजित किए। पुलिस के अनुसार पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ईशा फाउंडेशन ने देशभर में कई योग कार्यक्रमों का आयोजन किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित आदि योगी परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि योग में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित प्रतिभा और क्षमता को जागृत करने की अपार शक्ति है।
2: What we call as yoga.
3: जिसे हम योग कहते हैं वह कोई फिलॉसफी नहीं है, वह कोई विचारधारा नहीं है, ना ही कोई बिलीफ सिस्टम है, ना ही कोई धर्म है और निश्चित रूप से ये आपके शरीर मोड़ने और घुमाने के बारे में भी नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। जैसे बाहरी खुशहाली के लिए एक विज्ञान और तकनीक है, वैसे ही आंतरिक खुशहाली के लिए भी एक पूरा विज्ञान और तकनीक है। यदि आप एक इंसान हैं तो ये तकनीकें आप पर लागू होती हैं। यदि आप केवल इसका उपयोग करना चाहते हैं या यदि आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो एक पूरा विज्ञान यहाँ मौजूद है जो जीवन भर की खोज का विषय है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे तीन प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कोली समाज के 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय कोली समाज को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि कोली समाज ने अपने परिश्रम, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा की गौरवशाली परम्परा से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की मीडिया प्रभारी और प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि समग्र और स्वस्थ जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर दादा ने कहा कि योग से तनाव भी कम होता है और वजन नियंत्रण तथा प्रजनन स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है।
4: बहुत बढ़ रहा है और

0: इंडिया में तो अबाउट 3.6 to 22.6% पाया गया है। बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारी एविडेंस बेस्ड रिसर्च ने क्लियरली दिखाया है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है तो योग एक आर्ट ऑफ लिविंग है, इट्स अ प्रोफाउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसको अगर हम अपने दिनचर्या में अपनाएं तो इस पे बहुत ज्यादा इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ अजीत कुमार सिंगला ने की, जिसमें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान रूट सुरक्षा, कांवड़ियों की सुगम आवाजाही, यातायात डायवर्जन, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वतंत्रता दिवस के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों और राष्ट्रीय समारोह स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों आयोजनों के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करेंगी। दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: दिल्ली पुलिस ने पुलिस मुख्यालय में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS अधिनियम 1985 पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में 71 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने शेयर बाजार में अधिक मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से कई किस्तों में लगभग 80 लाख रुपए निवेश करवाए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपराध ठगी की रकम को छिपाने के लिए उनको अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते थे। मामले की जाँच जारी है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही, वहीं शाम के समय हल्के बादलों के साथ धीमी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल दोपहर हल्के बादल छाए रहने की संभावना बताई है और शाम में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न, 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। दिल्ली पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की और ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट आरजे छाया और आप सुन रहे हैं मुझे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। मौजूद है आपके साथ लेकर अपना नया कार्यक्रम विशेष बातचीत, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मनोज वर्मा मनुजी। आपको बता दे दोस्तों कि मनोज मनुजी एक कवि, गजल, गीत, नज्म और दोहे जैसी रचनाएं करते हैं, और आज के इस विशेष बातचीत में हम सुनेंगे मिस्टर मनोज वर्मा जी की कुछ रचनाओं को, और साहित्य जगत से जुड़े हुए होंगे कुछ सवाल जवाब। तो हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद छाया जी।
0: जी, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अपने नाम के आगे जो आपने उपनाम दिया है मनोज वर्मा मनु, मनु नाम से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या सोच के रखा था मनु?
1: जी छाया जी, ये जो मेरा उपनाम है ये मेरे दोस्तों की, मेरे घर में, मेरे परिवार की देन है, और इसके बारे में मैं कहूँ तो ये हमारे संस्कृति में आदि पुरुष जो मनु सत्रुपा के नाम से आपने सुना होगा, जो कि आदम के इक्विलेंट आते हैं, ये उसी नाम से संबंधित है, और मैं सोचता हूँ कि मानवता के लिए ये एक अच्छा नाम है, इसलिए मैंने इसे अपने नाम के साथ जोड़ा है।
0: हाँ जी जी जी। तो जैसा कि आप गजल, गीत, दोहे, नज्म वगैरह करते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि गजल और शायरी लिखने में आपका कैसे रुझान विकसित हुआ, या कोई विशेष लम्हा या प्रभाव आपकी रुचि को प्रज्वलित किया?
1: बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जिस समय हम अपनी युवावस्था में थे, उस समय और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं बेसिकली, वो जगह मुशायरों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, जनपद रामपुर जो अदब का शहर कहलाता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अक्सर हम जो मुशायरे वगैरह में जाते थे और अपने साथियों के साथ इसको सुनते थे, वहाँ पर उसका एक क्रेज अलग था। तो जब वहाँ पर शायरों को सुना जाता था और उनका अंदाज देखते थे, तो इसी चीज ने धीरे धीरे रुझान पैदा कर दिया। और ये तो एक बात है ही कि किशोरावस्था में अगर आपको गजलों से निस्बत होने लगे, तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि दिल में किसी की चाहत के अंकुर फूट रहे हैं। तो और बंदा अपने दिल के बात बड़े अदब और शाइस्तगी के साथ अपने महबूब तक पहुंचाने की तमन्ना रखता है, तो धीरे धीरे शायरी को जानने और समझने का सलीका भी रुचि पैदा कर देता है। बस इस तरफ थोड़ा रुझान हो गया।
0: चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा आपका जवाब मिला हमें,
1: शुक्रिया।
0: जी जी, तो गजल और शायरी लिखते समय आपकी रचनात्मक प्रकृति कैसी होती है? क्या आप कोई निश्चित रूटीन फॉलो करते हैं या कोई विशेष प्रेरणा के स्रोत है?
1: मकतवेश का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो छाया जी, मैं कहना चाहूंगा कि रचना कर्म से जुड़ने के बाद भी बिल्कुल यही कैफियत लागू होती है। इसका कोई निश्चित रूटीन नहीं होता, ना ही संभव है। ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो लगातार जहन को अपनी जद में बांधे रखती है, और नेचुरली आसपास के हालात या मन की कैफियत से प्रस्फुटित होकर अपने आप को सृजित करवा ही लेती है। हालांकि उसके शिल्प की तरतीब और उस विधा की बुनियादी जानकारी ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसमें कहाँ तक महारत हासिल कर पाते हैं। इसके बावजूद भी शेर कहना, पढ़ना, ये एक खुदादाद कैफियत होती है, ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत होती है। क्योंकि कहा गया है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
0: अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, क्या बात है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपका कोई पसंदीदा गजल या शायरी जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और आपके लिए वो खास क्यों है?
1: दरअसल छाया जी, बात यह है कि कोई भी शेर, कोई भी गजल अपने आप में हमेशा जो हमारी याद होती है उनसे जुड़ी हुई होती है, या जो परिवेश होते हैं उनसे मिली हुई होती है, उनसे प्रेरित होती है। चलिए मैं आपको दो एक शेर के माध्यम से बात बताता हूँ। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती। किसी को ख्वाब की ताबीर मिल गई होती, आप मिलते अगर तकदीर मिल गई होती, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, और रांझे ने भला कौन खुदा मांगा था, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती, वही मिल जाता अगर हीर मिल गई होती। तो शायरी के कई पक्ष हैं, ये सामाजिकता के लिए भी होती है और अपने दिल के जज्बों को भी समेटे हुए होती है। तो जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्क दर वर्क पन्ने खुलते चले जाएंगे।
0: वैसे ये जो मुक्तक था काफी अच्छा लगा हमें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुक्तक आपको इतना पसंद क्यों है?
1: जैसा कि मैंने बताया, शायरी अपने आप में कई मकाम समेटे हुए होती है। ये कब कितनी आगे चली जाती है, कब कितनी पीछे चली जाती है, इसका कहना मुमकिन नहीं होता। तो ये सब उन्हीं जज्बों के छोटे छोटे अंश हैं जो हमारे सामने चलते रहेंगे। मैं और आपको रूबरू कराऊं अपने एक कते से कि हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल ने, हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। हिफाजत से रखी हैं अब तलक यादें सभी दिल में, ये क्या रिश्ता है तुझसे, ये समंदर कितना गहरा है। नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, नहीं भूला अभी भी मैं नहीं, तुम बदगुमा मत हो, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है, कि मेरी रूह पे अब तक तुम्हारा लम्स ठहरा है। तो ये सब यादों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो यकायक आती हैं और फिर पन्नों में सिमट कर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।
0: क्या बात है, क्या खूब कथा आपने सुनाई। और इसी के साथ अगर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो हमारा अगला सवाल आपसे होगा, कविता और शायरी आपके लिए क्या है, मतलब क्या मायने रखता है, आप इसे कैसे देखते हैं?
1: जी छाया जी, मेरे नजदीक शायरी या कविता में श्रृंगार के साथ सामाजिक और मानविक मूल्य, कुदरत के प्रति संवेदनशीलता, रिश्तों में आत्मीयता और ईश्वर के प्रति आभार, ये संदेश प्रवाहित होकर ही कविता को कालजयी श्रेणी में रखते हैं। और मेरे नजदीक ये केवल लफाजी का एक तरीका नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मात्र लफाजी तुकबंदी ये कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। और जो कविता या गजल या शायरी अगर हमारे समाज को संदेश ना दे पाए तो वो व्यर्थ होती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। सवाल अगला करेंगे लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका कोई पसंदीदा गजल जो सुनना चाहेंगे हमारे आज के इस विशेष बातचीत में।
1: देखिए, छोटी छोटी बातों से मैं कविता को अपने नजदीक क्या समझता हूँ उसे बताने की कोशिश करता हूँ। हर हंसी भी खुशी का मजाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मजाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मजाहिर नहीं, गम तो ऐसे भी हैं जो के जाहिर नहीं, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, जीस्त का मौत से फासला लम्हा भर, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, इससे बचने में कोई भी माहिर नहीं, हर हंसी भी खुशी का मजाहिर नहीं। और गजल में मैं दो तीन शेर आपके बीच रखता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, मेरी बेख्वाब निगाहों की अजियत मत पूछ, अपना पहलू मेरे पहलू से बदल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद। और अगला शेर है इसमें कि तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू है मसरूफ तेरे दिन के शगल भी होंगे, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, तू किसी रोज मेरे साथ निकल शाम के बाद, और हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हर नसीहत है बजा आपकी मगर ना से, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद, हमसे हो पाएगा ना इस पे अमल शाम के बाद। और फिर गजल का शेर है कि तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, तू नहीं है तो बहारों में कशिश क्या मानी, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद, कौन देखेगा ये रौनक बेमहल शाम के बाद। और जो ताईद का शेर होता है कि मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, मसाला मेज पे ये सोच के छोड़ आया हूँ, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद, अब ना निकला तो निकल आएगा हल शाम के बाद। और हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, हो सियासत की रवायत या मोहब्बत के चलन, रिश्ता बेसाख्ता जाता है बदल शाम के बाद, हाँ तेरी याद चली आई थी कल शाम के बाद, और फिर हो गई एक ताजा गजल शाम के बाद।
0: क्या बात है, आपकी जितनी भी रचनाएं हैं इसका मधुर सौंदर्य हमारे सभी श्रोताओं के हृदय को छू रहा होगा और साथ ही साहित्य जगत को भी प्रभावित कर रहा है। चलिए, ये तो रही आपकी शायरी की बात, लेकिन कुछ गीत दोहे जो आप सुनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और मुझे कुछ गीत सुनाएं।
1: जरूर, देखिए गजल और शायरी ये अपना शौक है, लेकिन कविता और गीत ये हमारा कल्चर है, तो मैं आपको एक अंचे के साथ, एक मुखड़े के साथ एक गीत के कुछ अंश रखता हूँ।

0: क्या बात है सर, जितनी प्यारी आपकी रचनाएं उतना ही प्यारा आपका गीत।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: वैसे हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा और इसका फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे कल के शो में। हाँ जी, फिलहाल तो अपने शो की तरफ आगे बढ़ती हैं और अगला सवाल जानते हैं मनोज मनु जी से कि गजल और शायरी लिखते समय क्या आपने किसी प्रशिक्षण का सामना किया है? कैसे आप लिखने के भेद को समाप्त करते हैं या प्रेरणा प्राप्त करते हैं जब आप लिखने में अटक जाते हैं?
1: देखिए, शायरी की तरफ रुझान होना और शायरी कर पाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हर विधा को निखारने के लिए प्रशिक्षण और सतत प्रयास की आवश्यकता होती ही है। और शायरी के बारे में तो ये कि शेर कह पाने की सोच एक ईश्वरीय वरदान का नतीजा माना जाता है। तो अगर आप में शेर कह पाने की खुदादाद सलाहियत नहीं है तो उसके समूचे व्याकरण आदि को जानने के बावजूद भी आपके शेर में वो बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती जो उसको मकबूलियत या उसको प्रसिद्धि प्रदान कर सके। दो लाइनों से मैं अपनी बात रखूं कि अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, अब इश्क हो कि शायरी जज्बाती अमल है, खैरात सा नहीं ये इनायत सा नहीं है, जिसने लहू दिया है वही पाल सका है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है, ये शौक रईसों की रवायत सा नहीं है।
0: क्या बात है, क्या खूब आपकी रचनाएं और बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है हमें, हमारे सभी श्रोताओं को भी।
1: बहुत शुक्रिया।
0: जी जी, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि क्या कोई कवि या लेखक जो आपके काम पर प्रभाव डाले हों, उन्होंने आपकी रचना और लिखने की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है?
1: जी, मेरे विचार से किसी भी विधा के प्रति आकर्षित होने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उनमें से बहुत से प्रभावित हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रभावित व्यक्तित्व से रचना कर्म में समानता ही एक सामान्य बात है। शायरी के इस फहरिस्त में जनाब श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब, मजाज लखनवी साहब, नरेश कुमार साज साहब और वर्तमान में दादा निजाम हाफतिफ साहब जो मुरादाबाद से ही बिलोंग करते हैं, आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ साहब जो नूर साहब के ही शागिर्द हैं, इन नामों से मैं खासा प्रभावित रहा हूँ। इन्होंने मुझे, इनके रचना कर्म ने मुझे खासा प्रभावित किया है और वो झलक अगर मेरे रचना कर्म में झलकती हो तो इस बात को लेकर मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूँगा।
0: अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे आप गजल और शायरी के पारंपरिक तत्वों को सच बोलते हुए अपने आप की आवाज और अंदाज को शामिल करते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये किसी भी रचना के शिल्प और उसकी अदायगी का प्रश्न है। परंपरागत तौर पर शायरी का अपना ही एक व्याकरण है, बाकी कंटेंट के रूप में सामाजिक और मानविक मूल्यों के उठाए गए सच्चे विषय जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये बात अंदाजे बयां को एक पुख्तगी और एक स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत होता है। मैं समझता हूँ कि इसी चीज से एक पुख्तगी आती है। जब हम सच कहेंगे तो सच के कहने में उस आवाज में जो जोर होता है उसका एक अपना अलग अंदाज हो जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सच बोलने की ताकत सब में नहीं होती है, लेकिन जो सच बोलता है ना उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, हमें एक अलग ही ऊर्जा झलकती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि बड़ा अहम सवाल है ये और इसका जवाब बहुत ही अच्छा मिला हमें। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा आपसे होगा कि आपको लगता है कि आधुनिक लेखों के लिए गजल और शायरी जैसे क्लासिक काव्य के रूप में जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है? आधुनिक दुनिया में उनका क्या महत्व है?
1: जी छाया जी, आधुनिक दौर में निसंदेह क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, परंतु साहित्य में शायरी से गजल के क्षेत्र में ये बात है कि ये विधा अपनी रवायत के साथ हमेशा से खड़ी रही है और भविष्य में भी इसकी शोहरत कम होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक इंसान में इंसानियत, रोमानियत और सामाजिकता का जज्बा रहेगा गजल और शायरी हमेशा जिंदा रहेगी।
0: क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, हमारे श्रोताओं को। अगला सवाल तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी। हम सभी एक्चुअली जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं गजल और शायरी समाज में क्या भूमिका निभाते हैं?
1: जहाँ तक शायरी और गजल की समाज में भूमिका का प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं कि इस फन को अदब की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब कोई बंदा गजल या शायरी या साहित्य से वावस्ता होता है तो वह अदब के क्षेत्र में आ रहा होता है, और जब अदब से रूबरू होना यानी समाज में सकारात्मक योगदान की भूमिका निभाना है तो पाठकों और सुनने वालों को आकर्षित करने का मादा शायरी में बिल्कुल इस तरह से है जैसे गर्म चाकू पर मक्खन पेवस्त कर दिया जाता हो। यानी आप देखें कि हम जो बात कहना चाहते हैं, शायर जो बात कहना चाहता है शायरी में, वो बात सीधे ही दिल तक उतरती है। तो ये इसकी अपनी खासियत है और इसको सामाजिकता में एक सकारात्मक सहयोग के रूप में, सकारात्मकता के रूप में ही हम देख सकते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। वैसे हमने पहले ही कहा था कि आपकी रचनाएं हमारे श्रोताओं और हमारे दिल को सीधा ही संपर्क कर रही हैं, और इसी के साथ
1: शुक्रिया।
0: लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये पथकों और सुनने वालों के साथ कितना संपर्क रखता है।
1: जी, मैंने बताया कि सुनने वालों को जो इंटरेक्ट करता है, जो संपर्क रखता है, वो अपने आप में विलक्षण होता है। जैसे हम कभी कोई भी बात अगर प्रोज में या गद्य में पढ़ते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो विस्मृत हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ शेर जो आज से सदियों पहले कहे गए आज भी बिल्कुल वैसे ही और उसी ताजगी के साथ जिंदा हैं। इसलिए इसका इंट्रेक्शन और इसका जुड़ाव यकीनन बहुत अच्छा है।
0: जी जी, जरूर सही कहा आपने। वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है शायरी और गजल, और इसीलिए आपकी और हमारी मुलाकात हुई है इस विशेष बातचीत में। अगला सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आप अपने विचार में गजल और शायरी के भविष्य पर कुछ विचार देना चाहेंगे।
1: जी जी, गजल और शायरी के भविष्य हमेशा से उज्जवल रहा है और हमेशा से उज्जवल रहेगा। हाँ, अगर शायरी केवल बादशाहों के हरम तक ही महदूद रह जाती, वहीं दम तोड़ जाती, तब शायद इसका अस्तित्व कुछ और होता। लेकिन चूंकि अब ये सामाजिक और मानविक मूल्यों के चिंतन से भी जुड़ चुकी है, तो उसके बाद इसका श्रृंगारिक पक्ष और भी वसी और भी विशाल हो गया है। इसलिए इसका भविष्य सुरक्षित है और प्रकाशवान है। आने वाले वक्त में इसकी शोहरत, इसकी मकबूलियत हमेशा बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: आप जैसे कवि और गजल की रचनाएं करने वाले लोग होंगे तो जरूर, और हमें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। वैसे सर, जाते जाते, क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे उन सभी दोस्तों को, उन सभी यूथ को जो कम उम्र से ही शेरो शायरी करने का शौक रखते हैं, गजल सुनते हैं, सुनाते भी हैं अपनी रचनाओं के तौर पर, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे।
1: जी छाया जी, बहुत बड़ा विषय है। तो यूथ का जो मेरा संदेश है वो मैं अपने अशार के ही माध्यम से कहना चाहूँगा। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। किसी के जुल्म से तंग आके डर जाने की बातें क्यों, जमाने के चलन पे यूं असर जाने की बातें क्यों। अगर एहसास मर जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता, जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। जियो जिंदा दिली से घुटके मर जाने की बातें क्यों। और ये भी संदेश कि रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना, रवानी है तुम्हारे खून में थमने नहीं देना। बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों, बुरे हालात से डर कर ठहर जाने की बातें क्यों। और अभी तो शम रोशन है, ये जलवा देखना यारो, जवां जब रात बाकी हो तो घर जाने की बातें क्यों। जहां चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो जहाँ चेहरों पे कायम हो चमक मेहनत कशी की, तो पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों, पराई रोशनी लेकर निखर जाने की बातें क्यों। रवा के रुख के जानी भी पलट जाओ मगर सोचो, जिधर से आग भड़की हो उधर जाने की बातें क्यों। और मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से। किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों।
0: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप इस लाइन को दोहराइए।
1: मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से, मनु शीरी जुबा में गुफ्तगु करिए जमाने से। किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों, किसी के दिल में नश्तर सी उतर जाने की बातें क्यों। और ये गजल के दो मिसरे भी इसमें है कि हो आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो, आंखें झील सी आंखों में दरिया हो समंदर हो, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों, मगर ये आंख के पानी के मर जाने की बातें क्यों। जुबा दे दी अगर तो फिर मुकर जाने की बातें क्यों।
0: क्या बात है जुबा दे दी अगर तो मुकर जाने की बातें क्यों, बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये रचना।
1: जी जहाँ तक आपने मुझे बताया कि एक यूथ के लिए इस समय क्या संदेश है, तो मैं अपने चंद अशार के साथ ये बात यूथ तक पहुँचाना चाहूँगा आपके रेडियो के माध्यम से कि जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियाँ बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, अगर हो गैर से तकरार बात दीगर है, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, मगर हो भाई से तो बस निबाह याद रखो, जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो, और करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, ये मेरा संदेश है, करी जो नेकियां उनको भुला भी सकते हो, मगर गुनाह से तौबा, मगर गुनाह से तौबा गुनाह याद रखो, और नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, नवाजता है वही मत गुमान में डूबो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, वही कर देगा कभी भी तबाह याद रखो, और रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, रहम पसंद बनो ये पसंद है उसकी, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, मुआफियों में है रब की पनाह याद रखो, और जमीन पे पांव फलक पे निगाह याद रखो, मियां बुजुर्गों की ये भी सलाह याद रखो।
0: क्या खूब
1: शुक्रिया।
0: वैसे जाते जाते मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, सोच रही हूँ पूछ ही लूँ, किस उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया, किस उम्र में आपका इंटरेस्ट रचनाओं में होने लगा?
1: छाया जी, बात दरअसल ये है कि जो परिवेश मैंने जैसे बताया पहले, ये जो परिवेश था मुशायरों का, तो ये टीन एज से ही हमें शौक लग गया था, तो दोस्तों के साथ जब जाते थे, देखते थे, शेर को समझते थे और उस पर शायरों को दाद देते थे, तो वो एक अलग अनुभव महसूस होता था, इसी चीज ने जो रुझान पैदा किया, तो टीन एज से ही ये रोग हमारे साथ है। खैर
0: जी जी, तो वैसे जाते जाते बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन वक्त तो हो गया हमारा जाने का, इसलिए एक आखिरी सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर को समर्पित कोई गीत, कोई रचना आपकी जो आप अभी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
1: जी क्या बात है, और वाकई जहाँ हम रहते हैं उसका कर्ज हम पर होता है, तो मैं जरूर बात रखूंगा, एक गीत के माध्यम से मैं अपने शहर को जो समर्पित करना चाहता हूँ, पंक्तियाँ शहर में रखता हूँ। यहाँ अनेकों रंग समेटे प्रतिभाएं आभामय हैं, विश्व पटल पर धाक जमाने योग्य कुशल हैं तन्मय हैं। यहाँ अनेकों रंग समेटे

0: ये हुए का रेडियो का और सुनने वाले हमारे सामाइन यानी श्रोताओं का भी आप सभी के तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया है।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
7: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
6: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
6: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
7: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
6: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
8: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
7: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े

0: सेंटर एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर

क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

जी हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, कैसे हाल चाल है जी? वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आई एम श्योर आप तक पहुंचनी चाहिए, और नहीं पहुंच रही तो बिल्कुल पहुंच जाएगी। हेलो, गुड इवनिंग जी। देखो, संडे की जो शाम है बहुत ही खूबसूरत, अब शाम रात में तब्दील हो गई है। बाय द वे, कितना टाइम हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में? 9:13 हो रहे हैं ना। आप लोग जहां से भी निकल रहे हैं, आप दिल्ली रोड से निकल रहे हैं, आप कांट रोड से निकल रहे हैं, आप स्टेशन रोड से निकल रहे हैं, या फिर आप, मैं कह रहा हूं पाजी, आप शहर के अंदर किसी भी रोड से निकल रहे हैं, आप चाहे पीली कोठी हो या मानसरोवर वाला हो रोड हो या फिर जीरो पॉइंट वाला रोड हो, मतलब आई मीन दिल्ली रोड हो, आप जहां भी हैं, बस आप वॉल्यूम को हाई रखो क्योंकि अच्छे गाने लगा रहा हूं मैं। अगर आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, तो ऑफकोर्स मेरा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896। दिस इज माई नंबर। एंड कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, संडे है, वीकेंड है, एंड मैं कहाँ से आ रहा हूँ और मैं अभी आपकी आपके लिए क्या अपडेट लेकर आ रहा हूँ, ये डेफिनेटली आप तक बताऊंगा थोड़ी देर में। एक काम करते हैं, थोड़ा माहौल और बनाते हैं, ये बढ़िया सा गाना सुन के वही कम बैक। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

इतना बेहतरीन गाना। यार देखो इतने अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे तो ऑफ कोर्स यार शाम डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। और अभी शाम रात में तब्दील हो गई है। वेलकम बैक यू वंस अगेन। आज का दिन बहुत अच्छा था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आज इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सेलिब्रेट की और एक आरजे के लिए इतने सारे डेज, मतलब बहुत सारा कॉन्टेंट, सो मेनी कॉन्टेंट। और आज का दिन एब्सोल्युटली बहुत ही अल्टीमेट था बहुत सारी चीजों के लिए। देखो आज फादर्स डे था, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे था, आज योगा डे था, एंड इसके अलावा और भी तमाम सारे डेज आज नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रेट होंगे आई एम श्योर। देखो मेरी तो आपसे बातचीत हुई नहीं आज, बट अभी हो रही है तो मैं इसलिए आप सभी को विश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इंटरनेशनल योगा डे, हालांकि योग जा चुका है, बट देखो यार योगा सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, है ना। हमें डेली योग अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। सुबह सुबह की बातें शाम में कर रहा हूं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। वेल आगे बढ़ते हैं। और आज फादर्स डे है तो जितने भी प्यारे प्यारे पापा इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और या फिर जो डॉटर या फिर जो सन मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लिसनर्स आउट देयर, उन सभी को हैप्पी फादर्स डे मेरी तरफ से। एंड इसके अलावा आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है तो ऑफकोर्स आज बातें शातें तो होती रहेंगी। म्यूजिक एब्सोल्युटली हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड मुझे लगता है कि म्यूजिक अलोंग विद दिस कि यार ये जो चीज है ना एब्सोल्युटली बहुत ही अमेजिंग है। म्यूजिक के बिना सब कुछ अनकम्प्लीट लगता है ना, स्पेशली रेडियो हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर आपकी लाइफ हो, सब कुछ बड़ा अधूरा अधूरा है। अगर सोचो म्यूजिक नहीं होता हमारी जिंदगी में तो क्या होता है यार। म्यूजिक दिस इज वेरी पावरफुल चीज ना, और म्यूजिक को एक अच्छी थेरेपी भी माना जाता है। अगर आप सोने से पहले एक अच्छा म्यूजिक सुन लो तो कहते हैं लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है और नींद भी बहुत बढ़िया आती है ना, बेहतरीन वाली नींद आती है आई मीन उसे। तो आज का ये दिन बहुत ही स्पेशल है। और बाकी जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, जो भी एवरीबॉडी पीपल आउट देयर, आप सभी को वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे, हैप्पी योगा डे एंड हैप्पी फादर्स डे। इसी बात पे एक बढ़िया से गाना सुनेंगे, उसके बाद जल्दी से लौट कर आएंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। देखो वीकेंड है, संडे है तो सेलिब्रेशन तो बनता है यार, और स्पेशली जब वर्ल्ड म्यूजिक डे हो तो डेफिनेटली। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पे बहुत ही अच्छा शो चल रहा था अपने मुरादाबाद के पंचायत भवन में, एंड विकी पार्कर जो म्यूजिक है भैया ने ऑर्गेनाइज किया, विक्की भैया ने, बहुत ही अच्छा इवेंट था। उसकी डिटेल्स आप मेरे इंस्टाग्राम से जाके डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हो। रेडियो वाला आने 95 के नाम से मिलता हूँ, डू कैच मी ऑन माय इंस्टा हैंडल, आप जाके विजिट करो, देखो वहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें डाली है, डेफिनेटली आपको मजा आ जाएगा। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे का जो कॉन्सर्ट था बहुत ही अच्छा रहा मुरादाबाद में। आज योगा डे पे बहुत सारी चीजें हुई, बहुत मजा आया, वो भी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, हमारी ऑफिशियल आईडी पे भी आप जाके देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, फिलहाल बातें उससे आपको पकाएंगे नहीं यार, अच्छे गाने सुनाएंगे। संडे है, आप आनंद के साथ हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

0: आप FM मुरादाबाद सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ। देखिए, संडे की बहुत ही प्यारी सी ये ब्यूटीफुल इवनिंग है जहां पर मैं हूं, आप हैं और ढेर सारी गाने हैं और ढेर सारी बातें हैं। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया म्यूजिक आप पूरा दिन सुनते रहते हैं हमारे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें भी होती हैं लेकिन साथ ही साथ अच्छे एंटरटेनमेंट वाले गाने भी होते हैं। और जैसे कि अभी एक वो गाना प्ले कर रहा हूं जो यू नो आपके और मेरे दिल के बहुत ही करीब है, एंड आई डोंट नो क्यों गाना बहुत प्यारा है, थोड़ा सा अलग जोन में आपको ले जाएगा। कहते हैं ना, म्यूजिक की एक अलग ही पावर होती है। म्यूजिक बहुत ही अल्टीमेट चीज है यार। आप कोई सा भी म्यूजिक सुनो, आप रॉक म्यूजिक सुनो, आप हिप हॉप सुनो, आप यू नो ढिंचाक सुनो, या फिर आप सूफी वाले सुनो, मतलब आप कोई सा भी म्यूजिक उठा लो, हर एक म्यूजिक की वाइब अलग होती है यार। फिलहाल इस म्यूजिक की वाइब तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट ट्रैक। बहुत ही प्यारा गाना,
1: जुल्फों के फंदे न डालो,
0: काली काली, व्हाट अ सॉन्ग यार, साथ में गाएंगे मिलके।
1: हमें जिंदा रहने दो,
0: वाह,
1: ए हुस्न वालों,
0: सच अ अमेजिंग ट्रैक यार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे आरजे आनंद को, हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे वंस अगेन, साथ में गाते हैं ना मिलके यार।
1: न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं,
0: यार मेरी आवाज अच्छी नहीं है, चलो साथ में एंजॉय करते हैं इस गाने को, है ना, किसी की याद आ रही है,
1: न छेड़ो,
0: गाना सुनो यार,
1: हम

0: कसम से यार, वो जो सॉन्ग यार मजा आ गया ना सुन के, कसम से बता रहा हूँ ऐसे गाने सुनोगे तो मजा ही आ जाएगा आपको। देखो यार, एक तो संडे है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है, इतना बढ़िया दिन है आज, इतनी बढ़िया तारीख है 21 जून 2026, और आज स्पेशल बहुत सारे ओकेजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नॉन स्टॉप, बहुत सारी बातें हो रही हैं और अच्छे गाने भी ऑफकोर्स आपके लिए बज रहे हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों मुझे लगता है कि संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं है बल्कि दिलों को जोड़ने वाली एक भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है, और आज 21 जून है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही आज का दिन जो है सेलिब्रेट करती है। यस ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो आइए थोड़ी सी इसकी दिलचस्प कहानी आपको सुनाता हूँ इन शॉर्टली। आज संडे को अगर मुझे मौका मिला है आपसे गुफ्तगू करने का तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ के बारे में आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुरुआत 21 जून यानी 21 जून 1982 को फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की संस्कृति को जो है मेंटेन करने के लिए और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज बताया जाता है जो इस डे को और भी ज्यादा फैबुलस बना देती है। एक्चुअली वहां पर जो वहां के संगीतकार के जो वहां के संगीतकार थे उनके मन में एक विचार आया, एक विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ एंड उन्होंने फिर इस चीज को एक बड़ा मंच जो है बना दिया। मतलब संगीत सिर्फ बड़े मंचों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनका ऐसा मानना था कि बल्कि हर गली, हर सड़क और हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, और इसी सोच के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई लेडीज एंड जेंटलमैन। और इसके बाद फिर तो क्या था, वर्ल्ड म्यूजिक डे बना दिया गया। 21 जून को हर साल सबसे लंबा दिन बताया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे का। एक तो इसके दिन, इस दिन बहुत सारे ओकेजन भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताई दिया, आज इंटरनेशनल योगा डे भी हम सेलिब्रेट करते ही हैं, और इसी खास दिन को संगीत के उत्सव के लिए चुना गया ताकि लोग खुलकर संगीत का आनंद ले सके। और आज दुनिया भर में वर्ल्ड म्यूजिक डे 120 से अधिक देशों में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को प्रोफेशनल और नए कलाकारों को दोनों को मुफ्त में अपनी कला को प्रस्तुत करने का एक मंच मिलता है बेसिकली, और वो लोग संगीत से जुड़े जो लोग होते हैं वो अपने दिल की बातें इस दिन के माध्यम से और इस ब्यूटीफुल सेशन के माध्यम से, इस ओकेजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि म्यूजिक एब्सोल्युटली हम सभी के दिलों की जान है यार। सोचो ये म्यूजिक ना होता तो फिर लाइफ कैसी होती है, जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहाँ संगीत शुरू हो जाता है। हाय हाय, ये बात हो लड़का, हाय हाय हो लड़का, वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे।
1: तुषार कपूर की आवाज में।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, देखो संडे है और ऐसे गाने ऑफ कोर्स सुनने को मिलते रहते हैं। मेरे पास कुछ मैसेज आ गए हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? संडे में आप रात में आ गए हो, बड़ा मजा आ रहा है आपको सुन के, और गाने बहुत ही अच्छे लगा रहे हो यार, थैंक यू सो मच। और ये नाम देखो कितना प्यारा लिख के भेजा है इन्होंने अपना, है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपका नाम। इनका नाम ही बड़ा कमाल का है यार, लेकिन क्या करूँ, नाम इनका इतना कमाल का है तो लेना तो पड़ेगा। बॉस वेल, थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे से मित्र है यार जुल्फी भाई, जब भी हम आते हैं ये डेफिनेटली आ जाते हैं। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यारा मैसेज आप करते हो यार। और वैसे कहाँ निकल रहे हो यार, ये आप मुझे बताइएगा जरूर। एक मैसेज आ गया हमारे पास, हेलो हाय गुड इवनिंग आनंद जी, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आपको रात में सुन के सुबह वाली फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच, हाय दिस इज मी शिखा, हेलो हेलो, हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। एक मैसेज और पहुंच गया मेरे पास, हाय गुड इवनिंग आनंद, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम गुड। ये मैसेज मेरे पास आया है, ये मंझोला से मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने इशिका नाम लिखा है। हाय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये लिखती है, सर आपको सुन के तो सच में बड़ा मजा आता है, हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे और हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच यार, आपको भी हैप्पी फादर्स डे। म्यूजिक तो सुन ही रहे यार हम, है ना। एक बहुत ही अच्छा गाना निकाल रहा हूँ, बोलिए, आई लव दिस ट्रैक यार, बहुत प्यारा गाना है, ऑफ कोर्स आप इसे सुनोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा गाना है यार, आई लव दिस ट्रैक, इस गाने को आप सुनो आप मेरे साथ, मजा आ जाएगा।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

खूबसूरत गाना है आज। गलती कर बैठा है दिल। देखो यार, अब दिल ने गलती कर ही दी तो क्या ही कर सकते हैं यार। माजी, गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। अगर गलती दिल कर ही बैठा है तो गलतियों पे मत जाओ। दिल हमारा थोड़ा सा ना ऐसे ही है, दिल को माफ कर दो यार। चलो ठीक है, बाकी किसी और से भी होगी तो उसे भी माफ करो यार। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 संडे। मैं थोड़ा सा फंडे वाली बातें कर रहा था। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे था तो हमने सोचा कुछ अच्छे म्यूजिक आपके लिए डेफिनेटली बजाए जाए इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक, है ना। बहुत सारे लोग रेडियो पे सुन रहे हैं मुझे, आई नो दैट। कोई डिनर कर रहा है, कोई डिनर बना रहा है, कोई अभी आराम से लेट रहा है, तो कोई बस अभी गाड़ी चला रहा है, रेडियो सुनते हुए जा रहा है। उसे पता नहीं है भाजी, कुछ भी बोल रहे हैं आनंद, आई डोंट केयर, तू कुछ भी बोल, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है भाजी, आप गाड़ी पे ध्यान दो, आप मेरे पे ध्यान मत दो, मैं अच्छे गाने लगा रहा हूँ, डोंट वरी। आप जो मेरे गाने ना, वो ध्यान आपको खुद ही खींच लेंगे, आप टेंशन मत। फिलहाल मैं यहाँ से अब लेता हूँ जाने की इजाज़त। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातचीत करके, थैंक यू सो मच आप सभी को वंस अगेन। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे सुन रहे हैं उनके फादर्स को, बच्चों की तरफ से जो मेरे फादर की एज में, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन। बहुत ही प्यारा सा दिन है। मम्मी पापा का दिन एक दिन नहीं होता, हर दिन होता है, और हमारे मॉम डैड से बढ़कर हमारे लिए दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। ना तो कभी कोई होगा, ना ही कभी कोई हुआ है। सो अपने मम्मी पापा से प्यार करते रहो यार, बहुत ज़रूरी है। बाकी वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे एंड हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। हम तो हमेशा आपके साथ हैं 24/7, आपके लिए अच्छे अच्छे गाने, अच्छी अच्छी बातें लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। या हमारी ऑफिशियल आई डी फॉलो कर सकते हैं FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, वहाँ पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, है ना। चलो फिलहाल अब लेता हूँ आपसे जाने की अनुमति, होगी मेरी आपको मुलाकात जल्दी से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। ऑफ कोर्स अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए इस स्टेशन पर यार। फिलहाल आपको बता दो, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो ऑफ कोर्स संडे भी है, अच्छे गाने भी हैं, तो आप ऐसे कैसे चले जाएंगे यार, है ना। आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है। चलो फिलहाल एक अच्छा गाना बजा रहा हूं, इस गाने के बाद और गाने आएंगे यार क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ ना फिलहाल। कल सुबह मिलते हैं, सी यू टुमारो मॉर्निंग इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होंगी ढेर सारी दिल से दिल तक। आप कहीं मत जाइए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज आराम से चलाइए। और आपको एक करंट वाला डांस देके जा रहा हूँ, बिजली वाला डांस। वीकेंड है तो ऐसे गाने तो ऑफकोर्स होने चाहिए यार। आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी एंड वेरी कंफर्टेबल एंड सेफ जर्नी यार। ठीक है, मस्त रहो, जगास्त रहो और अपना अपने परिवार का ख्याल रखो। आप कहीं डिनर करने निकल रहे हो तो ऑल द बेस्ट, बस आराम से गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट लगाओ और बाकी मुस्कुराते हुए ऐसे ही स्टेशन ऑफ द नेशन को यानी कि FM मुरादाबाद को अपने साथ ऐसे ही सुनते जाओ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ खैर, गुड वाली गुड नाइट, मिलते हैं, सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

ਜੇ ਤੂੰ ਛੱਡਣ।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।